रुस्तम फिल्म का ये गीत आपने सुना, आवाज़ थी आतिफ असलम की। गीत को मनोज मुंतशिर ने लिखा था और इस गीत के लिए संगीत दिया था आरको ने।

और इसी गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के 8 बजने को हैं। अब थोड़ी ही देर बाद समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया।

0: की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से नीट यूजी परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
2: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: भारत ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस

0: ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
2: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 1,50,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ीं। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान।

0: जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और एलपीजी टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है चंदन दास की गायकी।

अभी आप सुगम संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका।

0: सभी श्रोताओं को नमस्कार। शिव कुमार की ओर से कहते हैं, स्वस्थ तन ही सच्चा धन। इसी सोच के साथ हम लेकर आए हैं आपका अपना कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक में हम जानेंगे मिर्गी दौरे के बारे में और बातें होंगी भोजन में आयोडीन के महत्व के बारे में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मिर्गी रोग से। मिर्गी क्या है, किस तरह का रोग है, क्या लक्षण होते हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर अमित खंडेलवाल।
1: मिर्गी के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि मिर्गी एक बीमारी नहीं है। लोग इसको कोई देवी प्रकोप समझता है, कोई समझता है किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना करवा दिया, कोई अलग अलग तरह की लोगों की सोच है। तो लोग जब मिर्गी होती है तो लोग इलाज लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं पहुंचता, वो इस तरह की विधियों में पड़ जाता है, कोई जादू टोने करवाने चला जाता है, कोई झाड़ू फूंक करने लग जाता है
0: जी।
1: तो उचित इलाज ना मिलने की वजह से मिर्गी का जो मरीज है काफी परेशान रहता है और कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है
0: जी। कहने का मतलब है कि जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल, तो लोगों को ये जागरूकता हमें देनी है कि मिर्गी एक अन्य बीमारियों की तरह बीमारी है जिसका संबंध मस्तिष्क से होता है और इलाज लेने पर आदमी पूर्णतया लगभग पूर्णतया नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी।
0: तो मिर्गी बताएं कि ये किस तरह का रोग है और शरीर में क्या मतलब लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
1: मिर्गी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। जब भी हमारे मस्तिष्क में इस तरह का कोई विकार होता है तो मिर्गी आने लगती है। जो मिर्गी के जो लक्षण होते हैं, दौरे आना, अगर किसी व्यक्ति को बार बार दौरे आते हैं तो हम उसे मिर्गी कहते हैं। दौरे विभिन्न प्रकार के होते हैं जो सामान्यतः या आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं और एक जो आम आदमी जिसे आसानी से पहचान भी सकता है उसे हम जनरलाइज सीजर या टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं। उसमें आदमी को शरीर में कंपन होते हैं, झटके आते हैं, कभी कभी जीभ दांतों के बीच में आके कट जाती है, खून निकल जाता है, आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती है और कभी कभी कपड़ों में पेशाब भी कर देता है और दौरा खत्म होने के दौरान मरीज बेहोश भी हो जाता है। दूसरा दौरा जिसे हम पार्शियल सीजर कहते हैं, उसमें भी मरीज को छोटे झटके आते हैं, जैसे एक हाथ या पैर का हिलना या मुंह में झटके आना या कभी कभी कुछ अलग तरह की गतिविधियां महसूस करता है, जैसे देखने में भी उसे परेशानी हो सकती है, शून्यता आ सकती है या अजीब अजीब तरह की अनुभूति कर सकता है। कुछ समय के लिए वो आसपास की जो वातावरण में गतिविधियां चल रही होती हैं उनसे खो जाता है, अपने आप में सुन्न हो जाता है और अचानक वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। अच्छा, कुछ अलग तरह के दौरे भी होते हैं जिन्हें हम एब्सेंस सीजर कहते हैं, जो मैंने बताया कुछ समय के लिए क्षणिक रूप से वो वातावरण से खो जाता है और फिर वापस नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। कुछ एटोनिक सीजर होते हैं जिनमें अचानक से मरीज धड़ाम से नीचे गिरता है और वापस खड़ा हो जाता है।
0: जी, जो सब आपने बताया था कि मस्तिष्क संबंधी रोग है, तो मस्तिष्क में विकार आ कैसे जाते हैं, क्या किसी दुर्घटना की वजह से या मान लीजिए कोई मानसिक रूप से बहुत परेशान है तब, मतलब कौन सी ऐसी स्थिति होती है कि मानसिक विकार के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, मस्तिष्क में जैसे अगर हम बात करें तो जो हम कॉमनली या सामान्यतः हमारे यहाँ समाज में देखने को मिलती है, एक हमारे पेट में बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि कीड़े पड़ जाते हैं, हम कहते हैं कीड़े हो गए या टेप वर्म या फीताकृमि करके एक संक्रमण हो जाता है
0: जी।
1: तो कभी कभी ये संक्रमण पेट से खून की नलियों के द्वारा दिमाग में पहुंच जाता है और वहां जाकर दौरे पैदा कर देता है। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, जिसका मुख्य कारण है कि साफ सफाई

0: अभाव। दूसरा कारण है जैसे दिमागी टीबी का होना। तीसरा जो मैं प्रमुख कारण बता रहा हूँ, तीसरा जो प्रमुख कारण है सिर की चोट, जो कि आजकल काफ़ी देखने को मिल रही है, हेड इंजरीज होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो भी एक एपिलेप्सी का कारण बन जाती है। और कुछ अन्य कारणों में जैसे कि स्ट्रोक हो जाना, दिमाग में खून की नसों का ब्लॉकेज हो जाना, या ब्रेन हैमरेज हो जाना, या फिर ब्रेन ट्यूमर हो जाना, और एक अन्य कारण जिसे हम जेनेटिक या इडियोपैथिक एपिलेप्सी भी कहते हैं, जो कि आनुवंशिक तौर पर परिवार दर परिवार चलती रहती है।
1: जी, कहने का मतलब है कि यदि माता पिता के है तो बच्चे के होना स्वाभाविक है या कुछ चांसेस
0: जी
1: होते हैं?
0: जी सब सब केसेस में नहीं होता, कुछ अगर आनुवंशिक एपिलेप्सी हो तो उनमें ही ये इस तरह के लक्षण आते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, खासतौर पर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मिर्गी को अलग ही दृष्टि से देखा जाता है, उसमें झाड़ फूंक वाली वाली बात जैसा कि आपने बताया कि उस तरह की नज़र से देखा जाता है उसको, और डॉक्टर के पास बहुत अंत में पहुँचते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं कि भाई किस तरह का रोग है और आपको क्या करना चाहिए यदि किसी को दौरा इस प्रकार का आता है तो?
0: जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मिर्गी एक मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। जब भी आपको मिर्गी के दौरे आते हैं तो आप तुरंत किसी भी डॉक्टर जो भी आपके पास में उपलब्ध है वहाँ संपर्क करें। अगर वो सलाह देते हैं तो आप फिर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी दौरा आता है तो अक्सर ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि ऐसे मरीज को कि नाक बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर कुछ उसे गंदी सड़ी हुई चीजें सुंघाने को देते हैं, जैसे जूता, मोजा या सड़े गले खाद्य पदार्थ या प्याज, ऐसी चीजें सुंघाते हैं, जबकि ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। कि दौरे के दौरान अगर हम उसकी नाक बंद करेंगे या इस तरह की गतिविधि करेंगे तो मरीज को सांस लेने में परेशानी आ सकती है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह कम हो सकता है, और उसको हमेशा हमेशा के लिए मानसिक मतलब परेशानी डेवलप हो सकती है और जान भी जा सकती है। इसके विपरीत जो हमें करना चाहिए कि जब भी दौरा आता है तो हमें मरीज को पकड़कर किसी भी खाली जगह पर लिटा देना चाहिए, उसे एक तरफ करवट दिला देनी चाहिए, कपड़े उसके ढीले कर देने चाहिए, तथा सांस में कोई भी चीज़ जो अवरोध पैदा करती हो, यानी कि मुंह में अगर झाग आ गए हैं या अगर उल्टी आ गई तो हमें वो साफ कर देना चाहिए
1: जी।
0: और हमें 2, 3 या 5 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। अगर 5 मिनट में मरीज की स्थिति सामान्य नहीं होती तो हमें तुरंत किसी भी निकटतम अस्पताल में मरीज को ले जाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, प्रथम दृष्टि में तो ये पता ही नहीं लग सकता किसी को कि भाई किसी को मिर्गी का दौरा है या क्या है, ये किस तरह का दौरा है, पहली बार में तो समझ में ही नहीं आता। तो कौन से ऐसे मोटे लक्षण देखकर ये एकदम अंदाज लगाया जा सकता है कि ये मिर्गी है?
0: जी, जो जनरलाइज सीजर हो सीजर्स जो होते हैं और उनमें जो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो खतरनाक होते हैं, घातक होते हैं, वो दौरे आसानी से पहचानने योग्य होते हैं। उनमें मरीजों को जैसे शरीर में ऐठन आती है, हाथ या पैरों में कपकपी छूटती है, कभी कभी जीभ जो है दांतों के बीच में आ जाती है, दब जाती है, आंखें ऊपर की तरफ घूम जाती हैं और मरीज बेहोश हो जाता है। ये इस तरह के दौरे अगर आए तो आपको तुरंत उपचार लेना चाहिए कहीं भी निकटतम अस्पताल में जाके। अच्छा, जो अन्य प्रकार के दौरे हैं जो मैंने आपको बताया कि पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर, वो जानलेवा या घातक नहीं होते। उस कंडीशन में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह करें जिससे कि आपको पता लग जाए ये दौरे हैं।
1: जी, मिर्गी के आपने अभी भेद किया था कि ये दो तरह की होती है मिर्गी,
0: बिल्कुल,
1: तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमें स्पष्ट करके बताइए कि ये मिर्गी में ये होता है और इसमें ये लक्षण अलग होते हैं।
0: जनरलाइज जो सीजर हैं जिनमें कि पूरे शरीर में ऐठन आती है, कंपन आते हैं, झाग आ जाता है, मरीज बेहोश हो जाता है, और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर जो है या फिर पार्शियल सीजर्स हैं उसमें छोटे छोटे झटके आते हैं, मरीज बेहोश नहीं होता, मरीज की जान को कोई ऐसा खतरा नहीं आता,
1: पूरे शरीर में नहीं आते,
0: पूरे शरीर में नहीं आता, मरीज कुछ देर में सामान्य हो जाता है।
1: अच्छा, मिर्गी का जो रोग है वो कितना गंभीर आप मानते हैं?
0: ये उसके कारण पे निर्भर करता है कि मिर्गी किस वजह से आपको आ रही है, ठीक है। अगर मिर्गी की आने की वजह कोई गंभीर है तो मिर्गी खतरनाक हो सकती है, लेकिन अगर मिर्गी के जो होने का जो कारण है, अगर दिमागी कीड़ा है या टीबी है या कोई सिर की चोट है, तो उनका इलाज आसानी से हो सकता है और मरीज दवा लेके नियमित अपनी जिंदगी जी सकता है, कोई परेशानी नहीं होती मरीज को। लेकिन मिर्गी का दौरा, जिस वक्त दौरा आता है वो अपने आप में एक खतरनाक स्थिति होती है। कई बार अगर उस दौरे के दौरान मरीज को सडन मतलब हार्ट अटैक आ जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और मरीज की जान जा सकती है। और कभी कभी जैसे मैंने बताया कि श्वास लेने में अवरोध पैदा हो जाता है, मुंह में कुछ फंस जाता है, या हम लोग जैसे उसके मुंह में चम्मच डाल देते हैं, अंगली डाल देते हैं या कोई ऐसी चीज भर देते हैं कि दांत ना भिजे और वो गलती से उसकी सांस नली में चला जाता है, तो जान के लिए खतरा हो सकता है। तो इस तरह हमें नहीं करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, आप तो क्योंकि न्यूरो फिजिशियन है और आपके पास तो इस तरह के ढेरों केस आते होंगे, तो क्या कोई ऐसा भी केस आपको याद है जब किसी की जान इसमें चली गई हो?
0: एक बहुत ही मतलब ऐसा केस है जिसकी वजह से मुझे लगा कि लोगों को अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक महिला थी जिसको एक बच्चा हुआ था,

0: 2 दिन पहले ही उसने प्रसव के द्वारा उसको बच्चा हुआ था और 2 दिन बाद उसको दौरे आ गए, तो घर वालों ने सोचा कि इसको तो भूत प्रेत आ गया है।
1: जी
0: तो अब आप समझिए, उसको इतना मारा पीटा भूत प्रेत को भगाने के चक्कर में उन्होंने कि उसको कम से कम 10 से 12 फ्रैक्चर हो गए शरीर में। अब देखिए, एक जो नव प्रसूता जिसने कि 2 दिन पहले बच्चे को जन्म दिया हो, उसकी हालत कितनी नाजुक होती है। हमारे जो समाज में ऐसी महिलाओं को कितना सावधानी से रखा जाता है, उसका कितना ध्यान रखा जाता है, उसको खाने पीने को दिया जाता है, उसकी बहुत केयर की जाती है, लेकिन सिर्फ अंधविश्वास की वजह से उनके घर वालों ने वो भूत प्रेत के चक्कर में आके उसको इतना मारा कि उसके कम से कम 10 से 12 फ्रैक्चर हो गए। और ऐसा देख के मुझे इतना सदमा लगा कि मुझे लगा कि ये ऐसा फील्ड है जहां पर लोगों को वास्तव में ही बहुत अवेयरनेस की और जागरूकता की जरूरत है।
1: ग्रामीण इलाकों में जो चिकित्सक हैं और इस तरह के केसेस उनके पास आते हैं, उनको कुछ खास मैसेज आप देना चाहेंगे इस समय?
0: जी बिल्कुल, मैं अपने ग्रामीण भाइयों से भी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी चिकित्सक हैं वो इस तरह का जो पेशेंट्स देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोगों को अवेयर भी करें साथ में साथ। तो इस तरह की एक्टिविटीज हम यहाँ कर रहे हैं, तो वो अपने CHC या PHC या छोटे छोटे क्लिनिक जो भी चल रहे हैं वो लोग इस तरह की अवेयरनेस वहाँ पर क्रिएट करें। अगर उन्हें इस संबंध में किसी भी तरह की मदद चाहिए हो, पेशेंट को कोई मटेरियल प्रोवाइड कराना है, कुछ भी कराना है, तो वो आपके द्वारा हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और हम भी अगर अगर वो चाहते हैं तो हम भी उनके क्षेत्र में जाकर अवेयरनेस के लिए कैंप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत जारी।

0: अवेयरनेस के लिए कैंप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारी बातचीत जारी रहेगी, इसी बीच में एक आपकी पसंद का कोई ऐसा गाना जो आप सुनना चाहें और हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहें।
0: एक गाना है, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ये गाना आप श्रोताओं को सुनवाइए।
1: वैसे आप बहुत अच्छा गा भी लेते हैं। चलिए श्रोताओं, सुनते हैं ये गाना।

0: श्रोताओं, तो गीत के बाद एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अमित खंडेलवाल से। डॉक्टर साहब, कई बार मिर्गी के केसेस में देखने में आया है कि जो मुंह है वो काफ़ी जोर से दबा लेते हैं, उसमें मुंह खुलता नहीं है और उसको ज़बरदस्ती से खोलने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या है?
1: जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मिर्गी के दौरान मुंह अगर भींच गया है तो वो विद इन 2 से 3 मिनट में स्वतः ही नॉर्मल हो जाएगा और खुल जाएगा। अगर हम उसको ज़बरदस्ती खोलेंगे या कुछ उसके मुंह में डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चय ही या तो हम उनके दांत टूट जाएंगे या जबड़े वगैरह में या किसी हड्डी में फ्रैक्चर हो जाएगा या कोई आपने अगर अपनी उंगली अंदर डाल दिया तो वो कट जाएंगी। तो इस तरह की गतिविधि नहीं करनी चाहिए। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि उसके श्वसन क्रिया में कोई अवरोध या व्यवधान नहीं पैदा हो।
0: ये तो समझ में आ गया कि किस तरह से जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं कि भाई किसी व्यक्ति में मिर्गी के लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या किसी प्रकार की कोई जांच भी इसमें होती है?
1: जी बिल्कुल, जब मरीज हमारे पास इस तरह के लक्षण लेके आता है तो सबसे

0: पहले हमारा यही काम होता है कि हम पता लगाएं कि उनके दिमाग में या मस्तिष्क में क्या खराबी है। तो मस्तिष्क की जो जांच खराबी जांच करने के लिए हमारे पास दो विशेष जांचें होती हैं जिन्हें सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन कहते हैं। एमआरआई स्कैन ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिससे हमें उससे संबंधित सब प्रकार की बीमारियों का पता लग जाता है। दूसरा होता है एक इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राफी ईईजी टेस्ट, उससे भी हमें दौरे के प्रकार के बारे में पता लगता है। उसके अलावा कुछ सामान्य जनरल ब्लड टेस्ट करने रहते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हम पूछें सामान्य तौर पर इसमें कितना शुल्क मतलब लिया जाता है लगभग, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में खासतौर
0: जी
1: जो होता है वो जान पाए कि लगभग कितना खर्चा इसमें आता है।
0: जैसे कि अगर हम बात करें 3 से 4 हजार रुपए की लगभग ये सारी जांचें हो जाती हैं, अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो। और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम बात करें तो अगर आजकल काफी जैसे गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही हैं, कुछ कैटेगरीज होती हैं, बीपीएल कैटेगरी हैं, भामाशाह हैं, तो वहां पर ये सारी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध हैं।
1: जी, आपसे हम जानना चाहें कि भाई मिर्गी का इलाज कितना कारगर है, तो क्या कहेंगे किस हद तक मरीज को ठीक किया जा सकता है?
0: जो हम देखते हैं, जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हमें लगता है कि 80% लोग यानी 80% लोग हैं दवाइयों के द्वारा सही हो जाते हैं, और कुछ समय के बाद लगभग 2 या 3 साल के समय के बाद वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं और बिना दवाइयों के अपना नॉर्मल जीवन यापन कर लेते हैं। बचे हुए 20% केसों में से कुछ केस को तो रेगुलर मेडिसिन लेनी पड़ती है हमेशा हमेशा, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कि दवाइयां लेने के बाद भी पूर्णतः ठीक नहीं हो पाते। तो ऐसे केसेस के लिए जैसे कुछ नया ट्रीटमेंट इजाद हुआ है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो दिमाग की सर्जरी की जाती है जिससे कि उन लोगों को भी मदद मिल जाती है।
1: अमित जी, जैसी दिनचर्या हमारी होती है, जैसी लाइफ स्टाइल इन दिनों हमारी चल रही है, उसमें काफी मानसिक तनाव भी एक व्यक्ति झेलता है। तो हम यदि मिर्गी की बात करें तो मानसिक तनाव का और मिर्गी का आपस में क्या किसी प्रकार का कोई संबंध है?
0: बिल्कुल, आज के समय को देखते हुए बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव हम कहेंगे डायरेक्ट उसका कोई सीधा संबंध नहीं है मिर्गी से, लेकिन अगर मिर्गी का जो मरीज है जिसको मिर्गी होने की संभावना है उस चीज को ये बढ़ावा देता है। अगर मानसिक तनाव होगा, मरीज नींद नहीं ले पाएगा, बहुत ज्यादा सोच विचार करेगा, तो ऐसे मरीजों को मिर्गी के दौरे आने की संभावना बढ़ जाती है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे जो श्रोता है और बहुत से हो सकेंगे जो मिर्गी का दौरा जिन लोगों को आता हो, तो ऐसे मरीजों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की लाइफ स्टाइल उनकी होनी चाहिए, किस तरह का ध्यान उनको रखना चाहिए, किस तरह का परहेज उनको रखना चाहिए, इसके बारे में बताइए।
0: जी बिल्कुल, जो भी लोग मिर्गी से ग्रसित हैं वो घबराए नहीं, अपने डॉक्टर से या स्पेशलिस्ट से संपर्क करें, नियमित रूप से दवा लें। ऐसे लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपनी नींद का विशेष ध्यान रखें, कि समय से सोना समय से उठना बहुत महत्वपूर्ण होता है, और समय से अपना खाना पीना करना, दिनचर्या बिल्कुल नियमित रखें। किसी भी तरह का व्यसन जैसे कि स्मोकिंग है या अल्कोहल है या और कोई नशीली दवाइयों का सेवन ना करें। अच्छा, कभी कभी हम ये भी सलाह देते हैं कि ऐसे जो मरीज है जिनको बार बार दौरे आ रहे हैं दवाइयाँ लेने के बावजूद भी, तो हम ऐसे लोगों को जैसे कि वो ड्राइविंग वाला प्रोफेशन ना करें या स्विमिंग ना करें या ऊंचे पहाड़ों पर जाना या आग के पास जाना, इस तरह की गतिविधि ना करें जिससे कि किस तरह से उनकी जान को खतरा हो। जब तक कि डॉक्टर ही ना कह दे कि आप बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं, तो वो इस तरह के प्रोफेशन या इस तरह की गतिविधियों में संलग्न ना होवे।
1: जी, मौसम का भी क्या कोई संबंध है, जैसे अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो क्या मिर्गी का संबंध मौसम से भी है?
0: डायरेक्ट जी कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि सर्दी के मौसम में ज्यादा होती हैं, स्ट्रोक ज्यादा होते हैं, तो स्ट्रोक से होने वाली एपिलेप्सी बढ़ जाती है। ऐसे कोई डायरेक्ट सीधा कोई संबंध नहीं है मौसम का।
1: जी, आयु वर्ग की कोई बात है, बच्चों में भी ये होता है क्या?
0: बिल्कुल, ये सारे आयु वर्ग में होता है, बच्चों में होता है, जवानी की उम्र में होता है और बुढ़ापे में भी होता है। तो जो हम देखते हैं बच्चों में और बुढ़ापों में मिर्गी के पेशेंट ज्यादा मिलते हैं, यंग एज में कम मिलते हैं। उसके विशेष कारण होते हैं, बच्चों में मतलब बहुत जल्दी से किसी भी तरह का बुखार वगैरह आना या ब्लड में कोई खराबी आती है या ब्रेन इन्फेक्शन या पैदाइशी कोई प्रॉब्लम होगी तो बच्चों में मिर्गी आती है। बुढ़ापे में जैसे आप समझते हैं कि हर तरह की बीमारियों के बढ़ जाती हैं, उनका दिमाग कमजोर हो जाता है, दिमाग की नसों में ब्लॉकेज, ब्रेन हैमरेज, ट्यूमर, ये सारे चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उन लोगों को मिर्गी की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, आज आपने राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिर्गी रोग के संबंध में हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आपने आयोडीन के बारे में तो सुना ही होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आयोडीन की जब भी बात होती है तो नमक हमारे जहन में आ जाता है। तो इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन खान, जो कि कंसल्टेंट हैं CMHO ऑफिस अलवर में।
2: जनरली क्या होता है कि आमजन को जो आयोडीन की कमी होती है या आयोडीन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि आयोडीन का मतलब हमारे दिमाग में नमक आता है, कि जो भी हम नमक खा रहे हैं उसमें आयोडीन अपने आप है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक आयोडाइज्ड नमक होता है।

0: अलग ही आता है।
1: अभी तक तो यही सोचा जा रहा था कि जो हम नमक ले रहे हैं वो पूरा का पूरा आयोडीन होता है, तो आज हमारे श्रोताओं को आपने स्पष्ट कर दिया कि पूरा जो नमक होता है उसमें आयोडीन की कुछ मात्रा होती है, नमक अपने आप में आयोडीन नहीं होता।
0: बिल्कुल सर, आयोडीन होता है इसकी प्रॉपर मात्रा होनी चाहिए। अगर अपने नमक में उस आयोडीन की मात्रा नहीं होता है तो कहीं की हमारी जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो कहीं कहीं प्रभावित होती है इससे।
1: आयोडीन की हम बात करें तो हमारे भोजन में जो दैनिक रूप में हम अपना भोजन लेते हैं सामान्य तौर पर, उसमें आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए?
0: बिल्कुल, जो साइंटिफिकली जो आयोडीन की मात्रा होनी चाहिए वो 140 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए, और इससे अगर कम आयोडीन लेते हैं तो कहीं की हम शारीरिक जो बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
1: तो रोजाना हम कुछ ना कुछ खाते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, पेय पदार्थ भी होते हैं, तो उनमें आप बताएंगे कि आयोडीन की मात्रा कौन से खाद्य पदार्थ में अधिक पाई जाती है?
0: वैसे सबसे ज़्यादा जो आयोडीन की मात्रा होती है वो समुद्री भोजन में होती है। इसके अलावा जो अपन आयोडीन युक्त नमक खाते हैं वो होता है। इसके अलावा दूध हो गया, अनाज हो गया, जो फली होगी उसकी सब्जी, और इसके अलावा जो अंडा, जो नॉनवेज चीज़ें हैं उनमें होता ही है।
1: आयोडीन की जो कमी का जो प्रभाव है, यदि हम बात करें, किसी खास आयु वर्ग के लोगों में होती है या ये सभी में पाई जाती है?
0: बिल्कुल, जो आयोडीन की जो सबसे ज़्यादा जो कमी का जो प्रभाव होता है वो प्रेग्नेंट जो महिलाएँ होती हैं या जो स्तनपान कराती महिलाएं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। क्योंकि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है इनिशियल स्टेज में, उसमें अगर माँ में अगर आयोडीन की कमी होगी तो जो बच्चा होगा, हो सकता है कि बच्चे डेथ पैदा हो सकता है जो मदर हो उसके मिसक्रेज की कंडीशन हो जाए, जो बच्चा पैदा हो रहा हो उसमें जन्मजात कुछ विसंगतियाँ आ जाएँ। ये तो होते हैं बच्चों में लक्षण और माताओं में। इसके अलावा जो किशोर होता है या जो वयस्क होता है उसमें जो मुख्य लक्षण होते हैं कि व्यक्ति को थकावट रहती है, शारीरिक एवं मानसिक जो होता है चिड़चिड़ापन है वो जो रहता है इसमें।
1: किसी व्यक्ति में आयोडीन की कमी है, उसमें डेफिशिएंसी हो गई, तो इसकी जांच हम मतलब कैसे करेंगे और इसके जो लक्षण कैसे दिखाई देंगे किसी व्यक्ति को देखकर, क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति में आयोडीन की कमी हो सकती है?
0: बिल्कुल, जो दो मेथड होते हैं, एक तो होते हैं जो क्लासिकल साइन होते हैं जिससे अपन के व्यक्ति को देख कर ही बता सकते हैं, एक दूसरे होते हैं साइंटिफिक मेथड। जो क्लासिकल साइन होता है वो ये होता है कि जो गर्दन की जो आकृति होती है, गर्दन का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसको गलगंड भी बोला जाता है
1: जी,
0: और जो व्यक्ति की जो त्वचा होती है वो सूखी रहने लग जाती है, थोड़े से काम करने के बाद थकावट हो जाती है, उसका जो वेट होता है वो वेट गेन होने लग जाता है, वजन बढ़ने लग जाता है। तो ये तो बेसिकली जो फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं उसके पार्ट हो गए। इसके अलावा जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, जो थायराइड, अपन जो थायराइड टेस्ट कराते हैं T3, T4 और TSH
1: जी,
0: इनके लेवल के आधार पर हम असेस कर सकते हैं कि व्यक्ति में आयोडीन की कमी है या नहीं है। इसके अलावा थायराइड अल्ट्रासाउंड होती है, जो यूरिन होता है उसका एग्जामिनेशन होता है। इसके अलावा अपन जो जनरली पेशेंट से पूछ के पता कर सकते हैं कि आप लोग जो खाना खाते हैं वो कैसा होता है, कि अगर वो जो फोर्टिफाइड खाना खा रहा है नहीं खा रहा, उसके खाने में नमक है या नहीं है, उसका पता कर सकते हैं।
1: पहले ही सुनने में आता था कि जो आयोडीन की कमी के जो रोग हैं किसी खास इलाके या क्षेत्र तक सीमित रहते थे, लेकिन अब तो हम देखने में आ रहा है कि कहीं पर भी ये रोग दिख जाते हैं, इस तरह के रोगी मिल जाते हैं, तो क्या कारण आप मानते हैं, क्यों ये इसका प्रसार इतना हो गया?
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल, ये जो आयोडीन की जो कमी है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती थी, और ऐसा ही माना जाता था कि जो आयोडीन का जो रोग होता है कमी का वो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। ऐसा कोई भी स्टेट बाकी नहीं है जहाँ पर आयोडीन की कमी से रोग नहीं होते, क्योंकि हम जो लोग बाहर फास्ट फूड खाते हैं तो कहीं कहीं उसमें जो नमक काम में लिया जाता है, हो सकता है उसमें अनआयोडाइज नमक काम में लिया जा रहा हो। इसके अलावा जो हम नमक लेके आ रहे हैं, हो सकता है कि मानकों के अनुरूप नमक हम नहीं ला रहे हो, जो सर्टिफाइड नमक हो जिनमें आयोडीन हो उसी नमक को काम में लिया जाए।
1: खाद्य पदार्थों की तो जांच अक्सर हमने देखा है, सुना है कि होती रहती है, लेकिन आयोडीन की हम बात करें तो क्या इसकी भी कोई जांच होती है?
0: बिल्कुल, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना हुआ है भारत सरकार का, उसके तहत जो आयोडीन युक्त नमक होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम होती है और जिला स्तर पर भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम होती है, जिनके द्वारा आयोडीन के मानक हैं उनके अनुरूप उनके सैंपल लिए जाते हैं और ये चेक किया जाता है। जो आयोडीन अनआयोडाइज नमक होता है उनको संबंधित हिदायत दी जाती है कि आप जो अनआयोडाइज नमक हो उनको आयोडाइज नमक करके नहीं बेचें।
1: तो क्या इस तरह का कोई व्यक्ति पाया जाता है, कोई व्यापारी ऐसा है जो कि बिना आयोडीन का नमक है जो उसका बेच रहा है, उसका विक्रय कर रहा है, तो क्या किसी प्रकार की कोई सजा है?
0: बिल्कुल, अगर वो अनआयोडाइज नमक को आयोडाइज नमक कह के बेच रहा है तो उसके खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल लिया जाता है और PF एक्ट 1954 बना है उसके तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
1: तो आयोडीन की कमी को दूर करने के कुछ उपाय भी होंगे आपके जहन में कि किस तरह से आयोडीन की कमी को दूर किया जा सकता है जिससे कि शारीरिक विकास ठीक हो सके, मानसिक विकास ठीक हो सके, तो कौन कौन से ऐसे प्रमुख आप कमी को दूर करने के उपाय आप बताएंगे?
0: बिल्कुल, इसमें सबसे पहला तो ये होता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि आयोडीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला होता है कि हेल्थ एजुकेशन होनी चाहिए। हेल्थ एजुकेशन के लिए क्या होता है कि जो आंगनबाड़ी, ANM, आशा जो कार्य करती

0: हैं उनके माध्यम से जो फील्ड में और जो स्कूली बच्चों को ये संदेश पहुंचाया जाता है कि आयोडीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। दूसरा तरीका होता है कि जो फूड फोर्टिफिकेशन करना, इसमें क्या होता है कि जैसे अपना नमक है उसमें एक निश्चित अमाउंट में आयोडीन है या नहीं है क्या, इसको चेक किया जाता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट आते हैं जैसे आयोडीन के कैप्सूल आ गए, आयोडीन की टेबलेट्स आती हैं, आयोडीन सोल्यूशन आता है जिसको लुगोल सोल्यूशन बोलते हैं, तो इनके माध्यम से इसको मतलब उपाय किया जाता है। चौथा टेक्निक होती है सर्वेलेंस सिस्टम कि जो आपका नमक का है उसका सैंपल लिया जाता है, देखा जाता है कि नमक पर आयोडीन कम है या नहीं है, तो इसके हिसाब से इसके मुख्य रूप से उपाय लिए जाते हैं।
1: तो मोहसिन जी, अब बातचीत के अंत में हमारे श्रोताओं को कुछ कहना चाहेंगे आप आयोडीन के संबंध में?
0: ऐसा लगता है कि जो छोटी अपना एक छोटा सा सॉल्ट होता है आयोडीन, इसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। क्योंकि अपन देखते हैं कि जो थायराइड की बीमारी है उसमें, क्योंकि थायराइड हार्मोन होता है उसको बढ़ाने में आयोडीन की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जो थायराइड हार्मोन होता है हमारे जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सारे को कंट्रोल थायराइड हार्मोन करता है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो हमारे जो थायराइड ग्रंथि के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रभावित होंगे, हमारे जो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, ये खाने का नहीं पचना, जो जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये प्रभावित होती हैं, तो इन चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जो खाने में जो आयोडाइज नमक है उसी का उपयोग भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि जनरली एक ग्रामीण क्षेत्र में ट्रेंड होता है कि नमक तो नमक होता है, क्योंकि जो आयोडाइज नमक होता है थोड़ा कॉस्टली आता है। साधारण जो गांव में काम में लेते हैं जो कट्टे का नमक आता है वो 100-150 रुपये में पूरा कट्टा आ जाता है, जबकि एक आयोडीन का पैकेट होता है 15-20 रुपये का एक किलो आता है। तो कहीं लोगों में मानसिकता ये रहती है कि नमक का मतलब ये था कि खाने में थोड़ा स्वाद आ जाए,
1: खाने का स्वाद की वजह से सिर्फ नमक खाते हैं,
0: बिल्कुल ये नहीं है। खाने में साइंटिफिकली ये है कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो सबसे आयोडीन का जो मेन सोर्स है वो हमारे लिए नमक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सी फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमारे जो एकमात्र जो सोर्स होता है वो नमक होता है, तो हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, वो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो आयोडाइज नमक ही खाएं, ताकि जो शिशु पैदा हो उसमें किसी प्रकार की कोई विकृति पैदा नहीं हो।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि किस प्रकार से आयोडीन की मात्रा को रोज़ाना लिया जा सकता है, बहुत अल्प मात्रा में लेकर अपने स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है। तो आज आप स्टूडियो में आए और आपने इस संदर्भ में जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद।
0: वेलकम।

ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। सवेरे के 9 बजने को हैं। अब हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से लिए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को मॉनसून पूर्व नालों की सफाई और जल निकासी कामों को मिशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस साल 7,500 नए नंद घर विकसित किए जाएंगे। राज्य में कई जगह तेज रफ्तार अंधड़ के साथ बारिश का दौर, कोटा और झुंझुनू में ओले भी गिरे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पत्रकारों से लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने का आह्वान किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को शहरी विकास की परियोजनाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कल मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में सुगम यातायात, साफ सफाई, सौंदर्यकरण और सुव्यवस्थित शहरी विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने मॉनसून से पहले नालों की सफाई करने और जल निकासी कार्यों को मिशन मोड पर पूरा करने को कहा, जिससे बारिश के मौसम में लोगों को जल भराव की स्थिति का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को लेकर जन जागरूकता बढ़ाई जाए और सफाई मित्रों की सहभागिता से कचरे का नियमित उठाव और निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर में यातायात को सुगम बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चौराहों को सिग्नल फ्री बनाने, अतिक्रमण हटाने और समुचित पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग, JDA, नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस साल 7,500 नए नंदघर विकसित किए जाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं विकसित करने के काम में तेजी लाई जाएगी। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कल जयपुर में हुई एक समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण पर जोर दिया। दिया कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत इन्हें तकनीक आधारित कौशल की ट्रेनिंग दी जाए। बैठक में लाडो प्रोत्साहन योजना और काली बाई भील उड़ान योजना की भी समीक्षा की गई और पात्र लाभार्थियों को समय पर फायदा पहुंचाने के निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार ने देश की आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और जन सुरक्षा ढांचे के विस्तार के लिए सेल प्रसारण प्रणाली CBS का कल शुभारंभ किया। स्वदेशी तकनीक पर आधारित CBS को दूर संचार विकास केंद्र C.DOT ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया है। नई दिल्ली में इस अवसर पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे देश के आपदा प्रबंधन ढांचे की क्रांतिकारी पहल बताया।
1: आज C.DOT, जो भारत की इंडिजिनस R&D टेक्नोलॉजी इनोवेटर के रूप में आज देश के अंदर केवल नहीं लेकिन विश्व स्तर पर इस संस्था ने अपने आप को प्रमाणित किया। आज C.DOT की संस्था के द्वारा सेल्फ ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन आज आपदा के वातावरण सुरक्षा को सुनिश्चित करने देश की जनता के हाथों में और NDRF के हाथों में सबसे उपयोगी एक साधन के रूप में आज उतर चुका है।
0: CBS का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इसके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS पारंपरिक SMS आधारित प्रणालियों की सीमाओं को दूर करता है और सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण जानकारी लक्षित क्षेत्रों में बड़ी आबादी तक तेजी से पहुंचाई जा सके। ये प्रणाली लगभग रियल टाइम जानकारी देती है, जिससे अचानक आई बाढ़ और गैस रिसाव की आपदाओं के दौरान लोगों को बचाव के लिए समय मिल सकता है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश की अनुमति होगी। परीक्षा का आयोजन

0: राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से किया जा रहा है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों के जरिए चयन कराने के मामले में 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 डमी कैंडिडेट और 1 मूल अभ्यर्थी शामिल है। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने लाखों रुपए लेकर परीक्षा दिलाने का सौदा करना कबूल किया है। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से अक्टूबर 2022 में आयोजित प्राध्यापक हिंदी स्कूल शिक्षा भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में विभिन्न स्थानों पर तेज रफ्तार अंधड़ के साथ बारिश का दौर चला। इससे कई जगह पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिर गए। कोटा और झुंझुनू में बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं पश्चिमी राजस्थान में तेज गर्मी का असर रहा। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। हनुमानगढ़ में भी दिन भर तेज गर्मी का असर रहा। हालांकि जैसलमेर के रामदेवरा में भीषण गर्मी के बाद देर शाम तेज आंधी के साथ पानी बरसा। विभिन्न स्थानों पर हुई बारिश से लू और गर्मी का असर कम हुआ है। राजधानी जयपुर में तेज हवा के साथ बरसात हुई, इससे कई जगह बिजली आपूर्ति बाधित रही। चूरू से हमारे संवाददाता ने बताया कि अंधड़ से जनजीवन प्रभावित हुआ, कई जगह बिजली भी गुल रही।
1: चूरू में तेज अंधड़ से कई स्थानों पर विद्युत तार टूट गए, जिससे विद्युत आपूर्ति बंद रही। गर्मी में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं अंदर से अनेकों पेड़ व टहनियां टूट गई, जिससे पेड़ों पर अपना आशियाना बनाने वाले पक्षी काफी संख्या में मर गए। लगातार तेज अंदर से एक बार की सड़कों पर आवागमन रुक गया। वहीं आम जन जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। गाँव में तेज अंदर के साथ कुछ स्थानों पर बारिश हुई। हालांकि गर्मी के तेवर तेज बने हुए हैं। आज मौसम साफ है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू।
0: बारा के भवरगढ़ क्षेत्र के ढिकोनिया गांव में बिजली का तार टूटने से करंट फैल गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक बालिका गंभीर रूप से झुलस गई। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। स्वर्णनगरी जैसलमेर की सफाई व्यवस्था के लिए मेगा प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत नगर परिषद की ओर से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा ने बताया कि इनके जरिए सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों की पहचान की जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
2: सीसीटीवी कैमरों से हम निगरानी रखेंगे और कैमरों से न केवल ये निगरानी रखी जाएगी कि कौन कचरा फैला रहा है, इवन कहीं कचरा पॉइंट पे कचरा ज्यादा हो भी गया और गाड़ी नहीं आई है तो हम उसको कैमरे में ही देख के तुरंत ही गाड़ी उस मौके पे पहुंच के और वहाँ कचरा पॉइंट से कचरा उठा लेगी। इसके अलावा जो कचरा फैलाते हैं उसका हम कैमरे से बकायदा सबूत के साथ जो कचरा फैलाते हैं उनके खिलाफ जुर्माना वसूलेंगे और जुर्माना वसूलने के बावजूद अगर वो फिर कचरा फैलाते हैं तो हम हो सकता है कि उनके दुकानों को सीज करने की भी कार्रवाई करें। थोड़ा सा अगर लोग सहयोग करें तो शहर बिल्कुल साफ सुथरा रह सकता है। 3,10,00,000 का है, इसमें 250 कैमरे लगने हैं और न केवल सफाई, इवन अपराध की घटनाएं भी अपने को सुनने में आती है। तो अभय कमांड सेंटर के कैमरों के अलावा जब नगर परिषद के कैमरे भी जगह जगह लग जाएंगे तो एक हद तक सर्विलेंस काफी बढ़ जाएगा।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिन स्वतंत्र पत्रकारिता, पत्रकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर जोर देता है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया से जुड़े सभी पत्रकारों से स्वस्थ मूल्यों के साथ लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने का आह्वान किया है। पाली और भरतपुर में इस मौके पर संगोष्ठी और पत्रकार सम्मान समारोह रखे गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को मॉनसून पूर्व नालों की सफाई और जल निकासी कामों को मिशन मोड पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर इस साल 7,500 नए नंदघर विकसित किए जाएंगे। राज्य में कई जगह तेज रफ्तार अंधड़ के साथ बारिश का दौर, कोटा और झुंझुनू में ओले भी गिरे। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज।

0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने पत्रकारों से लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में काम करने का आह्वान किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से लेके जाएंगे।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं हैप्पी न्यू ईयर इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल, संगीत विशाल और शेखर का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है जीनियस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज में, कुमार के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल, गणेश और साथियों की आवाजें, सिद्धार्थ गरिमा, नासिर फराज और गणेश का लिखा हुआ गाना, शैल, प्रीतेश और नितिन शंकर का संगीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को दे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहां तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

0: जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आई। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।
1: मुझे किसी से प्यार हो गया हो।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री

420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवार।

0: गम न हो प्यार मेरा।
1: आह के बाद धुन, पापी और जागती रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म थी।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें अपना जीवन साथी बना लिया। 11 मार्च 1958 नरगिस और सुनील दत्त ने शादी कर

दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहाँ हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थीं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गई। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।

कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से विदा हो गई।

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एडिटर दिलीप दरक से जयंत पात्रिकर की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये है फिल्म एडिटर दिलीप दरक के फिल्मी गीतों की एक झलक।

0: नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों में न जाने कितनी ही फिल्मी हस्तियों से आज तक हम मिलते रहे हैं, उनसे रूबरू होते रहे हैं, और आपने फिल्म के जितने भी पक्ष हैं, जितने पहलू हैं, फिल्म निर्माण हुआ, फिल्म निर्देशन हुआ, फिल्म में एक्टिंग करने वाले भी यहां आते रहे हैं, फिल्म के लिए गीत गाने वाले आते रहे हैं, संगीतकार आते रहे हैं, शायर।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM एंड 103.1 MHz पर।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: वो तो उन्होंने अपना इसे कहते, उस टाइम में कोई वायर नहीं था। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत भी हुआ तो वायर लगा देते। जैसा अभी टेबल पर से कूदना है, वायर लगाया कूदे। मतलब उस टाइम के जो हीरो थे, जितने भी हीरो है, धर्मेंद्र है, शम्मी कपूर है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद बॉक्सिंग
3: स्टंट किया करते थे, पूरा
2: एक्ट करते थे। उस टाइम में वायर था ही नहीं सर, खाली चेस वगैरह में होता था तो उसमें थोड़ा बहुत कहीं ये हो जाता। हाँ। बाकी खुद कर लेते थे सब। और बहुत सारे सीन रहते थे जैसे जंप मारने का वगैरह। हाँ, उसमें हाँ। कहीं जगह पर डुप्लीकेट यूज करते थे। और उस टाइम में तो क्या होता था कि एक पिक्चर आई थी, मैं बताता हूँ, गीता मेरा नाम पिक्चर का नाम है
3: जी।
2: और एक आई थी हमराई, रामानंद सागर की
3: जी।
2: उसके अंदर एक सीन है हमराई में, रणधीर कपूर, तनुजा और गजानन झागीदार
3: जी,
2: उनके पीछे गुंडे लगते हैं और वो भागते हुए जाते हैं और एक टूटा हुआ ब्रिज था उधर।
3: हाँ।
2: आप पिक्चर में अभी भी देखेंगे
3: जी,
2: तो पहले टेक में वो जो डुप्लीकेट जो भी बैठे थे उन्होंने पूरा मार दिए थे जंप में उधर।
3: अच्छा।
2: तो 40-50 मतलब 30-40 फीट का होगा ऐसा।
3: हाँ।
2: ब्रिज तो आपको मालूम है, छोटे नाले पर रहते हैं।
3: अच्छा।
2: मगर सेकंड टेक

0: गिर गए थे उधर आधे में।
1: ओहो,
0: तो ऐसा है। और एक पिक्चर आई थी गीता मेरा नाम, उसमें फिरोज खान, सुनील दत्त और साधना
1: जी,
0: तीनों के चेस तीनों भी क्रॉस करते पूरा।
1: अच्छा।
0: जम करके, तो उसमें पहले जोखिम रहता था, कर लेते थे पहले, बहुत सारे में एक्सीडेंट हो जाते थे, कभी वो फाइटर ये हो जाता था। और अभी क्या है, तो अभी तो कंप्यूटराइज हो गया, अभी तो इजी हो गया
1: जी जी। तो ऐसे जो ये एक्शन सीन्स होते हैं, इन दृश्यों को जोड़ना,
0: हाँ,
1: ये कितना मुश्किल काम होता था?
0: मुश्किल काम नहीं, उनके शॉट रहते सर।
1: अच्छा।
0: शॉट वो कटिंग में ले लेते शॉट।
1: अच्छा।
0: कटिंग में लेने के बाद हम वो काट लेते, जैसा इधर से गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दिया, जैसा विलन ने भी एक्सीलेटर दबा दिया।
1: अच्छा।
0: हीरो उधर से आ रहा है,
1: हाँ,
0: विलन इधर से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो रही है, दोनों उड़ के गिर रहे हैं, ये अलग अलग शॉट लेते वो।
1: अच्छा।
0: कट में,
1: हाँ,
0: तो हमको वो टाइमिंग के हिसाब से ड्रू किया, उधर उसने ड्रू किया, फिर इसने देखा,
1: हाँ,
0: उसने देखा, बैंग आ गया उसमें, फिर उसके बाद ये कर लेते। ये सब पूरे यूनिट का काम है सर। अकेला एडिटिंग में क्या होता है कि जिसमें डायरेक्टर का कल्पना रहती है, उसका थॉट रहता है,
1: जी,
0: उसको वो नैरेट करते हैं फाइट कंपोजर के साथ में।
1: हाँ।
0: फाइट कंपोजर उसको एग्जीबिट कर लेता है, पहले करके बताता है, वो भी सोचता है कि कैसा करे, ये करने के बाद फिर बाद में वो शॉट लिए जाता है, उसको असेंबल करते हैं।
1: हाँ।
0: और उसका असेंबल करने के बाद में वो जो हम पब्लिक को दिखाते हैं, असेंबल करने के बाद में फाइनल जो फुटेज रहता है उसका,
1: हाँ,
0: जो इम्पैक्ट क्या रहता है कि सिक्वेंस जब रहता है कि भाई इधर से हीरो आएगा, इधर से विलन आएगा, दोनों की टक्कर होगी, दोनों हवा में गिरेंगे,
1: हाँ,
0: इधर गिरेंगे, उधर गिर गए, रिएक्शन आ गया, दोनों उठ के भाग गए, ये तो अपना कहानी में हो गया। वो शूट कर लेते,
1: हाँ,
0: शूट करने के बाद डायरेक्टर वगैरह दोनों मिलकर अपना दिमाग लगा के सब जो उनका कॉन्सेप्ट है वैसा कर लेते, बाद में एडिटर को लाके दे देते भाई काट दो, तो हम काटते हैं और डायरेक्टर को पसंद आ गया तो हम जीत गए।
1: अच्छा।

0: बहुत सारे एडिटर पहले के ये थे तो कि वो डायरेक्टर को क्या चाहिए,
1: हाँ
0: आपने शूट किया क्या चाहिए, वही डायरेक्टर ये कर लेता था।
1: कोई ऐसी फिल्म का एक्शन सीन याद आ रहा है जिसको एडिट करने में आपको बहुत मजा आया हो और डायरेक्टर को बहुत ज्यादा आपका काम पसंद आया हो?
0: पिक्चर तो किया था मैं, इंडिपेंडेंट बहुत पिक्चर किया था।
1: हाँ जी,
0: एक पिक्चर थी हमारा एक जख्म बोल के पिक्चर था एक,
1: हाँ
0: मैंने इंडिपेंडेंट 2006 में आया था पिक्चर
1: जी,
0: उसमें मुकेश तिवारी एंड नया हीरो था,
1: हाँ
0: उसका था। और एक जानी दुश्मन पिक्चर आई थी हमारी
1: जी जी,
0: जो सनी देओल की,
1: हाँ
0: उसमें ग्राफिक था पूरा इसमें, तो उसके अंदर टुनू वर्मा सनी देओल तरफ से फाइट मास्टर था और अक्षय कुमार तेरे तरफ से अब्बास अली मुगल।
1: अच्छा,
0: तो वो इतना अच्छे तरह से शूट किए थे, वो हमको बोलते थे दादा ये शॉट ऐसा यहाँ से आएगा, ये ऐसा आएगा, ये आएगा। तो उसमें क्या है कि जो पंचे रहते थे जैसा इधर मुंह पर मार दिया वो अलग लेते थे, वो लॉन्ग शॉट में अलग रहता था, जैसा आपने बोले ना लॉन्ग शॉट में हीरो आया नजदीक, क्लोज में फेस के ऊपर विषम तीर दिया।
1: अच्छा,
0: तो वो अलग शॉट रहता था, फिर गिरने का इनका। अभी तो आजकल क्या है गिरना पड़ना ज्यादा हो गया, ऊपर से जंप मार लेते गोल गोल घूमते, मगर उस टाइम में ज्यादा नहीं रहता था। तो वो पूरा मैच करके वो पसंद आना चाहिए, डायरेक्टर बोले कि भाई अच्छा लगा हमको
1: जी जी।
0: कुछ एडिटर ऐसे थे कि डायरेक्टर उनको बोलते थे दादा ये काम कर लो आप। हमारे एक डायरेक्टर थे मेरे भाई के साथ भी मैंने काम किया था नागेंद्र के साथ में
1: जी,
0: मगर एक डायरेक्टर थे प्रकाश पंचाल
1: जी जी,
0: तो उनके साथ में मेरी पहली पिक्चर थी लाभलो सौभाग्य चलेनी,
1: मराठी फिल्म जी।
0: तो उसमें उसके पास 7 एडिटर जा चुके थे वो पिक्चर में।
1: हाँ,
0: उसका कंडीशन क्या था कि 22 फरवरी को पिक्चर की शूटिंग चालू करने वाले थे वो, 22 मार्च को पिक्चर की शूटिंग खत्म,
1: अच्छा
0: 1 तारीख से डबिंग चालू,
1: हाँ,
0: और 17 तारीख के दिन उनको मिक्सिंग, और उनका हीरो का कोई जाने वाला था बाहर। तो वहां पर सब डर गए कि भाई इतना कैसा काम होगा ऐसा फास्ट। तो मुझे बुलाया डायरेक्टर ने
1: जी,
0: तो प्रोड्यूसर भी थे साथ में 3, अजय शाह, राजेंद्र काले और अमित मंगतानी, 3 प्रोड्यूसर थे। अमित मंगतानी का था कैसेट का, कैसेट बनाते थे
1: जी।
0: और ये राजेंद्र काले तो कॉर्पोरेटर थे गोरेगांव के, और अमित शाह बिजनेसमैन थे
1: जी,
0: तो उनको तो कुछ ज्यादा नहीं था। तो मुझे बोले कैसा करेंगे, मैं बोले करके दे दूंगा बताओ। तो उन्होंने पूछा कैसा करोगे, मैं डायरेक्टर को बोला कि एक काम करो, जो पिक्चर फ्लैशबैक चालू होती थी
1: जी,
0: एक समारोह है उधर शादी हो रही एंगेजमेंट, मगर कोई आदमी विलन आके बोलता है कि भाई ये नाजायज बच्चा है, तो फिर वो एक्सप्लेन कर लेता है पूरी पिक्चर की कहानी। तो उसमें क्या फ्लैशबैक था, फ्लैशबैक 1 नंबर में चालू होता था, 16 नंबर में खत्म हो जाता था।
1: अच्छा,
0: तो डायरेक्टर को मैंने क्या बोला कि सर आप एक काम करो, आप मुझे कहानी बताओ खाली क्लाइमैक्स में आप बैठो, समझे ना। और बहुत सारे डायरेक्टर कॉम्पैक्ट स्क्रिप्ट रहता था, भाई ये सीन है इसमें इतनी शॉट है।
1: अच्छा,
0: वो स्क्रिप्ट हमको दिए जाते थे, मैं स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट किया उसको, और टेकिंग अच्छी रहती थी, बहुत सारे डायरेक्टर टेकिंग अच्छी करते थे। मेरे डायलॉग के बाद आपका डायलॉग आ गया, हीरोइन का आ गया, ये आ गया, इंसर्शन आ गया, ये आ गया, हो गया हो गया, और हम सीन देखे दिखाते थे। कुछ डायरेक्टर तो ईजी रहता था, प्रकाश पंचाल के साथ मैंने 9 पिक्चर किया एक ही डायरेक्टर के साथ में।
1: अच्छा,
0: तो उनका क्या था कि भाई वो शूटिंग उधर करते थे, कभी कभी हम एडिटिंग इधर करते थे, तो आने तक टाइम बच जाता था। उन्होंने जब 22 को मार्च

0: खत्म किया
1: हाँ।
0: तो मेरा क्लाइमैक्स छोड़ के गाने छोड़ के सब एडिट कर लिया था मैं।
1: अच्छा।
0: आने के बाद देखे उन्होंने क्लाइमैक्स के लिए बैठ गए। क्लाइमैक्स बैठने के बाद वो क्या रहता है, थॉट रहता है ना उनका, कहाँ से चालू करना है कहाँ खत्म करना है।
1: हाँ।
0: बाकी तो सब था और गाने तो एडिट अच्छी तरह से पिक्चराइज किए थे, तो वो हमने वो पिक्चर को उनको करके दे दिया तो पिक्चर रिलीज हो गई। उसके बाद वो डायरेक्टर हमको छोड़ा ही नहीं।
1: अच्छा।
0: 10 पिक्चर किया, मेरे भाई की पिक्चर नहीं किया मैं दूसरी, मगर उसकी किया था।
1: अच्छा अच्छा। तो कार्यक्रम के इस मोड पर आप कौन सा गीत अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे?
0: मेरा सर एक गाना था मैं जिसको बहुत लाइक करता हूँ।
1: हाँ जी।
0: हर एक आदमी की जिंदगी में एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, हर एक का, लड़की का भी रहता है। लड़की को लगता है कि हमको राजकुमार मिले।
1: हाँ।
0: लड़के को लगता है कि हमको राजकुमारी मिले। जो जीवन संगिनी है,
1: हाँ।
0: अर्धंगिनी जो बोलते हैं जिसको,
1: हाँ
0: वो अच्छी मिले तो वो हमेशा सपने में सोचते रहता है।
1: हाँ।
0: एक गाना था वो, पहले मिले थे सपनों में, आज सामने पाया तो एक बात जानू। ये जिंदगी पिक्चर का गाना है, राजेंद्र कुमार वैजयंती माला का।
1: हाँ।
0: रामानंद सागर की पहली पिक्चर, मतलब उनके बैनर में बनी थी। शंकर जयकिशन का म्यूजिक था।
1: अच्छा।
0: और वो गाना बहुत अच्छा लगा।
1: आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं यही गाना।

0: दिलीप जी, फिल्म देखते समय सबसे पहले टाइटल्स आते हैं, तो हमारे श्रोता जितने भी आम दर्शक हैं फिल्मों के, उन टाइटल्स में एक नाम देखते हैं, उस लिखा होता है फिल्म एडिटर, और उस नाम के नीचे लिखा होता है AFE। ये AFE क्या होता है
1: सर? जो हमारे

0: जितने भी डिपार्टमेंट है
1: हाँ जी,
0: फिल्म लाइन में, आर्टिस्ट का
1: हाँ जी,
0: उसके बाद प्रोड्यूसर का
1: हाँ,
0: डायरेक्टर का, कैमरामैन का, एडिटर का, सबके एक अपने यूनियन है उनके।
1: अच्छा,
0: यूनियन मतलब एक एसोसिएशन है
1: हाँ हाँ,
0: जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है।
1: ओके,
0: तो उसका नाम है AFV लिखा जाता है, तो एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर,
1: एसोसिएशन ऑफ फिल्म एंड वीडियो एडिटर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो
0: वो हमारा पूरा जो है ना
1: हाँ हाँ,
0: कुछ जितने भी एसोसिएशन है मेरे 20-30 जितने भी है
1: हाँ,
0: वो सारे का एक फेडरेशन है।
1: अच्छा,
0: वो उड़ जुड़ा जाता है, तो इसमें सबको लिया जाता है, जैसे डायरेक्टर का IFDA, IFDA इंडियन फिल्म डायरेक्टर एसोसिएशन, WICA कैमरामैन का रहता है उनका, ऐसा सबका अलग अलग है।
1: तो ये यानी कि एक प्रोफेशनल एडिटर जो बन जाता है और इंडिपेंडेंटली फिल्म को एडिट करता है ना, तो स्वतंत्र रूप से, तो वो AFE अपने नाम के आगे लिख सकता है, ऐसा आप कह सकते हैं?
0: नहीं, हमारे संस्था में क्या था कि हम जितने भी लोग काम करते हैं
1: जी,
0: चाहे उसमें म्यूजिक डायरेक्टर हो, कैमरामैन हो
1: हाँ,
0: राइटर हो, इनके एसोसिएशन है, तो उनको जो भी आप काम करेंगे वहां रजिस्टर करना पड़ता है आपको।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: बिकॉज कुछ आगे चल के मैटर आ जाए या कोई बोले कि भाई ये पिक्चर का एडिटर मैं हूं, तो उसलिए हमारा एग्रीमेंट बनता था।
1: अच्छा,
0: तो एग्रीमेंट के साथ में हम जाके उधर हम ये कर लेते थे, रजिस्ट्रेशन होता था।
1: अच्छा,
0: तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एसोसिएशन में सपोज करो मैं काम कर रहा हूँ
1: जी,
0: और अगर समझो वो पिक्चर का प्रोड्यूसर ने किसी दूसरे को रखा था पहले, तो अगर चल के वो क्लेम करेगा तो हमको अड़चन आ जाएगी, इसीलिए हम पहले वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं।
1: तो आप इस एसोसिएशन से सबसे पहले कब जुड़े थे?
0: मैं 78 में,
1: 78 में ही शुरुआत में ही।
0: हाँ।
1: जी जी जी जी,
0: 78 में जुड़ा था
1: हाँ।
0: जो मेरा राजश्री में एक साल पूरा हो गया था
1: हाँ।
0: जून 78 में, जो अगस्त 78 में, जून जुलाई ऐसा कुछ था, तो उस टाइम में हमको एक कार्ड मिलता था पहले कि भाई अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस में 25 रुपए में हमको भर के कार्ड मिलता था
1: जी,
0: तो आजकल सब कार्ड बने हैं, वो हम दिखाते थे तो हमको लैब में जाने देते थे।
1: अच्छा,
0: शूटिंग में हमको जाना है जाने देते थे, कि तो उस टाइम, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, उस टाइम में भी स्ट्रिक्ट था मगर इतना ये नहीं था, गड़बड़ जो होती है आजकल हाँ, वो नहीं था, तो वो हम दिखाते थे हमको छोड़ देते थे। फिर उसके बाद हमारा कार्ड बना मेरा असिस्टेंट का 78 में
1: जी,
0: उसके बाद मुझे मनोकामना पिक्चर मिली थी, तो हमको कार्ड मिला था, तो हमारा उस टाइम में फीस कुछ हमसे 251 रुपए लिए थे।
1: अच्छा,
0: एसोसिएशन ने
1: जी,
0: जो कि उनको लेते हैं, सब एसोसिएशन में मेंबर बने लेने आते हैं, तो उसके बाद वो कार्ड देते, तो कार्ड में लिखा रहता है कि IFDA जो आप बोले ना
1: हाँ, AFE लिखा होता
0: है, AFE लिखा रहता है
1: हाँ,
0: तो वो कार्ड ऐसा रहता है कि वो हमको कार्ड मिल जाता है
1: जी जी जी,
0: तो ये कार्ड में हमको हम किधर भी जा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: और एनी स्टेट में ये अप्रूवल है गवर्नमेंट से
1: हाँ,
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एसोसिएशन फेडरेशन अप्रूवल है
1: हाँ,
0: जैसा हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमको जाना पड़ता है मद्रास, एडिटिंग के लिए मैं मद्रास जाता था, कलकत्ता जाता था, भुवनेश्वर जाता था, जितने भी लैब है उधर जाता था, तो उधर हमको ये कार्ड कैरी करना पड़ता था।
1: अच्छा,
0: तो ताकि वो बोलते थे कि हम इधर के मेंबर है और ये हम ऐसा है, तो AFE का मतलब ये है, एसोसिएशन ऑफ फिल्म एडिटर।
1: चलिए, यहाँ इस बात पे एक और गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, कौन सा गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: मैं तो सर जिंदगी में नोक झोंक
1: जी,
0: प्यार के साथ में नोक झोंक जो होना जरूरी है
1: हाँ।
0: आज हम बीबी के पास चले जाते हैं, हमारी बीबी रूठी रहती है, कभी हम देर से जाते हैं।
1: अच्छा।
0: हमारी लाइन ऐसी है, कभी कभी हम 2-3 दिन घर नहीं जाते थे तो रूठी रहती थी, तो उसके ऊपर एक गाना है शम्मी कपूर का, जवां मोहब्बत पिक्चर का
1: हाँ।
0: रूठो रूठो ना मेरी जान, इसी बहाने आज तेरी मेरी होगी पहचान।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है, आइए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।

0: दिलीप जी, एडिटिंग की बात हम कर रहे हैं। एक जमाना था जब फिल्में रील पर बनती थी, निगेटिव रील हुआ करता था
1: जी, जी।
0: और वो फुटेज आपके पास आता था, आप उसको एडिट करते थे। अब जमाना बदल गया है, सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है। शूटिंग जो कैमरे भी जो है वो डिजिटल कैमरे हैं
1: जी सर।
0: तो शूटिंग जो है उसमें डेटा के रूप में वो शूटिंग कैद हो जाती है और बाद में उसकी एडिटिंग भी उसी तरह से होती है कंप्यूटर पे। ये जो फासला है रील से डिजिटल कैमरे तक का, आपको भी ये सीखना पड़ा होगा?
1: नहीं सर, हमारे पास क्या है कि मेरा क्या हुआ कि मेरे जो प्रोड्यूसर जितने भी है,
0: हाँ
1: प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने में हम पर डिपेंड है।

0: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ढप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतर्देशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

साथियों, हाजिर हूँ मैं शेफाली कपूर आपके मनपसंद कार्यक्रम मन चाहे गीत के साथ। साथियों, एक लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ है। आप सभी के पत्रों का बेसब्री से इंतजार है हमें। वैसे आज है संडे, रविवार यानी छुट्टी का दिन। आप में से कुछ साथी इस समय चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो कुछ मंडली में बैठकर बातचीत, तो कुछ साथी पेड़ के नीचे चारपाई डालकर मोबाइल या फिर ट्रांजिस्टर सिरहाने रख के बस इंतजार कर रहे होंगे मन चाहे गीत कार्यक्रम का। क्यों, है ना? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम मन चाहे गीत, और ये है आज का आपका अपना पहला मनचाहा गाना।

यकीन मानिए, मनचाहे गीत कार्यक्रम में भी आपके पत्रों से बहार आ जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि आज मनचाहे गीत कार्यक्रम में जो पहली फरमाइश पूरी हुई, हमारे इन साथियों ने फरमाइश भेजी थी और फिल्म के नाम जो है वो था जीने की राह। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और पसंद हमारे इन साथियों की। कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनू राज शिवानी श्रीमाली। तो आपकी फरमाइश पूरी हुई साथियों। आज है दोबारा शुरू हुए कार्यक्रम मनचाहे गीत का दूसरा दिन, तो फटाफट पोस्टकार्ड पर अपनी पसंद का गीत अपने नाम और पते के साथ भेज दीजिए और इंतजार कीजिए अपने पसंदीदा गीतों के शामिल होने का। बहरहाल अब हम बढ़ेंगे आज के कार्यक्रम में आपकी दूसरी पसंद की ओर, जो है गुनाहों का देवता फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत और पसंद किसकी, हेतु रांची से हमारे श्रोता प्रवीण कुमार की।

0: लता मंगेशकर की आवाज में गुनाहों का देवता फिल्म का ये गाना सुना। अगली फरमाइश किसकी होगी, किस गाने के लिए होगी, सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आईं फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजारा।
0: 1993 फिल्म साहिबा।
2: कैसे जियूंगा मैं।
0: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
3: नजरों से कह दो प्यार।
0: उजाले उनकी यादों के 3 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आँखों में
2: काजल है।
4: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथियों, अभी तक आप सभी के कुछ ही फरमाइशी पत्र हम तक पहुंचे हैं, तो भई जल्दी जल्दी पत्र लिखिए, हमें भी इंतजार है आपके फरमाइशी खतों का। और हाँ, एक बात और, अपना नाम और पता साफ अक्षरों में लिखें ताकि हम आपका नाम और पसंद आपकी साफ साफ पढ़ सकें। तो चलिए अब बढ़ा जाए आज के इस कार्यक्रम के अगले गाने की ओर। और हमारे किन साथियों की पसंद है सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना।

0: हम वफा करके भी तन्हा रह गए। निकाह फिल्म से आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज। हसन कमाल ने इसे लिखा था और रवि की तर्ज थी। और पसंद किसकी थी ये भी बता दी जाए। इसे पसंद किया था जिला वाशिम वनोजा तांडा मैथुन से सानिका राठौर, एस आर टेलर, जय राठौर, सुनील राठौर, इंदुबाई राठौर और कुमार आशीष। और इसी गाने को पसंद किया था ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमजद अंसारी और अतीक अंसारी। चलिए एक संदेश और सुन लेते हैं, उसके बाद आज के कार्यक्रम का अगला गाना।
1: तुम्हें याद करते करते
2: छाया गीत
1: लग जा गले।
2: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
3: तेरे सपने अब
2: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
3: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
2: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

तो चलिए इस संदेश के बाद बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर। तो बता दी जाए कि ये पेशकश कौन सी है। पापा कहते हैं, हाँ पापा कहते हैं फिल्म का नाम है। उदित नारायण की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, राजेश रोशन का संगीत। और पसंद किसकी? पसंद है हमारे इन श्रोताओं की, गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आप सबकी पसंद पर आपका पसंदीदा ये गाना।

0: पापा कहते हैं फिल्म के इस गाने के साथ ही अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम यही पूरा होता है। साथियों, एक से बढ़कर एक आपकी फरमाइशें रही। अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग में कल आपने सुना नाटक इंस्पेक्टर जनरल का पहला भाग, आज सुनते हैं दूसरा और आखिरी भाग। ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रेडियो रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक सत्येंद्र शरत, प्रस्तुति विविध भारती की।
1: अरे आप लोग खड़े रह गए, बैठिए ना।
2: मेयर साहब
1: जी, आप तो सचमुच बहुत ही सज्जन पुरुष हैं। और मैं समझा था कि आप मुझे
3: डॉबचिंस्की, जहां तक मैं सोचता हूँ ये अपने को छिपाए रखना चाहता है। ठीक है, हम भी ये जाहिर नहीं होने देंगे कि हम इसे पहचान गए हैं,
4: लेकिन आप इससे बातें तो कीजिए, तभी तो ये खुलेगा।
3: तुम ठीक कहते हो
2: हुजूर, मैं कुछ कहने की दृष्टि
1: नहीं। हाँ कहिए कहिए।
2: नहीं, मैं अपने को इसी योग्य नहीं।
1: अरे आप कहिए तो।
2: देखिए, वो मेरे मकान में एक बहुत ही साफ सुथरा और हवादार कमरा है, अगर आप वहाँ। देखिए कृपया इस बात का कोई दूसरा मतलब ना निकालिएगा, मेरे मन में तो देखिए
3: आप क्या बात करते हैं, मैं तो खुशी से ऐसी अच्छी जगह जाने के लिए तैयार।
2: अब आपसे क्या कहूँ, मेहमान नवाजी का तो मुझे बचपन से ही शौक है।
3: मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी भेंट हो गई, हुजूर ने मुझे याद किया।
2: बिल्ला
5: वो तो मैंने आपको सुबह ही दे दिया था।
3: मेरे पास इन बेकार चीजों को देखने के लिए वक्त नहीं है। ये बताओ कुल कितना बचा?
1: जी आप क्यों खामखा परेशान होते, वेटर तुम जाओ, पैसे हम पहुंचा देंगे।
5: जी बहुत अच्छा।
2: हुजूर आप शहर का मुआयना करना चाहेंगे?
1: मुआयना
2: जी?
1: आपका मतलब?
2: शायद आप ये देखना चाहें कि यहाँ के दफ्तर

0: और दूसरी संस्थाओं में कैसा काम वाम होता है?
1: आप क्यों खुश? डॉबचिंस्की, मैं तुम्हें दो पर्चियां लिख देता हूँ, एक अस्पताल में जेमलियानिका को दे देना और दूसरे मेरी पत्नी को दे।
2: जी बात है,
0: आप इजाजत दें तो मैं अपनी पत्नी को दो शब्द लिख दूं।
1: जरूर जरूर, पर यहाँ कागज तो होगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस बिल के पीछे लिख दीजिए।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया। तुम फिक्र ना करना, इंस्पेक्टर साहब को बढ़िया खाना और एक बोतल शराब मिलने की देर है, सब मामला ठीक हो जाएगा। वो मैडीरा की बोतल ठीक रहेगी। डॉबचिंस्की, ये लो, चलिए।
1: आसिफ, तुम मेरा सामान लेकर आ जाना।
0: हाँ, तुम किसी से भी मेयर साहब का बंगला पूछ सकते हो, समझे ना। आइए हुजूर, आइए।
3: ओह, इंस्पेक्टर जनरल ऊंचे दर्जे के लेखक भी हैं। अच्छा डॉबचिंस्की, उसकी उम्र कितनी होगी?
4: उसकी आंखें काली हैं या भूरी?
3: मारिया, तू चुप रह।
5: एकदम गबरू जवान, चेहरा ऐसा रौबदार कि अच्छा खासा आदमी दहशत खा जाए। अरे हाँ, मेयर साहब ने आपके लिए चिट्ठी दी थी,
3: ये लाओ मुझे तो
5: लीजिए। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी देख लूँ अस्पताल का मुआयना कैसा चल रहा है।
3: मिश्का, मिश्का, अरे कहाँ मर गया? मारिया बेटी, अब हम जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए, वो आने ही वाला होगा।
5: लो, वो लोग आ गए।
1: जी, सचमुच बहुत अच्छी संस्थाएं हैं आपके शहर में, और सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात से हुई कि आप प्रत्येक यात्री से इन संस्थाओं का निरीक्षण कराते हैं। दूसरे शहरों में तो यात्रियों को अंदर घुसने तक की इजाजत नहीं है।
0: अजी, दूसरे शहरों में अफसरों को सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, और एक मैं
1: आपने तो खाना भी कमाल का खिलाया मेयर साहब। सुनिए, हमने जहाँ खाना खाया वो अस्पताल ही था ना?
0: जी जी हाँ श्रीमान,
1: लेकिन वहाँ तो बहुत सारी चारपाइयाँ खाली थी। मेरा मतलब है, मरीज थोड़े ही दिखाई दिए।
0: जी, बात यह है श्रीमान कि मैं हरचंद यही कोशिश करता हूँ कि मरीज जल्द से जल्द ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए हुजूर, हमारे अस्पताल तक आते आते मरीजों का बुखार उतरना शुरू हो जाता है और फिर हमेशा के लिए उतर जाता है।
6: हुजूर, मेयर की जिम्मेदारी के आगे बाकी चीजें कुछ भी नहीं है। दिमाग हर घड़ी शहर के बारे में ही सोचता रहता है, कहीं कोई भूल चूक ना हो जाए। और अपने परिश्रम का पुरस्कार मैं भगवान से यही मांगता हूँ, हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं हमेशा इसी तरह अपना कर्तव्य निभाता रहूं।
1: आप ठीक कहते हैं, आत्मा का सुख ही सच्चा सुख है।
0: जी, जी, जी।
1: इसी आत्मिक सुख के लिए मैं कहानियां लिखता हूँ, कविता करता हूँ।
7: देखा डॉबचिंस्की, इंस्पेक्टर जनरल की एक एक बात से पता चलता है कि ये कितना विद्वान आदमी।
1: मेयर साहब
0: जी,
1: आप अपने काम से थक जाते हैं तो अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? आपको ताशवाश खेलने का शौक नहीं?
0: वाह बेटा, मेरे पेट में घुसकर सब कुछ मालूम करना चाहता है, लेकिन बच्चों मैं भी हवा नहीं लगने दूंगा। हाँ जी नहीं, मुझे कोई शौक वौक नहीं है, मुझे तो उन लोगों पर तरस आता है जो ऐसी बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं।
1: साहब, ये तो अपना अपना सोचना है, मैं तो अक्सर ताश की बाजी लगा लेता हूँ।
8: बड़े लोगों के बड़े शौक।
0: अरे आओ आओ आओ, इधर आ इधर। ये मेरी पत्नी है एना, और ये मेरी बेटी मारिया।
1: तो तशरीफ रखिए, इधर बैठिए ना।
4: ये हमारा सौभाग्य है कि इस घर में आपने दर्शन दिए,
1: और मैं कहता हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी अच्छी जगह आकर इतने अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ।
4: आप पीटर्सबर्ग जैसी जगह से आए हैं, इस छोटे से शहर में तो आपको यूं बहुत बुरा लग रहा होगा।
1: क्या क्या, कहाँ पीटर्सबर्ग की रौनक और कहाँ, लेकिन विश्वास कीजिए, इस वक्त तो मैं पीटर्सबर्ग को बिल्कुल भूल गया हूँ, बिल्कुल। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। मैं बेकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी को ये पता ना चले मैं कौन।
0: जी,
1: लेकिन आखिर कोई कहाँ तक छिप सकता है, बताइए बताइए बताइए। कहीं भी जाता हूँ लोग

0: पहचान लेते हैं।
1: जी, जी।
0: देखो देखो देखो इवान अलेक्जेंड्रोविच हेलेस्कोव जा रहा है। एक बार लोगों ने मुझे कमांडर इन चीफ भी समझ लिया।
2: आप इतने आकर्षक और प्रभावशाली हैं कि
0: नहीं नहीं
2: मैंने सुना है आप खुद भी ऊंचे दर्जे के लेखक हैं।
0: ये तो मैं नहीं कह सकता, पर लिखा मैंने बहुत है, बहुत। मुझे तो अपनी सब किताबों के नाम भी याद नहीं।
2: अगर मैं भूलती नहीं हूँ तो ला मिसराब आप ही का लिखा हुआ उपन्यास। पर मम्मी, ला मिसराब के लेखक तो विक्टर ह्यूगो हैं। मारिया, तू बीच में मत बोला कर।
0: नहीं नहीं, इन्हें डांटिए नहीं। मिस मारिया, आप ठीक कहती हैं, बिल्कुल ठीक कहती हैं। लेकिन इस नाम के दो उपन्यास, उनमें से एक मैंने लिखा है।
2: अच्छा।
0: मैडम, आप लोग कभी पीटर्सबर्ग आइए ना, स्टेशन पर उतरते ही आपको किसी से भी पता चल जाएगा इवान अलेक्जेंड्रोविच का बंगला किधर है।
2: काश हम जा पाते।
0: मैंने तो बंगले को मेहमानों के लिए ही सजा रखा है। मिसाल के तौर पर ड्राइंग रूम के ठीक बीचों बीच मेज पर क्या रखा है, क्या रखा है? हाँ हाँ हाँ, एक तरबूज रखा है। उसकी कीमत है सिर्फ सिर्फ सिर्फ 700 रूबल। मेहमानों के लिए सूप कहाँ से? पेरिस से बंद डिब्बों में मंगाया जाता है। हर रात डरद डरद डरद डांस होता है। दुनिया भर से मेरे नाम चिट्ठियां आती और सब पर लिखा होता है योर एक्सीलेंसी वगैरह वगैरह। एक बार जब मैं होम मिनिस्ट्री में था, वहां का डायरेक्टर जनरल कहीं चला गया।
1: जी,
0: सब लोगों की नजरें उस खाली कुर्सी पर थी, लेकिन किस्मत देखे, सरकार ने मुझे उस कुर्सी पर बैठा दिया। मैं तो जैसे घबरा गया, सोचा मना कर दूं, लेकिन फिर ख्याल आया, वो है ना अपने वो जार सलामत। हाँ हाँ, जार सलामत नाराज हो जाएंगे। मैं जानता हूँ एक दिन जरूर वो मुझे फील्ड मार्शल बना कर रहेंगे। मुझे बहुत मानते, बहुत मानते
3: हुजूर।
0: क्या हुजूर हुजूर लगा रखी है, क्या कहना है
1: जी? आप आराम करना चाहते हो तो मेरा मतलब
0: आराम
1: जी,
0: आराम। खैर, आराम ही करते हैं। साहिबान, खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था।
2: मैं कहती हूँ मारिया, इतना विद्वान और सब व्यक्ति किसी जनरल से कम नहीं हो सकता।
4: जरूर होगा मम्मी, और सुंदर भी कितना है। बार बार मेरी ओर देख रहा था, मुझे तो बहुत शर्म आई।
5: क्या मुसीबत है, सुबह सुबह तुम लोगों ने चेंचें मचानी शुरू कर दी। कुछ ख्याल है, इंस्पेक्टर जनरल बराबर के कमरे में सो रहे हैं, बराबर के कमरे में। जब से उन्होंने अपने बारे में बताया है, मेरे पांव के नीचे से तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। जानती हो है ना, शराब के नशे में आदमी दिल के सारे राज खोल देता है।
2: देखो, जनरल साहब का नौकर आ रहा है। औसिफ, औसिफ
6: जी,
2: क्या साहब अभी सो रहे हैं?
6: जी हाँ।
5: अच्छा औसिफ, साहब को क्या क्या बातें पसंद है, मेरा मतलब है वो किन किन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं?
2: औसिफ, तुम्हारे साहब की अभी शादी तो नहीं हुई?
5: वो तुम लोगों की बकवास बंद होगी या नहीं, भागो यहाँ से तुम दोनों।
2: हम लोगों को बात करने का मौका नहीं देते।
6: मालिक ज्यादा नखरे नहीं करते।
5: अच्छा।
6: वो बस इतना ही चाहते हैं कि जहाँ जाएं उनका और मेरा अच्छी तरह स्वागत हो।
5: ये तो होना ही चाहिए, ये तो
6: मालिक मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं।
5: ये तो होना भी चाहिए। अच्छा भैया सुनो, रात तुम्हें तो नींद अच्छी तरह आ गई थी ना?
6: जी हाँ जी हाँ, खूब सोया।
5: अच्छा, तुमने चाय वाय भी पी है? खैर, एक प्याला गर्म चाय और मंगवाता हूँ। और हाँ सुनो, ये कुछ रूबल तुम अपने पास रख लो, कभी भी जरूरत पड़ सकती।
6: आपकी बहुत कृपा
5: है भैया, तुम तो बहुत ही भले और प्यारे आदमी हो।
6: अच्छा, मैं जरा देखूं कहीं

0: मालिक जाग ना गए?
1: हाँ जरूर जरूर, मैं भी जल्दी से तैयार होकर जाता हूँ।
2: कुछ फरमा रहे
0: थे जैसा जी
2: भाई, मेरा ख्याल ये है ज्यादा अच्छा हो हम लोग लाइन बना लें, इंस्पेक्टर जनरल के सामने भेड़ बकरियों की तरह जाएंगे तो वो हमें गोली मार देंगे।
1: ठीक है ठीक है।
2: स्कूल सुपरिटेंडेंट साहब जी आप इधर आ जाइए
0: जी,
2: हेल्थ अफसर साहब आप इनके पीछे, और पोस्टमास्टर तुम इस तरफ आ जाओ
1: जी। बहुत अच्छा। और हम
2: हमारा क्या होगा?
1: हमारा क्या होगा?
2: मिस्टर बॉब डॉब आप क्यों आए हैं? आप सरकारी मुलाजिम थोड़े हैं।
0: जज साहब मेरा एक सुझाव है
2: जी,
0: किसी बहाने से इंस्पेक्टर साहब की जेब गर्म कर दी जाए।
2: अरे भाई यही मैं सोच रहा था, लेकिन वो इतना बड़ा अफसर है, हमारा इरादा समझ गया तो हमें कच्चा ही चबा जाएगा। पर अगर हम ये पैसा भ्रष्टाचार उन्मूलन चंदा कहकर साहब की जेब में डाल दें तो कैसा रहेगा? कहिए क्यों पोस्टमास्टर साहब?
3: एक बहाना ये भी हो सकता है कि हम कह दें साहब हमारे डाकखाने में इतने रूबल का एक गुमनाम मनी ऑर्डर आया है।
0: सुनिए सुनिए, ये सब तरीके गवारू हैं। सब प्रगतिशील और अनुशासनबद्ध देशों की तरह अच्छा यही है कि हम लोग एक एक करके अंदर जाएं, और क्योंकि इस हालत में ये बात दो आदमियों के बीच ही रहेगी। जज साहब पहले आप जाइए।
2: नहीं नहीं नहीं, पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब। सबसे पहले उसने तो

0: पहले तुम जाओ हेल्थ अफसर साहब, सबसे पहले उसने तुम्हारे अस्पताल में अन्न जल ग्रहण किया है।
1: बाप रे, किसी बड़े अफसर को देखते ही मेरी तो टांगे कांपने लगती हैं।
2: तो आप ही जाइए ना जज साहब, आप में भाषण देने की बड़ी क्षमता है, ऐसा लगता है जैसे प्लेटो बोल रहा
1: है। बिल्कुल जज साहब, जज साहब पहले आप ही जाइए।
0: अच्छा तो मैं ही चलता हूँ
1: जी।
3: कम वक्तों ने कल इतना खिलाया पिलाया कि अभी तक खुमारी चढ़ी हुई, लेकिन औसिफ प्यारे मजा आ गया, दो चार दिन भी यहाँ रह गए तो सेहत बन जाएगी।
2: देखो तो मेरी भी बड़ी खातिरदारी कर रहे हैं, समझ में नहीं आता क्यों। मेयर मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हारे साहब को क्या क्या बात ज्यादा पसंद है।
3: ये तुम नहीं समझोगे प्यारे।
2: अच्छा,
3: इन लोगों को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी है।
2: अच्छा,
3: कि मैं कोई बहुत बड़ा अफसर
0: हूँ। आइए तशरीफ लाइए आसिफ। तुम जाओ।
4: मैं जिस का शहर हूँ, माफ कीजिएगा हुजूर, मैं शहर का डिस्ट्रिक्ट जज हूँ।
0: बैठे बैठे, आपसे मिलकर बहुत खुश हुई। तो सुनाइए आपका काम कैसा चल रहा है।
4: हुजूर, ये काम संभालने के 3 महीने बाद ही मेरा काम देखकर सरकार ने मुझे विशेष पुरस्कार प्रदान किया था। और
0: अरे मिस्टर ल्यापकिन त्यापकिन, आपकी जेब से कुछ नीचे गिरा है।
4: नहीं नहीं नहीं हुजूर, भला मुझ जैसे छोटे आदमी की जेब से क्या गिर सकता है।
0: मैं कहता हूँ जरूर कुछ गिरा है।
4: नहीं कुछ नहीं गिरा हुजूर।
0: ये कितने सारे नोट हैं। अरे भाई, आप इन्हें बेकार समझते हैं तो हमें ही दे दीजिए।
4: यहाँ दिन हुजूर, ये लीजिए हुजूर, आप ही के तो हैं।
0: तो ऐसा कीजिए कि ये नोट मुझे उधार दे दीजिए, मैं बाद में वापस।
4: बाद में ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न कीजिए, मैं आपका अमून छम खराब नहीं करूंगा। मुझे आज्ञा है।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर। अच्छा आदमी था ये भी, जज होते ही अच्छे हैं, बेचारा 400 रूबल दे गया।
1: श्रीमान, मैं अंदर आने की गुस्ताखी कर सकता हूँ।
0: हाँ जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, ठीक है।
1: मैं शहर का स्कूल सुपरिंटेंडेंट हूँ।
0: कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं।
1: जी है।
0: यहाँ आते हुए रास्ते में एक जगह
1: जी
0: मैं एक अजीब चक्कर में उलझ गया, और नतीजा ये कि तब से जेब में 1 पैसा भी नहीं है
1: जी। हुजूर, अगर आप कुछ और ना समझे तो ये थोड़े से रूबल स्वीकार कर लीजिए।
0: ठीक है, ये 400 रूबल मेरे ऊपर उधार समझे
1: जी, मेरे लिए ऐसा सुनना भी पाप है। अच्छा मुझे आगे दीजिए। नमस्ते।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते। कौन कौन साहब हैं
1: जी?
0: अरे आप वहाँ खड़े खड़े क्यों कांप रहे हैं, अंदर आ जाइए
1: जी। मेरा नाम जिमलानिका है। कल आपने मेरे अस्पताल को ही अपने दर्शनों से पवित्र किया था।
0: हाँ हाँ हाँ, लेकिन मिस्टर जिमलानिका, मेरा ख्याल है आज आप कल से कुछ बड़े लग रहे हैं।
1: हो सकता है हुजूर, हो सकता है, खुशी पाकर ही आदमी बड़ा होता है। विश्वास कीजिए, मैं जज, स्कूल सुपरिंटेंडेंट और मेयर की तरह नहीं हूँ, जिनका न कोई ईमान है न चरित्र। मुझे यही आश्चर्य है कि ऐसे निकम्मों को सरकार ने भर्ती कैसे
0: करी। अच्छा? मुझे इन बातों का बिल्कुल पता नहीं था। आप देखिए ऐसा कीजिए, एक बार फिर आइएगा और मुझे सारी बातें बताइएगा।
1: जरूर।
0: देखिए यहाँ आते हुए रास्ते में न जाने कहाँ मेरा बटुआ गिर गया। अगर आप मुझे 400 रूबल उधार दें।
1: जरूर जरूर, ये लीजिएगा। अच्छा मैं फिर आपके दर्शन करूंगा।
0: जी शुक्रिया शुक्रिया, जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा।
5: नमस्कार श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच बाबसिंची हूँ, इस शहर का एक सच्चा नागरिक और जमींदार।
6: श्रीमान, मैं पीटर इवानोविच डॉबचिंस्की हूँ, शहर का दूसरा सभ्य नागरिक और जमींदार।
1: जमींदार?
0: आप दोनों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। सुनिए, आपके पास कुछ पैसे होंगे?
5: पैसे?
0: अगर आप मुझे 1000 रूबल उधार दे सके तो।
5: विश्वास कीजिए, मैं घर से इतना पैसा लेकर चला ही नहीं।
6: क्षमा कीजिए, मैं तो घर से ही नहीं आया हूँ।
0: कोई बात नहीं, मैं 1000 की जगह 100 रूबल से भी काम चला सकता हूँ।
5: डॉबचिंस्की, तुम्हारे पास 100 रूबल तो होंगे ही, मेरे पास तो कुल जमा 40 है।
6: मेरे पास भी 25 रूबल ही निकले हैं।
5: अरे ध्यान से देखो, तुम्हारी बाई जेब उभरी हुई है, कुछ रूबल अस्तर में नाटक।
0: अरे अरे आप लोग परेशान ना होइए, लाइए 65 ही दे दीजिए। हाँ आप लोग यहाँ किसी काम जाए?
5: जी हाँ श्रीमान, पीटर्सबर्ग में जिन बड़े बड़े अधिकारियों से आपका मिलना जुलना हो, उनसे बस इतना अवश्य कह दें कि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं।
6: और इस शहर के पीटर

0: दीवानों में डॉग चिस्की को भी अच्छी तरह से जानते हैं।
1: इसमें क्या है? मैं जरूर कह दूंगा, दो तीन बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा, कई बार कह दूंगा।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: कितने गधे हैं ये लोग, मुझे पीटर्सबर्ग का इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया। मैंने भी रात नशे में ना जाने कहां कहां की हाकी होगी। क्यों ना ये सारी घटना अपने लेखक मित्र ट्रिपिचकिन को लिख भेजूं, वो इस जोरदार मामले पर फटाफट कोई कहानी या फिर ड्रामा लिख डालेगा। अभी उसे चिट्ठी लिखता हूं। प्रिय मित्र ट्रिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूं।
3: मालिक, शहर के कुछ व्यापारी आपके दर्शन करने और मेयर के शिकायत करने आए।
1: उन लोगों से कह दो फिर किसी वक्त आए, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे कुछ देने के लिए लाए हो तो लेना मत भूलना।
3: बहुत अच्छा मालिक।
1: अरे सुनो से
3: जी,
1: तुम एक घोड़ा गाड़ी तैयार करा दो।
3: बहुत अच्छा।
1: कह देना साहब को सरकारी काम से कहीं जाना है।
3: बहुत अच्छा।
1: अच्छा, जरा रुको, ये चिट्ठी भी डाक में डाल देना।
3: बहुत अच्छा।
1: बाकी मिलने पर तुम्हारा हेलस्त को। मिस्टर वेसेलविच ट्रिपिचकिन, पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, सेंट पीटर्सबर्ग। ये लो
3: सर।
1: इन दो दिनों में अच्छी खासी कमाई हो गई।
4: मैं आ सकती हूँ?
1: आइए आइए, वो आए हमारे कमरे में, हमारी किस्मत। मिस मारिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था।
4: शायद आप किसी जरूरी काम में व्यस्त थे, मैंने आकर...
1: मेरे लिए आपसे बड़ा क्या काम हो सकता है मिस मारिया। ओहो, आप शर्माती हैं तो मैं जैसे अपनी सुध-बुध भूल जाता हूँ।
4: सुनिए, क्या आप मेरी नोटबुक में कुछ कविताएं लिख सकेंगे?
1: क्यों नहीं, काश कविताओं की जगह मैं अपना प्यार लिख सकता।
4: प्यार? वो क्या होता है?
1: ये भी जान जाएंगी। मेरे मेरे नजदीक आइए।
4: हम सीधे सादे आदमी हैं, इसी से आप हमारा मजाक उड़ाना चाहते हैं। मुझे जाने दीजिए।
5: मारिया, तू यहाँ, ये क्या बदतमीजी है?
1: मेरी सहायता कीजिए मैडम, मैं अब मारिया के बिना नहीं रह सकता। मैं इन्हें जीवन संगीनी बनाना चाहता हूँ।
5: ओह, सुन लिया मारिया, तेरी जाति और बेवकूफी के बावजूद आदरणीय मेहमान तुझसे विवाह करना चाहते हैं।
4: मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ।
1: मैडम, हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।
6: हुजूर, हुजूर, हुजूर, मेरे ऊपर दया कीजिए। शहर के व्यापारियों ने जो मेरे खिलाफ शिकायतें की हैं, उनमें से एक भी सच नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ।
5: इस वक्त ये बातें बंद कीजिए ना। जानते हैं, साथ में हमारी मारिया का हाथ मांगा है।
1: मूर्ख कहीं की। हुजूर, आप मेरी पत्नी की बात पर बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा, ये तो शुरू से ही मूड मती रही
6: पर
1: है।
6: ये सच कह रही हैं। मैं मारिया से विवाह करना चाहता हूँ।
1: हुजूर, इस नाचीज से मजाक कर रहे हैं।
6: मेरी बात पर विश्वास कीजिए।
1: मेरी बेटी की शादी इंस्पेक्टर जनरल से, इंस्पेक्टर जनरल से। ओ एंटन एंटोनोविच, आज से तेरी दुनिया ही बदल गई।
3: हुजूर, गाड़ी तैयार,
1: हम अभी आते हैं। क्या हुजूर, यहाँ से विदा हो रहे हैं?
6: हाँ, वो एक दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मेरे चाचा बीमार हैं, बस परसों तक वापस आ जाऊंगा।
1: ठीक है, ठीक है। मेरा ख्याल है हुजूर, इस वक्त आपके पास पैसे कम हो?
6: नहीं नहीं, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: सेवा में कितना पेश कर?
6: आप मुझे 200, मेरा मतलब है 400 रूबल दे दीजिए।
1: ये लीजिए, एकदम नए नोट है।
6: नए नोट, नई आशा। अच्छा, मैं चलता हूँ।
4: मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी।
1: प्रतीक्षा करने में बहुत आनंद आता है मिस मारिया।
6: आपकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।
1: शुक्रिया,
6: शुक्रिया।
1: है ना, तुमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अचानक एक दिन हमारी किस्मत के सितारे जगमगा उठेंगे। कल तक तुम एक मामूली मेयर की बीवी थी, लेकिन आज तुम ऐसे आदमी की सास हो जिसके आगे बड़े बड़े अफसर सिर झुकाते हैं।
5: सुनिए जी, अब हम लोग इस छोटे से शहर में नहीं रहेंगे। हाँ। यहाँ तो अभी से मेरा दम घुटने लगा है।
1: यहाँ रह कैसे सकते हैं? शादी के बाद इंस्पेक्टर जनरल हमें फौरन पीटर्सबर्ग ले जाएंगे। है ना, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिन मेयर नहीं रहूंगा।
5: छी छी छी, आप जैसे आदमी के लिए मेयर बनना डूब मरने की बात है। हा? देखना, आप जल्दी ही जनरल या कोई दूसरे बड़े अफसर बन जाएंगे।
1: और फिर देखना, मैं शहर के इन बदमाश व्यापारियों की कैसी मट्टी पलीत करता हूँ। बेईमान कहीं के, मेरी शिकायत करने आए।

0: छोड़िए जी, हमें इन कबूतरों के मुंह नहीं लगना
1: है। बिल्कुल
0: हा? अब आप अपना तौर तरीका बदलिए, इन घटिया लोगों के साथ बैठना उठना छोड़िए। काउंट, लॉर्ड वगैरह बड़े बड़े आदमियों में बैठना उठना है।
1: ओ आओ भाई बाबा डॉक, आओ आओ आओ।
2: मेयर साहब, आपको और मैडम ऐना को बाब चिंस्की की ओर से बहुत बहुत बधाई,
3: और डॉक चिंस्की की ओर से भी बहुत बहुत बधाई।
1: शुक्रिया शुक्रिया। ओहो आइए आइए मिस्टर स्कूल सुपरिटेंडेंट, तशरीफ लाइए।
4: मुबारक हो, मुबारक हो मेयर साहब, मुबारक हो। मिसेज है ना, मेरी पत्नी भी आपको बधाई देने आई है।
5: भाई मेरी भी हार्दिक बधाई है मेयर साहब,
4: मेरी मुबारक कबूल फरमाइए जनाब।
6: लेकिन ये बात बनी कैसे?
1: इसमें आश्चर्य की क्या बात है लियाकत कैप्टन, अफसर पहली भेंट से ही मुझसे बड़ा खुश था। उसने मुझसे मारिया का हाथ मांगा,
0: लेकिन बहुत ही तहजीब से मुझसे कहने लगा, मैं तो आपके गुणों पर मुग्ध हो गया।
7: मम्मी ये तो उन्होंने मुझसे कहा था।
0: मारिया बीच में नहीं बोला करते, फिर कहने लगा, अगर आपको मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है तो मैं इस जीवन से मृत्यु ही अच्छी समझता
7: हूं। ओ मम्मी ये भी उन्होंने मेरे लिए कहा था।
0: हाँ हाँ मैं कब कहती हूँ कि मेरे लिए कहा था।
1: मित्रों अब मैं आपका साथ छोड़कर पीटर्सबर्ग चला जाऊंगा, शायद वहां मुझे जनरल बना दिया जाए।
5: अवश्य जाइए अवश्य जाइए, बड़ा जहाज गहरे पानी में चलता हुआ ही छोड़ा देता है।
4: आखिर भगवान ने हमारी सुन ही ली।
8: कई परिश्रम और ईमानदारी का फल कभी न कभी मिलता ही है।
5: हुजूर इस गरीब को भूल न जाइएगा, अब मुझे आप ही का सहारा है।
8: कोई अच्छा मौका हो हुजूर तो इस नाचीज हेल्थ ऑफिसर को भी याद कर लीजिएगा।
1: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
0: ओफो, आपकी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है।
1: क्या?
0: अभी से दुनिया भर से वादे करने लग गए हैं, पता नहीं पीटर्सबर्ग में आपको इन छोटी छोटी बातों के लिए फुर्सत मिलती भी है या नहीं।
9: अंधेर हो गया,
1: क्या हुआ क्या हुआ क्या बात हो गई?
9: अभी अभी अभी अभी डाक भेजने की तैयारी कर रहा था तो उस अफसर द्वारा लिखी चिट्ठी पर मेरी नजर पड़ी।
1: अच्छा,
9: लिफाफे पर लिखा था, मिस्टर टिपिचकिन पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट सेंट पीटर्सबर्ग। पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट पढ़कर मेरे तो छक्के छूट गए। मैंने सोचा होना हो जरूर बड़े पोस्ट ऑफिस को मेरी शिकायत भेजी जा रही है, मैंने उसे खोलने का इरादा किया।
1: पोस्ट मास्टर, तुम्हारी ये मजाल, इतने बड़े अफसर की चिट्ठी तुमने।
9: पूरी बात तो सुनिए साहब।
1: क्या?
9: पहले तो मैंने लिफाफे को ऐसे ही थैले में डाल दिया, लेकिन जैसे जैसे मेरे दिल से बार बार आवाज आने लगी, लिफाफा खोल ले, लिफाफा खोल ले, नहीं खोलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। आखिर धड़कते दिल और कांपते हाथों से मैंने लिफाफा खोल ही दिया।
1: तुमने इंस्पेक्टर जनरल की चिट्ठी खोलने की जरूरत?
3: हाँ मेरे साथ ठीक कहते हैं।
9: लेकिन चिट्ठी पढ़कर मालूम हुआ कि वो इंस्पेक्टर जनरल नहीं था।
1: क्या?
9: कोई दबंग था, कोई लफंगा था।
1: क्या बकते हो तुम?
9: मैं सच कह रहा हूँ मेयर साहब, आप कहें तो वो चिट्ठी पढ़कर सुना दूं। सुनिए सुनिए सुनिए, प्रिय मित्र टिपिचकिन, तेरी नई रचना के लिए एक मनोरंजक सच्ची घटना भेज रहा हूँ। ये मेरी बहादुरी का नया किस्सा है।
1: अरे
9: खाली जेब होने पर भी मैं किसी तरह इस शहर में पहुंच गया। होटल का मालिक मुझसे तंग आकर मुझे जेल भेजने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक मेरा भाग्य जाग उठा। यहाँ के भौंदू अधिकारियों ने मेरी कीमती वेशभूषा और रौब दाब देखकर मुझे इंस्पेक्टर जनरल समझ लिया, और नतीजा ये कि अब मैं ठाट से मेयर की कोठी आबाद कर रहा हूँ और लोगों से पैसा समेट रहा हूँ। आगे सुनिए आगे सुनिए, आगे लिखा है, तुम भी यहाँ के कार्टूनों से मिल लो। एक तो मेयर साहब हैं, एकदम गधे जैसा दिमाग, शक्ल उल्लू जैसा है।
1: ये ये ये ये कहीं नहीं लिखा, तुम अपनी तरफ से पढ़ रहे हो। हाँ,
3: आगे आगे आगे पढ़ो।
9: यहाँ का हेल्थ ऑफिसर बिल्कुल सर्कस का जोकर है, स्कूल सुपरिंटेंडेंट के सारे शरीर से हींग की बदबू आ रही है।
4: क्या बदतमीजी है ये?
9: एक जज है, वो अव्वल दर्जे का ऊंचा लगता है।
1: क्या कहा?
9: और यहाँ के पोस्ट मास्टर भी हैं, वो साहेबान, मेरा ख्याल है आगे पढ़ना
3: पड़ेगा। पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए।
5: यहाँ एक पोस्ट मास्टर भी है जो सख्त बेईमान है और तुम्हारे चपरासी की तरह घटिया शराब पीता है। खैर कुल मिलाकर ये लोग।
1: बंद करो ये बकवास।
10: मैं तो कहीं का नहीं रहा, वो बदमाश सारी जगह मेरी बेवकूफी की कहानी सुनाएगा, सारी दुनिया मुझ पर हंसेगी। मेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया था, लेकिन तुम लोगों को किस मक्खी ने काटा था जो इंस्पेक्टर आ गया कि नारे लगा बैठे? बताओ
5: मेयर साहब, सबसे पहले बाब और डाब ने ही ये गप उड़ाई थी।
4: ये बाब और डाब की ही करतूत है।
2: नहीं नहीं भला, मैं ऐसी झूठी बात कैसे कहता?
3: भगवान का नाम लीजिए, मेरी इतनी जरूरत हो सकती?
1: तुम दोनों ठग इसी वक्त मेरी आंखों

0: ने मुझे चौपट करके रख दिया। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। हे भगवान अब मेरा क्या होगा?
1: कौन?
2: मेयर साहब हाजिर हैं।
1: क्या बात है, तुम कौन हो?
2: सरकारी हरकारा। पीटर्सबर्ग से इंस्पेक्टर जनरल साहब अभी यहाँ पधारे हैं, होटल में रुके हैं।
1: अच्छा,
2: उन्होंने आज्ञा दी है कि आप और दूसरे सभी अफसर फौरन उनके सामने हाजिर हो जाएं।
3: क्या? इंस्पेक्टर जनरल?
0: हे भगवान।

ये था नाटक इंस्पेक्टर जनरल। दूसरा और आखिरी भाग ये नाटक गोगोल के प्रसिद्ध नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, भाग लेने वाले कलाकारों के नाम ब्रजेंद्र मोहन, किशोर कपूर, बलदेव राम नागर, तिलक राज मेहता, जफर अहमद, आर एच चिश्ती, कमला कुमारी चोपड़ा, वीता नवल सिंह, शमशेर सिंह ठाकुर, कुलभूषण खरबंदा, बी एल टंडन, बी आर एल सक्सेना, करतार सिंह पवार और यतीन्द्र श्रीवास्तव। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत और ये प्रस्तुति थी विविध भारती की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: धारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981,

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए दूसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना
1: अमजद ने कहीं और दूसरी जगह यूनिवर्सिटी में भी कोई होता है इस किस्म का एक प्ले खेला जो जिसमें अमजद को मेरे वतन के लोगों नाम से प्ले खेला था अमजद खान ने, उसको वहां ट्रॉफी मिली थी। तो कादर खान ने फिर कहा यार रमेश तुम हमेशा ट्रॉफी

0: ले जाते हो। मैंने कहा भाई मैं क्या, स्क्रिप्ट अच्छी होती है, ये होता है होता है। तो मैंने कहानी पढ़ी थी कृष्णचंद्र की, जामुन का पेड़। मैंने कहा यार इसमें बड़ा अच्छा प्ले बन सकता है। तो सागर साहब और कादर खान दोनों साथ में खड़े थे
1: जी।
0: तो कादर खान हमारे प्ले में, मैं आग होता हूँ, मैं मेन रोल करता था, मैं कॉमेडियन का रोल करता था, मेन हीरो का रोल करता था।
1: अच्छा।
0: तो वही हम खड़े थे चर्च गेट पे गेल आउट के बाहर, और मैंने कहा यार ये देखो बड़ा अच्छा। कहते यार मुझे दो, मैं लिख के दूंगा। मैंने कहा ले लो। जब उसने प्ले लिखा तो मैंने कहा भाई वो प्ले दो यार, कंपटीशन नजदीक आ रहा है। चलो रमेश प्ले बहुत अच्छा बन गया। तुम साले हर बार ट्रॉफी जीतते हो, इस बार मैं ट्रॉफी जीतना।
1: हाईजेक हो गया प्ले।
0: हाँ। तो वो प्ले ले लिया उसने।
1: हाँ।
0: अब मैंने दूसरा, मैंने तीन मंजर प्ले खेला
1: जी,
0: तो जिसमें मेरे एक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, लेकिन ट्रॉफी कादर खान को मिली।
1: इस बार वो ले गए,
0: ले गए लास्ट। और इसी साल जो है फिर झगड़े हुए, मारामारी, खून खराबा हुआ। मुंशी जी की वाइफ वाइन स्टेज पे।
1: हाँ।
0: के एम मुंशी की वाइफ
1: जी,
0: भारतीय भवन की मालकिन, उन्होंने कहा भाई बस लास्ट ईयर है, आइंदा यहाँ कंपटीशन नहीं होगा।
1: हाँ हाँ।
0: और 13-14 साल से 52 से कंपटीशन चलता आ रहा था, या 50 से चलता आ रहा था, और ये ईयर था 68 या 69, वो कंपटीशन बंद कर दिया 68 में।
1: बाद में फिर शुरू हुआ,
0: फिर वो उधर बहुत बाद में किया, अभी किया
1: जी।
0: फिर वो किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि फिर क्या हुआ कि मैं जब इप्टा में काम करना शुरू हो गया, कि ये हुआ कि आखिरी क्षमा प्ले हो रहा था जो मैं जिक्र कर चुका था आपसे
1: जी,
0: कि ये प्ले था यादगार मुशायरा, दिल्ली का यादगार मुशायरा।
1: तब तक आखिर क्या थी?
0: अब मैं कॉलेज में पढ़ चुका था, समझिए 23 साल।
1: और ये जो टीनेज रोल और बच्चों के रोल,
0: वो तो बंद हो चुके थे, बहुत पहले पुरानी बात हो गई। तो अब ये जो इनके साथ 68 में मैंने कुछ एक दो प्ले पंजाबी में किए, जो मैं हिंदी में ट्रॉफी ले चुका था, मनमोहन कृष्ण जी के साथ, अचला सिद्धेव के साथ, इनके साथ वो किए, और पंजाबी में वो तुझे आए तुझा पाशी, शतरंज के मोरे को पंजाबी में शतरंज दे मोरे के नाम से खेला
1: जी।
0: और बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा देखने आए थे, और बी आर चोपड़ा ने बहुत हंसते रहे, यश चोपड़ा फर्स्ट रो में बैठे थे, जोर से हंसते थे, और प्ले खत्म होते उन्होंने कहा बेटा तुम आ जाओ, बी आर चोपड़ा साहब ने कहा, मुझसे मिलने आओ। मैं मनमोहन जी के साथ उनके ऑफिस चला गया, बोले तुम पंजाबी पिक्चर मेरे लिए डायरेक्ट करो। उन्होंने पंजाबी में प्ले देखा था। मैंने कहा साहब मुझे तो ग्रामर आती ही नहीं फिल्म की, तो मुझे आप असिस्टेंट रख लीजिए, मैं ग्रामर सीख लूंगा फिर करूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तो कोई पिक्चर चल नहीं रही हमारी, जब कोई अनाउंस होगी तो तुम आ जाना। तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कम्प्लीट हो जाएगी, और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृष्ण साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफी
1: आगे
0: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई। उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात। नेक्स्ट डे मैंने जाके वो गुजराती में प्ले देखा, धुम्मस। संडे था, संडे इनका प्ले होता है जैन कॉलेज में, और अरविंद जोशी रोल कर रहे थे, और उसमें उनका बेटा जो आज हीरो है, तो उसमें अरविंद जोशी मेन रोल भी कर रहे थे, डायरेक्ट प्रवीण जोशी ने किया था शायद। और अरविंद जोशी कौन है, ये शर्मन जोशी के फादर।
1: हाँ हाँ।
0: शर्मन जोशी जो अभी हीरो है इनके फादर। तो वो प्ले मैंने सारा गुजराती में देख लिया, बम्बई में रहता हूँ इसलिए गुजराती सब समझ आती रही, गुजराती दोस्त भी थे, अमृत पटेल मेरा दोस्त था गुजराती का, मेरे नाटकों में उनके साथ काम भी करता था, हिंदी में मेरे साथ खालसा में काम करता था। मैं आया सेट पे, वह कोने में स्क्रिप्ट पड़ी थी हिंदी की, कॉपी लेके पढ़ डाली कोने में, अभी लाइटिंग वाइटिंग चल रही है, एक सेट था बंगले का जिसमें पूरी पिक्चर उस बंगले में ही है, वो पढ़ डाली। अब मैं एकदम क्लियर कट, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
1: यस,
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता 5 आने

0: पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, अठन्नी में पिक्चर
1: काम बन जाता
0: था, काम बन जाता था।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो, मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में, बी आर चोपड़ा की सारी, वी शरणम की सारी,
1: मतलब
0: सारी फिल्में जो अच्छी फिल्में कहलाती थी वो सारी फिल्में मैं छोड़ता नहीं था। पहले दिन जाता था, लाइन लगाता था पांच आने में, वहां पे आगे कई बार ब्लैक वाले उठा के पीछे फेंक भी देते थे, छोटा सा दिखता था उठा के पीछे कर देते थे। जो मैं पहला नंबर था तो 25वां नंबर हो जाता था, लेकिन टिकट मिल जाता था। तो वो पांच आने का लेके बैठता था, देखा करता था।

0: एक भी बन चुका था तब तक, बहुत सी बातें, मतलब इस सेट पे जब मैंने सब देख लिया तो पांच चार राइटर वहां थे, अख्तर मिर्जा, अख्तर उलेमान, सीजे पावरी, ये सब वहां पे थे। बी आर चोपड़ा जी भी सेट पे कई बार आते थे, यश चोपड़ा जी खुद थे, तो इस सेट पे सब रहते थे, क्योंकि एक महीने की पिक्चर है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
1: हाँ,
0: देख लो कोई लास्ट मोमेंट कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सबकी ड्यूटी थी कि आप सुबह टाइम पे आ जाओ 9:30 और शाम तक 8 बजे तक चलती है शूटिंग, रहो सब। अब साहब वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया जहाँ अटका हुआ है, तो मैं भी अपना, क्योंकि मैं धूमच भी देखा, ये भी देखा, और वो क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम।

0: क्या समझ रहे हैं, ये क्यों नहीं हो, ऐसे क्यों? उनकी क्वेश्चन जो थे उसका आंसर मैं सोचता जा रहा हूँ। और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। अचानक वो बीआर चोपड़ा साहब ने मुझे डांट दिया, कब कल का बच्चा। मैं कोने में चला गया, मतलब मैंने कोई गलत बात कर दी। बड़े बड़े राइटर आप डिस्कस कर रहे हैं, बीच में अपनी होशियारी दिखा रहा हूँ, ये उनके हिसाब से था। कोने में बैठ गया मैं। जब सब डिस्कशन हो गई, बात बनी नहीं उनकी, फिर उन्होंने कहा यहाँ किसी ने कुछ बोला था। मैंने स्कूल के बच्चे की तरह हाथ ऊपर किया, सर नीचे ही रखा। और उन्होंने कहा हाँ बोलो, तो मैंने कहा ऐसा कर ले तो कुछ जो भी छोटी मोटी। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई। अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 वर्ष रखकर कोने में बैठा। साहब आगे चले, फिर एक जगह और रुक के कहीं इसी तरह डिस्कशन हुई। मैं भी अपना उस तरह ही सोचने लग गया। जब ये सब बोलते रहे इनका, मैं जल्दी कंप्यूटर दिमाग की तरह, राइटर बड़े क्या कह रहे हैं इसमें से चीज निकालूं, करते करते करते करते मेरी चीज मुझे समझ आई, कुछ समझ आई। तो मैंने फिर चुपचाप बोला नहीं, शोर नहीं किया, हाथ ऊपर किया। तो चोपड़ा साहब ने कहा हाँ बोलो बेटे। मैंने कहा ऐसा कर ले तो। सारे राइटरों ने कहा बहुत अच्छे बेटा, वाह
1: वाह,
0: यही चाहिए था,
1: क्या बात है।
0: और वो सब सीनियर राइटरों ने अप्रूव किया, ओके होगी चीज। अब साहब लास्ट डे जब था तो सुबह से हम लोगों ने काम शुरू किया, सेट टूटना था नेक्स्ट डे। और एंड में लोग सब थक के सो गए। कुछ शॉट यश जी ने लिखवा दिए थे, ये शॉट भी लेने हैं, विदाउट आर्टिस्ट है। उस वक्त मैं और ऑपरेटिव कैमरामैन रोमेश भल्ला जी थे,
1: जी जी,
0: हम दो रह गए थे, बाकी सब सो चुके थे, मतलब फुल 24 घंटे काम कर चुके थे ना। लेकिन हम तो अभी अलर्ट थे
1: जी,
0: हम तो अभी बच्चे थे, जोश वाले। तो हमने वो शॉट यश जी के पेपर लिया और वो शॉट ले लिए।
1: वाह।
0: तो यश जी की अचानक आंख खुली, तो उन्होंने कहा ये वो यार वो शॉट ले लो। तो यश जी हमने लिए, आप देख लीजिए, पर वो उस वक्त तो देख नहीं सकते। तो उन्होंने कहा जी जैसा आपने लिखा वैसा लिया, ऐसा घुमाया कैमरा, ये गोल गोल कैमरा घूमता है सेट के ऊपर, तो नीचे लोग सोए थे इसलिए हमको थोड़ा ऊपर रखना पड़ा, ये बताया उनको कैसा किया। और ये भी ले लिया, वो चीज उसका क्लोजअप भी ले लिया, उसका भी दरवाजे का जो आपने कहा वो ले लिया, ये ले लिया, सब ले लिया। और रमेश वाला पुराना आदमी था उनका, जो ऑपरेटिव कैमरा, उनको भरोसा था कि ये झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और वो जो कुछ जो बातें मैंने बोली भी थी उनको मेरी समझ में थोड़ा सा यकीन भी हो चुका था। अलबत्ता वो सेट टूट गया नेक्स्ट डे, उन्होंने चीजें देखी, वो पिक्चर में लगी हुई भी है, वो वाले शॉट लगे हुए। अब साहब वो पिक्चर कम्प्लीट हो गई 1 महीने की, अब मैं खाली हो गया, अब उनकी कोई और पिक्चर चल नहीं रही। और मैं चला गया अपना, अपने आप को समझने लग गया था कि अभी है नहीं, मैं कहीं और काम में, तो कहीं और काम करने लग गया। कोई एक जगह जिसके यहाँ कुछ छोटी पिक्चर बन रही है उसके साथ 2-4 दिन काम कर लिया। एक और पिक्चर बाहर वाला कोई आया था, उसने कहा मैं फॉरेन में पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए, तो वो कर रहे थे। तो इतने में मैसेज आया यश जी का, यश जी का मैसेज ऐसे आया कि मैं गया था, मेरा एक प्ले ओपन हो रहा था तन्हाई, जिसमें शौकत कैफी रोल कर रही थी मेन फिल्म एक्टर, रिटायर्ड फिल्म एक्ट्रेस का,
1: शबाना आजमी की माँ,
0: और उसमें भरत कपूर उनका बेटे का रोल कर रहा था
1: जी।
0: तो मैंने कहा कि आप प्ले देखने आई, तो वहाँ शशि कपूर शूटिंग नीचे कर रहे थे, उनके पास भी गया, मुझे पता है थिएटर के बहुत वो हैं। तो मैंने कहा शशि जी ऐसा प्ले है मेरा, आप देखने आइए। तो कह रहे बेटा मैं पहले शो पे कभी आता नहीं हूँ, 4-5 शो के बाद आता हूँ। मैं बोला आज देख लीजिए, फिर 5वें फिर देख लीजिए, गलतियाँ ही पता चल जाएंगी हमको, समथिंग लाइक दैट। तो अलबत्ता वो भी आ गए देखने, प्ले तेजपाल हॉल में खेला
1: जी।
0: तो प्ले देखने के बाद यश जी ने बोला बेटा तुम कल राजकमल स्टूडियो आ जाओ। फिर आहिस्ता से कहा मैं भाई साहब से अलग होके कंपनी अपनी खोल रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसे फॉरन का एक आदमी आया, वो चाहता है कि फिल्म बनाऊं यहाँ पे। नहीं नहीं बेटा तुम आओ मेरे पास। तो नेक्स्ट डे मैं आया, इन्होंने अपनी यशराज फिल्म शुरू करनी थी, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऐसे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं 3 पिक्चर बनाऊंगा, एक में ये मेरा चीफ असिस्टेंट होगा फलाना आदमी, फिर दूसरा बताया ये असिस्टेंट है मेरा, ये दूसरी पिक्चर में जो प्राण मेहरा डायरेक्ट करेंगे उसमें ये चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, और एक पिक्चर मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे जिसमें तुम चीफ असिस्टेंट होगे।
1: ओके।
0: तो मैंने कहा मैं असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, चीफ में

डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चीफ असिस्टेंट बनने से मेरा कोई नहीं, मुझे आप थर्ड असिस्टेंट रख लीजिए, पांचवा रख लीजिए, मैं आऊँगा। तो मैं उनको फॉरेन वाले को मना कर दिया कि साहब मैं इनकी रेगुलर कंपनी शुरू हो रही है तो मुझे नौकरी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ।

0: तो जैसी तप यहाँ पे पालील पे रहने आ गए थे
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे इतने पैसे मिलेंगे तुम्हें उसके लिए असिस्टेंटी के लिए। तो मैंने हल्का सा, मैं बीच में थोड़ी देर मैंने बताया आपको सच्चे वाले में नौकरी की, जब मैं प्ले डायरेक्ट करता था ना,
1: हाँ।
0: शफी नामदार, फारूक शेख वगैरह, तो सच्चे वाले में नौकरी भी करता था, वो टेम्परेरी जॉब था
1: जी।
0: तो वो 15 महीने मिला, 3-3 महीने का एक्सटेंशन होता था
1: जी जी जी।
0: तो 15 महीने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए। तो मैंने पार्टी दी लोगों को कि मैं फ्री हो गया, ये कुलदीप वगैरह सबको पार्टी दी कि अब मैं फ्री हूँ।
1: हाँ।
0: तो फिर मैं आके इप्टा में आके मैंने ये नाटक शुरू किए थे कि आजाद हो गया, मेरे को कोई ड्यूटी नहीं कुछ नहीं। तो अब जो मैं ये सब कर रहा था ऑलरेडी, तो मुझे वो जो 400 रुपये महीना मिलता था सच्चे वाले में, तो जो भी यश जी ने मुझे तनख्वाह बोली, तो मैं यश जी वहाँ क्लर्की के 400 रुपये मिला करते थे, यहाँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, तो देख लीजिए जो देना है आप दे दीजिए, मैं ले लूंगा। तो उन्होंने मेरी तनख्वाह 400 रुपये रखी
1: जी जी। वाह वाह।
0: तो 400 रुपये का ये फायदा था कि कोलीवाड़ा से पाली हिल तक 1 रुपये

0: लगता था टैक्सी का।
1: अच्छा,
0: मैं टैक्सी में बैठ के आता था उनके घर में एक रुपए में, तो 30 रुपए महीने का मेरा वो खर्चा था। बाद में उनकी गाड़ी होती थी,
1: हाँ।
0: उनके साथ राजकमल स्टूडियो जाते थे उनकी गाड़ी में बैठ के, वापस उन्हीं के घर पालील पे आते थे, फिर मुझे जाना होता साधना स्कूल में रिहर्सल के लिए ड्रामे की। वो अपनी गाड़ी भेजते थे, बेटा रामचंद्र को ले जाओ गाड़ी का, तेरे को छोड़ के आ जाएगा। वो मुझे वहां छोड़ देता सर, मैं आ जाता। तो इन चीजों में जो लिंक वाले बातें याद आती है याददाश्त में, हुआ ये कि कुछ बंबई बंद हो गई, हम वापस जब जाते थे ना तो ड्रामे की जो रिहर्सल कर रहे थे उसमें फारूक शेख, भरत कपूर,
1: हाँ,
0: रमन कुमार,
1: हाँ,
0: तो ये सब काम कर रहे थे। तो हम लोग बस की स्ट्राइक हो गई तो ट्रक में जाया करते थे, तभी एक जमाना था थोड़ी देर तक BST की स्ट्राइक हो गई थी।
1: जी जी।
0: तो ट्रक वाला 4 लेता था, 8 लेते थे। और भरत कपूर ने उन दिनों एक फिल्म में हीरो का रोल किया था, वो पिक्चर का नाम था गुप्त बयान, वो सेक्स के बारे में कुछ, ये डॉक्टर थे। जैसे हम ट्रक में बैठते थे कुछ लोग ऐसे मजदूर टाइप के लोग पास आते थे इनके, डॉक्टर साहब हमने आपसे कुछ पूछना है। तो एक्चुअल देखिए, एक्चुअल डॉक्टर समझने लग गए और हम लोग सब जो है तो बैठे, वो तो हम दादर सब लोग उतरते थे, वहां से पैदल खालसा कॉलेज तक, वहां भाजी पाव वगैरह खाते थे, फारूक शेख अपना चला जाता था बाइक वाला अपने घर मेमनी बिल्डिंग में, बस में बैठ के, और मैं कोलीवाड़ा पैदल वहां से तीन सर्कल से घर पे। तो ऐसा जिंदगी जो चल रही थी, नाटक हो रहे हैं साथ में, ये यश चोपड़ा का ये काम शुरू हो गया।
1: ये दाग फिल्म थी,
0: ये पहली स्वीट दाग,
1: और आप दाग चीफ असिस्टेंट थे?
0: नहीं, पहले मैं चौथा असिस्टेंट था, तीसरा। तो वो क्या हुआ, जो चीफ असिस्टेंट साहब थे बड़े वाले जो नंबर वन थे, वो उनको इंटीरियर डेकोरेशन कास्ट्यूम की बहुत समझ थी, वो ज्यादा उस तरफ का करते थे। तो काम जो है वो मुझे, क्योंकि नाटक वाला हूँ, डायलॉग देना, रिहर्सल करवाना,
1: चेंजेस करना
0: वो सब मुझे वो था, कलर की करना मैं लिखता था, कंटिन्यूटी वो सब करना, तो ये सारा काम मैं करता था। अलबत्ता एक साहब गए, उसके जो दूसरे साहब थे वो यश जी के साथ बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते रहे, वो नाटक वाले नहीं थे, सिनेमा वाले नहीं थे। उधर BA जब इन्होंने इनके संग की थी, वहां नौकरी कर रहे थे, यश जी ने बुला लिया, अपना दोस्त है बचपन से साथ में थे उनके, तो वो यहाँ आ गए। अब उन्होंने कहा देखो वासुदेव धीर, भाई देखो पैसे का मामला है, मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता, ये तुम संभालो। तो उनको कैश ये सब प्रोडक्शन वो सब पैसे का मामला उन पे डाल दिया, वो बाकी चीजें कर कास्ट्यूम वगैरह कर रहे थे और सेट का देखते थे और कलर स्कीम का सोचते थे, और ये सारा काम आज था समझ टेक्निकल मेरे ऊपर आ गया। क्लैप भी देता था, कंटिन्यूटी भी लिखता था, डायलॉग भी देता था,
1: हाँ।
0: तो वो सारी चीजों से मेरी जो है ना
1: ट्रेनिंग होती,
0: ट्रेनिंग हो गई।

अब चाहे लग जाए गैया मैंने तेरी बाह पकड़ ली मन तुझ पे न

आप चाहे राम।

0: साहब करते करते पहले ही और साथ में एक पिक्चर में ऑलरेडी राजेश खन्ना के साथ पहले वहाँ कर लिया था और राजेश खन्ना के साथ काम करते हुए उधर ये था कि ऐसा कुछ हो गया था कि डब्बा जो फिल्म इंडस्ट्री में खाना आता था, खाना इन लोगों ने बंद कर दिया था क्योंकि लोगों ने शिकायत लगाई किसी को चिकन नहीं मिला, किसी की टांग नहीं मिली मुर्गी की। उन्होंने कहा भाई मैं पैसे दूंगा अपने आप खाओ, ठीक है ये शिकायतें मत करो, नाटक मत करो मेरे। तो हम लोग कैंटीन में जाके खाना लग ले और गुरनाम सिंह जो था हमारा एक्टर था वो इनका सेक्रेटरी था राजेश खन्ना का, उसने आया उसने कहा काका नाराज हो रहा है रमेश तू क्या कर रहा है। मैंने खाना खा रहा हूँ। नहीं नहीं वो तेरे लिए खाना मंगाया उसने, डब्बा घर से आया हुआ है वो लेके मुझे वहाँ पर। तो वो जो हम साथ लंच में खाना खाते थे, जो हमारी गपशप होती थी, सिनेमा की बातें होती थी, चीज़ों की बातें होती थी, और मैं जैसे ही थर्ड बेल बजे उससे पहले मैं दरवाजे पर जाके अंदर लेट ना हो जाऊं। और एक दिन मैं लेट हो गया तो मुझे रवि चोपड़ा ने पकड़ लिया था कि देखो काका के साथ खाना खाते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम लेट आओ, सॉरी आंदाजी हो। तो ये आप फिर पिक्चर दाग में राजेश खन्ना
1: हीरो हो गई।
0: हाँ और दाग जो चल रही है तो मेरी इम्पोर्टेंस बहुत थी बिकॉज राजेश खन्ना बात सुनता है, डायलॉग करता है, रिहर्सल करवा रहा है मेरे साथ। कई बार बहुत लंबी चीज है

0: बोला रमेश लिख दो वहां पे सामने, रीडिंग करवा लो मुझसे और सामने लिख भी दो। अचानक में नजर मुझे पड़ेगी, बहुत लंबे लंबे डायलॉग है, कोर्ट सीन में लंबे डायलॉग थे, तो मैंने लिख दिए वहां पे। उन्होंने कोर्ट सीन में आहिस्ता सा ग्लांस करके वो देख भी लिया। अगर आप मैं बोल चुका हूँ तो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि रजिश कहना कि यूं क्यों गया। तो ऐसा भी था, तो अलबत्त खैर वो दोस्ती का जो है पूरा फायदा जो हुआ मुझे राजेश खन्ना की। अब मुझे यकीन कहा कि तुम पिक्चर डायरेक्ट करो मैं
1: तो। लेकिन दाग जब रिलीज हुई तो वो तो सुपर हिट हो गई,
0: सुपर
1: बहुत चली,
0: बहुत चली,
1: के गाने बहुत चले,
0: बहुत चले।
2: मेरे दिल में आज

0: और साथ में गुलशन राय जी ने जो फाइनेंस करते थे
1: जी,
0: उन्होंने अपनी पिक्चर जी को दी जो शीला बनाने के लिए,
1: सेकंड जो दाग के बाद,
0: दाग के बाद उसमें देवानंद साहब थे, और देवानंद साहब राखी

0: मामाली जी और हम दार्जिलिंग में शूटिंग वूटिंग करने गए, प्राण साहब थे, प्राण एक्टर साहब, इन सब के साथ मेरी बड़ी तालमेल, क्योंकि मैं डायलॉग करवाता था तो हो गया। तो खैर उसमें जो भी एज स्टेज का आदमी कुछ बातें बोलता था तो मुझे जवाब ये मिलता था, कमर्शियल पिक्चरों में ऐसा होता है
1: जी जी,
0: तो मेरे कोई क्रिटिक वाली बात मैं बोलता था ना तो वो मुझे वो कर दिया जाता था। तो वो जब पिक्चर रिलीज हुई तो बोले पहले जब हम देखने जाते हैं शोज थोड़े से अटेंड करते हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ काट डाले, कुछ अभी भी ऐड कर डाले,
1: ट्रायल शोज।
0: तो वही जगह जो मैं बोला करता था कि ये चीज ऐसी क्यों, ये क्यों, ये आदमी बम्बई में पुलिस वाला है वो दार्जिलिंग क्यों आएगा, ऐसा कुछ अजीब से बोलते थे पॉइंट मेरे, वो थिएटर के पॉइंट थे, मतलब मीन में निकालने वाले, जानबूझ के आप गलती निकालते ना, वो कहते हैं आटा घूमते हुए हिलती क्यों हो, उस तरह के पॉइंट होते थे
1: जी जी।
0: तो वैसे ही पॉइंट में बोल दिया करता था। तो वो गुलशन राय जी ने, मैंने कहा था वो पॉइंट जो मैं आप लोगों से कहता भी था वो तो वो ही है, तो इतनी ज्यादा नहीं चलेगी पिक्चर, क्योंकि मैं 5 आने में पिक्चर है बहुत, देखिए ये जो आप अप्लॉज समझ रहे हैं हूटिंग हो रही है, ये क्यों होगा ऐसा, ये हंस नहीं रहे हैं, ये ऐसा है ये आप हूट कर रहे हैं
1: जी जी।
0: तो इंटरकॉलेजिएट में भी हूटिंग होती थी हम लोगों के प्लेस में,
1: बिल्कुल
0: हमको पता था। तो अलबत्त एनीवेज वहां देवानंद साहब के साथ दोस्ती हो गई थी, देव साहब ने कहा यश तुम रमेश को पिक्चर दे रहे हो या मैं नवकेतन में दूं।
1: अरे बाप रे।
0: तो जैसे ने कहा पूछिए रमेश से, मैंने ऑलरेडी बोला है सब्जेक्ट, उन्होंने बोला हुआ था पहले मुझसे बोला हुआ, पूछो मैंने बोल दिया कि भाई तुम अपनी अभी स्क्रिप्ट ढूंढो, तो बोले ठीक है, वरना रमेश मैं बैठा हूँ। अलबत्ता अगली पिक्चर अब वो नहीं चली, तो अब गुलशन राय की पिक्चर पहले बनानी थी हमने, तो दीवार पिक्चर की पहले तो ये सोच रहे थे कि राजेश खन्ना के साथ अगली पिक्चर बनाएं। तो सलीम जावेद ने सब्जेक्ट सुनाया,
1: आप थे वहां पर जब
0: मैं था,
1: नरेशन हुआ,
0: नरेशन में था मैं,
1: तो दीवार का पहला नरेशन हो रहा है,
0: पूरा नरेशन में था मैं थ्रू आउट
1: जी।
0: और मैं ऐसा थोड़ी देर में बोलता था, एक चीज हुई उन्होंने हाथ पे लिखा मेरा बाप क्यों रहा, लिखा बच्चे के हाथ में, मैंने 15 हफ्ते श्योर ऐसा बोलता था मैं, तो सब जितने लोग थे मेरी तरफ लुक करते थे कि चमचागिरी कर रहा है। फिर आगे कुछ गया, एक और हाईलाइट आई, मैं यहाँ बैठा हूँ फाइट वाले गोडाउन में बैठा हूँ,
1: तुम मुझे
0: कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं यहाँ बैठा
1: हूँ,
0: समथिंग लाइक दैट, मैंने 25 हफ्ते। फिर मुझे मेरे एडिटर साहब ने चुप कराया, रमेश प्लीज निरीक्षण में ये सब मत बोलो, चुप रहो पहले सुन लो, एंड में डिस्कस करेंगे। ऐसा करते करते मैं 50 हफ्ते तक जा चुका था सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सुनते सुनते
1: 50 हफ्ते फिल्म चलवा दी जी।
0: अब साहब कास्टिंग की बात आई, राजेश खन्ना की उस डेटिंग नहीं थी, और इन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन उन दिनों मिलने आया करते थे यश जी को पालील पे, और मुझे भी कहा करते थे, मेरे को शॉर्ट बुलाते थे, तलवार का इंग्लिश,
1: शॉर्ट
0: शॉर्ट बोलो यार, एक पिक्चर मेरे साथ करे, अब तो मैं बड़ी बड़ी पिक्चर, फिर इनकी पिक्चर हिट भी होगी थी वो
1: रंजीर,
0: तो अब तो मैं हीरो हिट होगा। तो यश जी ने ऐसा गुलशन राय से कहा, तो उन्होंने अपना हिसाब से कहा कि यार वो बड़ा हीरो है राजेश खन्ना, वेट ना कर ले समथिंग, कुछ छोटा मोटा, सलीम जावेद भी साथ में थे, हमने कहा लेकिन ये शूट ज्यादा करता है अमिताभ बच्चन, अगर आप रंजीर देखें उस हिसाब से ये ज्यादा शूट करेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मान गए, और इनकी डेटिंग भी हमको खूब मिल गई अमिताभ बच्चन की, शशि कपूर जो थे
1: वो तो बड़े थे, लेकिन
0: बड़े थे वो ही था, उनको छोटे भाई का रोल करना था, अब रोल उनका थोड़ा सा छोटा था इनके कंपैरिजन में, मेन हीरो ये थे, तो जो हम लोग फिल्म वाले जो थे थोड़ी सी कारिस्तानी करते हैं
1: जी,
0: एक दो आदमियों को भेजा गया जहाँ कहीं शशि कपूर शूटिंग कर रहा है, अरे साहब दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, जैसा दीवार का आपका सब्जेक्ट था ना उससे बेटर रोल है कभी कभी में आपका, दोनों पिक्चर यश चोपड़ा कर रहा है, खुद के लिए एक गुलशन
1: राय की,
0: ऐसा कुछ लोग बोल देते
1: कन्विंस करने के लिए,
0: कोई बोल दे सर बीच डाल रहे कोई भी गया
1: जी जी जी,
0: जो अब सीनियर किस्म का आदमी है जो बोलने में ऐसा ना लगे कि
1: मैसे
0: बनावटी, तो वो साहब फिर शशि जी ने कहा यार तुम मुझे रोल सुनाते नहीं हो, तो उनको रोल सुनाया गया कि भाई देखिए लेंथ वाइज हुआ है पर सोच लो मैं इनका बड़ा भाई लगू छोटा भाई लगूंगा कहीं, वो ऐसा कर लेंगे, बालों का ये कर लेंगे, उसका ये कर लेंगे। जो यजी ने कन्विंस किया वो मान गए, ये तुम्हारे पास बड़े अच्छे सीन है। इन लोगों ने भी सलीम जावेद में कहा, अगर आपको ट्रॉफी ना मिलेगी हम लाइन छोड़ देंगे।

0: बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो उनको मिला,
1: बिल्कुल
0: रोल भी मिला उसको।
2: ये भाई मैं हूँ और ये भाई तुम हो, हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया। आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
3: मेरे पास माँ है।
0: अमिताभ बच्चन का भी निकलाया तो पिक्चर हमारी सुपर डुपर हिट होगी साहब।
1: और आप इस फिल्म में असिस्टेंट थे?
0: असिस्टेंट नहीं, इसमें चीफ असिस्टेंट हो गया था ना, अभी
1: आप चीफ असिस्टेंट हो
0: अब गया? हो गया सब जगह, तो वो मैंने कहा ना पहली पिक्चर करते करते दाग में ही चीफ असिस्टेंट का टाइटल मिल गया था मुझे, जो सब काम मेरे ऊपर जब आ गए थे
1: तो सारी चीजें
0: सारे उसमें मेरा टाइटल है चीफ असिस्टेंट।
1: दीवार में

0: मिलती है और एक नौकरी छूट जाती है, दो गाने थे उसमें, शशि कपूर और पूनम ढिल्लो, दो ही गाने थे। कौन थे उसमें उनकी हीरोइन?
1: नीतू सिंह।
0: नीतू सिंह, बाद में उन्होंने पूनम के साथ भी काम किया, तो इसलिए मुझे शशि कपूर पूनम। हमने ट्रायल किया इनके लिए। क्या होता था, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाती है तो राजकमल में ट्रायल होता था प्राइवेट, सिर्फ री रिकॉर्डिंग के लिए इनके लिए, अपने
1: मंगेश
0: देसाई।
1: री रिकॉर्डिस्ट बहुत बड़े,
0: बहुत बड़े, मतलब लोग उनके मानते थे, उनकी जजमेंट की कमाल की थी
1: जी,
0: जो कहते थे उतनी पिक्चर उतनी चलती थी।
1: वाह वाह वाह।
0: और उस ट्रायल में किसी को बुलाया नहीं जाता था, हाँ। अकेले होते थे और मेरे जैसा कोई एक असिस्टेंट और जस्टी खुद बस। उन्होंने पिक्चर देखी तो जैसे हुए तो हम निकले बाहर, जैसे बात तो करते होते फौरन, कहने लगे भाई पिक्चर तो बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन 15 हफ्ते से ऊपर नहीं चल सकती।
1: अरे बाप रे।
0: तो जजी ने कहा क्यों भाई? बोला म्यूजिक नहीं है, हमारी फिल्म में म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने कहा एज इट इज मुझे लगता है 50 हफ्ते तक चलेगी।
1: हाँ, आपने नरेशन के समय
0: वही क्या? तो कहने लगे नहीं बेटा, वो थ्योरी वाइज ठीक है लेकिन इस टाइम पे रिस्क नहीं लेना होता है। अभी भी गाने डाल दो। तो हम लोगों ने 3-4 गाने रिकॉर्ड किए, 3 गाने और रिकॉर्ड किए। एक डॉक्स होता है, देवन वर्मा गेस्ट आर्टिस्ट बुलाएंगे, डॉक्स पे गाना शूट किया, एक और गाना था और एक कवाली।

0: एक जो इनका था देवल वर्मा वाला, वो लगता है जबरदस्ती घुसाया हुआ है, हम लोगों ने वो काट लिए,
1: कवाली भी काट,
0: लेकिन कवाली हमको पसंद आई थी
1: जी।
0: तो सलीम जावेद को पिक्चर दिखाई, उन्होंने कहा साहब ये कवाली तो इसमें नहीं रह सकती, वो निकाल दीजिए। तो ये जी ने कहा भाई वैसा है मंगेश जी, नहीं नहीं नहीं हम लीजिए, हम तो ये। अब साहब उस वक्त क्या था, जैसे बड़े भले आदमी थे, गुलशन राय भी बड़े भले आदमी थे, ये ज्यादा उस वक्त बोलते नहीं थे, लेकिन सलीम जावेद सुपर हिट थे उस वक्त
1: जी,
0: और ये बोलते थे, इनका अपनी बात कहलवाते थे और करवाते थे
1: और मनवाते थे,
0: मनवाते थे। तो अब उनके सामने सिर्फ मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा देखिए जावेद साहब, सलीम साहब, मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था ये पिक्चर इतनी चलेगी, 15 हफ्ते 25 हफ्ते 50 हफ्ते कहा था, बोले लेकिन चली तो 104 हफ्ते ना।
1: क्या बात है। हाँ,
0: तो मैंने कहा चलिए वो सही। हाँ। तो आप, मैं भी ये चाहता हूँ कि ये पिक्चर भी 50 हफ्ते जरूर चले।
1: हाँ।
0: तो आप प्लीज। तो कहने लगे ठीक है, हम आपके अगली पिक्चर नहीं करेंगे, गुलशन राय से भी कह दिया और यश चोपड़ा से भी कहा,
1: सिर्फ इस कवाली की वजह से।
0: हाँ, हम फिर अगली, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा मत कीजिए, आपको भी बहुत प्रोड्यूसर मिलेंगे, हमको भी बहुत राइटर मिलेंगे।
1: अरे बाप रे।
0: अब ये बात यश जी भी चुप है, गुलशन जी भी चुप है, और मैंने कह दिया ये बात। और देखिए साहब, जैसे हम बाहर निकल रहे हैं साथ में, तो जावेद साहब कहने लगे, रमेश जी बुलाते, रमेश जी आप कैसे इपटा के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, आपने तो हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मार दी।
1: ओ,
0: कवाली के बदले कवाली मार दी, कुल्हाड़ी मार दी के बदले बोला आपने तो हमारे पांव पे कवाली मार दी।
1: अरे गजब, क्या डायलॉग,
0: ये डायलॉग बोला
1: जी।
0: मैंने कहा साहब मजबूरी है, और फिर बाद में उन्होंने देखा, बाद में माने भी, और अगली पिक्चर उन्होंने हमारे साथ की भी।
1: लेकिन कवाली तो हटा दी थी ना?
0: नहीं हटाई
1: जी,
0: नहीं कवाली नहीं हटाई, रही
1: जी,
0: वो बाकी दो गाने काटे देवन वर्मा का, शुरू में रिलीज से पहले काट दिया, कवाली रही। तो वो इस बात पे माने, वो मतलब अंदर से हमारी आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट शुरू हो चुकी थी। अब जब इन्होंने मेरी, मैंने फिल्म कर रहा था तो जमाना के लिए उन्होंने सोचा, जमाना फिल्म के लिए, कि भाई ये फिल्म जो है, ये पिक्चर पहले शायद बना रहे थे मोहन कुमार,
1: हाँ हाँ,
0: प्रेम जी के लिए, और उसमें अमिताभ बच्चन थे और शशि कपूर थे शायद, या कोई और थे, अमिताभ बच्चन शशि कपूर शायद थे, और प्रेम जी प्रोड्यूसर, वो अनाउंस हुई है स्क्रीन में, उसके फुल पेज भी आया था, और नाम कुछ और रखा था
1: जी,
0: ए से नाम रखा था, मोहन कुमार की पिक्चरों का नाम ए से होता था, बाद में कुछ आपस में जो भी होगा नहीं बनी पिक्चर, इनके पास स्क्रिप्ट थी,
1: और आप तो ऑलरेडी डायरेक्टर बन चुके थे,
0: मैं बन चुका था
1: तब तक तो बसे

0: बसेरा आ गई थी, बसेरा आ गई थी। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी।
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ,
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था। और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त है। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
1: हाँ हाँ
0: भाई, जब आप फिल्म करेंगे और सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होगी तो आप सोचिए, डायलॉग नहीं लिखे होते, स्क्रीन प्ले तैयार था।
1: जी जी।
0: अब तो डायलॉग लिखने हैं इसमें, डायलॉग लिखे होंगे तो फिर आप सोचिए।
1: जी जी जी।
0: तो साहब मैंने कहा फीस क्या देंगे? कहने लगे भाई फीस तो कोई डायरेक्टर हमसे हमारे पास है ऑलरेडी जो 2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, तो आपको भी वही दे देंगे। तो मैंने कहा आपने हमसे अभी कितने पैसे मांगे थे पिक्चर के? बोले 21 लाख। तो मैंने कहा 21 लाख, 10.5 लाख सलीम साहब के, 10.5 जावेद साहब के, और डायरेक्टर 2-2.5 लाख देंगे तो पिक्चर अच्छी कैसे बनेगी?
1: क्या गजब बात है। फिर
0: तो साहब आप सोचिए। बोले नहीं हमको 21 अभी मिले नहीं है, हम 21 मांग रहे हैं, अभी तक 14 मिले हैं। अच्छा 7 लाख दे दीजिएगा। ये उसमें पार्टनर भी थे उसको।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: क्योंकि जो फाइनेंसर था वो इनके पास आया था।
1: हाँ।
0: क्या आप कोई प्रोड्यूसर खड़ा कर दीजिए, आप खुद प्रोड्यूस भाई? तो इन्होंने बाद में खुद प्रोड्यूस भाई नहीं करना चाहा, किसी और जगदीश शर्मा जी को पिक्चर दे दी। लेकिन छत्र छाया इनकी कंपनी, ऐसा कहना चाहता है इनकी पिक्चर। तो मैंने कहा भाई मैं, मुझे साथ ही दे दीजिएगा, मैं जाता हूँ। तो बोले आपने कहीं जाना था क्या? कहा आपने मिलकर नाटक की रिहर्सल है, जाइए ना रिहर्सल पे जाइए ना, फिर क्यों बैठे हैं? थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन करके कुछ ऐसा डायलॉग मार के, एक वन लाइनर मार के मैं भी चला गया। तो अलबत्ता उन्होंने, मैं सागर सर्दी का फ्लैट था जूहू पे,
1: जी
0: टेरेस फ्लैट था, वहाँ कुछ रीडिंग वीडिंग थी वगैरह, सब लोग आए हुए थे। जावेद साहब को ऐसा था कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, और जावेद साहब वहाँ पे आए
1: पीछे से।
0: हाँ थोड़ी देर के बाद जब मेरे हो गया काफी बाद में, उन्होंने आपस में डिस्कस कर लिया होगा
1: जी
0: कि ये पिक्चर के लिए बेटर तो यही है अगर ये करे तो। मेरी बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं थी, सच बात यह है।
1: हाँ।
0: प्राइस इसलिए बोला था कि मेरी ज्यादा इच्छा नहीं थी।
1: करेक्ट है।
0: और मैंने बाकी पिक्चरें जो की थी वो परसेंटेज पे की थी कि पार्टनर बना लो। अपना बसेरा में भी 1/3 पार्टनर था मैं, और यजी ने भी मुझे सवाल में 1/3 पार्टनर बना लिया था
1: जी,
0: और ऐसा ऐसा इस तरह का काम, और जो आएगा खा लेंगे आपस में ऐसा। तो आए और उन्होंने कहा भाई प्राइज लेना तो कोई आपसे सीखे।
1: ओए ओए।
0: मुझे समझ नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा उदास था जो मान गए, और थोड़ा सा ये था कि मेरे टाइप की पिक्चर नहीं है।
1: हाँ।
0: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
1: जी,
0: ये पिक्चर अच्छी बने, और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
1: अरे बाप रे।
0: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
1: ये लो।
0: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेटे हैं, ऋषि कपूर के भी डेटे हैं,
1: हीरोइनें भी हैं,
0: हीरोइनों के भी डेटे हैं, और ठहर गए।
1: अब
0: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी।
2: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत आपने सुनी। ये बातचीत अभी अधूरी है, बातचीत जारी रखेंगे अगले हफ्ते उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में। चलते चलते

आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जुबैर खान। उजाले

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के ठीक 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फुलवारी।

नमस्कार फुलवारी सुनने वाले सभी नन्हे श्रोताओं का मैं आपकी दोस्त आशा गुप्ता आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों कैसे हो आप? पढ़ाई में बिल्कुल मस्त। तो आज हम बात करते हैं खेल आधारित हो प्रारंभिक शिक्षा। बच्चों क्या आपको खेलना पसंद है? अरे ये तो मुझे भी पता है, आप सबको खेलना बहुत पसंद है। और अगर मैं कहूँ कि आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे सिर्फ खेलेंगे तो आपको कैसा लगेगा? अरे वाह, खुश हो गए ना आप सब। लेकिन सुनो, आज हम खेलेंगे भी और सीखेंगे भी। इसे कहते हैं खेल खेल में सीखना। तो आइए एक गेम खेलते हैं, ताली ताली गिनती। जब मैं बोलूं एक तब तुम एक ताली बजाना, दो तो दो ताली बजाना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दो तीन। अरे वाह, आप दूसरा गेम खेलें, रंग पहचानो। जल्दी से अपने घर में कोई लाल रंग की चीज़ छूकर आओ। मिल गया, अब पीली चीज़, फिर हरा और नीला। अरे वाह, आपको सारे रंग मिल गए होंगे, आप तो रंगों के चैंपियन हो। अब आप आवाज़ पहचानो, आपके घर के आसपास चिड़िया, कौवे, कुत्ते, बिल्ली, गाय, जाने कितने से जानवर और पक्षी हैं। तो सुनिए आपने आवाज़, कितनी प्यारी आवाज़ है उनकी। बच्चों आइए एक मज़ेदार सी कहानी सुनते हैं। एक नन्ही बच्ची थी बिल्कुल आपकी तरह, उसका नाम था चिंकी। चिंकी को किताबें देखकर नींद आ जाती थी, वह पढ़ने में हमेशा बचती रहती, उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था। एक दिन उसकी टीचर ने कहा, चिंकी आज हम पढ़ेंगे नहीं खेलेंगे। तब पता है टीचर ने क्या किया? कूद कूद कर गिनने को बोला। उसे गिनती याद हो गई, गानों और कविताओं से अक्षर सिखाए, मिट्टी से आकार बनवाए, चित्र बनाकर रंग भरवाए, कविताओं से अक्षर सिखाए। तो चिंकी को ये सब करना बहुत अच्छा लगने लगा। अब वह रोज स्कूल जाने के लिए तैयार रहती और कहती, पढ़ाई करना बहुत आसान हो गया है। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि खेल खेल में कैसे हम नई चीजें सीख सकते हैं। बच्चों पढ़ाई हमेशा किताबों से ही नहीं होती, जब हम खेलते हैं तब भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे जब आप लूडो खेलते हो तो गिनती सीखते हो, जब आप पजल लगाते हो तो दिमाग तेज होता है, जब आप बागवानी या पेड़ लगाते हो तो प्रकृति को जानते हो, जब दोस्तों के साथ खेलते हो तो मिलजुल कर रहना सीखते हो, गीत और कविता बनाकर ए बी सी या क ख ग सीख सकते हो। बच्चों अपने खिलौने गिनो, एक दो तीन, और मम्मी पापा से पूछो क्या ये सही है या नहीं। घर में चीज़ें ढूंढो, स्कूल में चीज़ों के नाम, पेड़ों फूलों और पत्तों के नाम जानना सीखो। तो आप खेल खेल में ही पढ़ना सीख सकते हो और आपको पढ़ाई भी बहुत मज़ेदार लगने लगेगी। बच्चों चलिए अब एक सवाल पूछते हैं। अगर आपके पास तीन पेंसिल हैं और टीचर आपको दो पेंसिल और दे देती है तो बताओ आपके पास कुल कितनी पेंसिल हो जाएंगी?

हाँ सही जवाब, आपके पास 5 पेंसिल हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि खेल खेल में पढ़ाई कितनी आसान और मजेदार हो सकती है। आपके माता पिता को भी यही संदेश है कि बच्चों को खेलने दे, खेल के जरिए सीखना बच्चों को अधिक याद रहता है और वो खुश भी रहते हैं। बच्चों, खेल में एक सीख छुपी होती है, तो उसमें से हर सीख को जानो, समझो और सीखो। जब पढ़ाई को खेल का रूप दे दिया जाए तो उसे ही खेल आधारित शिक्षा कहते हैं। बच्चों, ये तरीका इतना असरदार क्यों होता है यही सोच रहे हो ना आप? देखिए, जब आप खेलते हो तो आप खुलकर सोचते हो, नई चीजें आजमाते हैं और आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि आप गलती करोगे, और यही आज़ादी आपको हर चीज बेहतर तरीके से सीखने में मदद करती है। बच्चों, खेल आधारित शिक्षा के कई फायदे हैं। हर चीज बहुत जल्दी सीखते हैं, सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात, आप खुश रहते हैं। माता पिता, टीचर, भाई बहन के साथ एक्टिविटी, गेम्स और ग्रुप वर्क के जरिए पढ़े तो पढ़ना और आसान हो जाता है। बच्चों, एक नया खेल बनाओ, उसमें कुछ नया सीखो और टीचर और मम्मी पापा को जरूर बताना। तो बच्चों, आज हमने सीखा खेल आधारित शिक्षा मजेदार है। खेलो, कूदो, हंसो और कुछ हर दिन नया सीखो। बच्चों, एक पुरानी कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो बच्चों, अब वक्त हो चला है आपको गीत संगीत की दुनिया में ले चलने का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हाँ तो बच्चों, इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, आज 3 मई है और हर साल 3 मई को यानी आज ही के दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये प्रेस क्या है? तो प्रेस का मतलब है वे माध्यम जिनसे हमें खबरें जानकारी मिलती है, जैसे अखबार, टीवी न्यूज़, रेडियो। और जो ये लोग न्यूज़ बताते हैं उन्हें हम पत्रकार कहते हैं। और स्वतंत्रता का मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, स्वतंत्रता यानी आज़ादी। तो प्रेस स्वतंत्रता का मतलब है बिना डर के निष्पक्ष रूप से सच्ची खबरें बोलने की आज़ादी होना। बच्चों, यह दिन क्यों मनाया जाता है आप यही सोच रहे होंगे ना। बच्चों, यह दिन सिखाता है कि हमें सच्ची खबरें मिलनी चाहिए और पत्रकारों को सच बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। समाज में सही जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है। बच्चों, प्रेस का काम होता है हमें नई नई जानकारी देना, देश दुनिया की खबरें बताना और गलत चीज़ों को सामने लाकर निष्पक्ष रूप से बोलना। जब प्रेस को हर बात की स्वतंत्रता हो तो हम तक सच्ची जानकारियां पहुंचती हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को वर्ष 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर मनाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की थी। बच्चों, यह दिन प्रेस स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करने और दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने के रूप में मनाया जाता है। एक स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की रीढ़ होता है। पत्रकार और मीडिया वह पुल है जो हम आम जन को सच से जोड़ता है। यह दिन उन सभी पत्रकारों को सम्मान देने का अवसर है जो ईमानदारी और निडरता से सच्चाई लाने का काम करते हैं।

0: चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तो बच्चों, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अगर प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो समाज में गलत जानकारी फैल सकती है। इसलिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मान्यता दी और यह दिन 1991 में बनी विंडहॉग घोषणा की याद में मनाया जाता है। तो बच्चों, आपने जाना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही मजेदार और खुशियों से भरे दिन के बारे में भी और जानेंगे। वो है विश्व लाफ्टर दिवस, यानी हंसी का दिन। बच्चों, लाफ्टर दिवस हर साल मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है और आप तो जानते ही हैं कि यह मई महीने का पहला रविवार है। इस दिन खूब हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं। लाफ्टर का मतलब होता है हंसी, यानी खुलकर हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना। जब हम हंसते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नामक खुशनुमा रसायन निकलता है, इसलिए जोर जोर से हंसने से तनाव समाप्त हो जाता है और बच्चों, हमारा मन भी बहुत अच्छा होता है। सोचो, अगर हम पूरे दिन उदास रहें तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं है ना? लेकिन जब आप हंसते हो तो दिल खुश हो जाता है, दिमाग तेज चलता है और हम ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसलिए कहते हैं हंसी सबसे अच्छी दवा है। आजकल हम सब इतने व्यस्त रहते हैं कि बड़ों को ऑफिस का काम रहता है और आप बच्चों को तो पढ़ाई का कितना दबाव रहता है। हमेशा आप काम की ही सोचते हैं, घर आकर होमवर्क करने की सोचते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमें हंसना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए और छोटी छोटी बातों में हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। विश्व लाफ्टर दिवस की शुरुआत साल 1998 में हुई थी। इसे शुरू किया था डॉक्टर मदन कटारिया ने। बच्चों, वो एक डॉक्टर थे और उन्होंने लाफ्टर योगा की शुरुआत भी की थी। पहली बार यह मुंबई में मनाया गया था और उसके बाद यह पूरी दुनिया में फैल गया। और सबसे खास बात, यह दिवस दुनिया के कई देशों में मनाया जाता है, जहां लोग इकट्ठा होकर हंसते हैं और खुशियां बांटते हैं। तो बच्चों, हंसते रहो और खुश रहो। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां तो सभी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, आपको भी बहुत अच्छी लगती होगी ना? तो गर्मियों की छुट्टियों का बच्चे किस तरह सदुपयोग करने वाले हैं, इसको लेकर मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की। प्यारी प्यारी दक्षिका और पीहू कैसे इन गर्मियों की छुट्टियों का आनंद लेंगी, आइए उनसे बातचीत सुनते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे साथ हैं कुछ बच्चे, चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। बच्चों, अपना नाम बताओ।
2: मेरा नाम दक्षिका है।
3: मेरा नाम पीहू है।
1: ओके, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
2: मैं 7th में पढ़ती हूँ।
3: मैं 4th में पढ़ती हूँ।
1: तो बच्चों, आपको स्कूल जाना कैसा लगता है?
2: हमें स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, बच्चों आपको पता है अभी आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली है, कैसा लग रहा है आपको?
2: हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: तो आप आने वाली गर्मियों की छुट्टियाँ कैसे बिताने वाले हो?
2: मैं नानी के घर जाऊंगी।
1: अच्छा,
2: मैं बेंगलोर जाऊंगी।
1: आप बेंगलोर जाओगे? अच्छा, दक्षिका आप नानी के घर जाओगे तो नानी के घर में कौन कौन है?
2: मैं नानी के घर में नानी, मामा जी, मामी जी और उनके दो बेटे हैं।
1: अच्छा, और पीहू आप बेंगलोर में क्या क्या देखोगे?
3: मैं बेंगलोर में मेरी बुआ जी के घर जाऊंगी।
1: अच्छा, तो क्या आप लोग घूमने जाने वाले हो?
2: हाँ।
1: अरे वाह, आप छुट्टियों में कौन कौन सी नई चीजें सीखना चाहते हो?
2: मैं अपनी हॉबी पर ध्यान देना चाहती हूँ।
1: अच्छा, क्या हॉबी है आपकी?
2: मेरी हॉबी ड्राइंग है।
1: ड्राइंग है?
2: हाँ, हाँ।
1: तो ड्राइंग में कौन सा कलर पसंद है आपको?
2: मेरे को पिंक कलर पसंद है।
1: पिंक कलर अच्छा लगता है। और पीहू आपको?
3: रेड।
1: रेड। और पीहू आप छुट्टियों में क्या करना चाहोगी?
3: मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान देना चाहूंगी।
1: अच्छा, कैसे?
3: मैं अपनी स्किन केयर करूंगी।
1: हाँ,
3: हेल्दी फूड खाऊंगी।
1: हेल्दी फूड खाओगे, अच्छा, वेरी गुड। क्या कोई नई हॉबी शुरू करोगे?

0: हाँ
1: क्या?
0: डांसिंग।
1: डांसिंग? अच्छा, डांसिंग करना अच्छा लगता है आपको?
0: हाँ।
1: अच्छा, कहाँ सीखोगे आप डांसिंग?
0: मेरी दीदी से।
1: अच्छा, आपकी दीदी को डांस आता है?
0: हाँ।
1: वेरी गुड। अगर आपको घर पर रहकर छुट्टियां बितानी हो तो उन्हें मजेदार कैसे बना सकते हो?
0: अम्मी बहन के साथ हेल्प करूंगी, उनके साथ खेलूंगी और बस।
1: और बस। अच्छा, गार्डनिंग करना अच्छा लगता है आपको?
0: हाँ।
1: अच्छा, तो मम्मी ने जो घर में पेड़ पौधे लगाए होंगे तो उनमें मम्मी की आप हेल्प करते हो?
0: हाँ।
1: कैसे करते हो?
0: पौधों में पानी देती हूँ।
1: हाँ।
0: और उनको सनलाइट के नीचे रखती हूँ।
1: अरे बहुत ही अच्छी बात है ये तो। और आप कोई नई लैंग्वेज या कुछ और सीखना चाहोगे?
0: हाँ।
1: अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है आपको?
0: हिंदी, इंग्लिश, जापानीज थोड़ी थोड़ी आती है।
1: अरे वाह, थोड़ी थोड़ी आती है तो उसको और सीखना चाहोगे?
0: हाँ।
1: वेरी गुड। अच्छा, तो आप हमारे नन्हे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहोगी कि इन गर्मियों की छुट्टी में क्या क्या कर सकते हैं?
0: अपनी हॉबी पे ध्यान दे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे।
1: और दक्षिका, आप क्या कहना चाहोगे?
2: मैं कहना चाहूंगी कि सभी बच्चों के लिए नो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे ज्यादा फोन टीवी देखेंगे तो उनकी आईज वीक हो जाएंगी।
1: अरे ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है आपने हमारे नन्हे श्रोताओं को। और वो कैसे अपना समय अच्छे से गर्मियों की छुट्टियों का बिता सकते हैं, उसके लिए भी आप कुछ कहोगे?
2: हाँ,
1: बताओ।
2: मैं कहना चाहूंगी कि सभी बच्चे मस्ती करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हॉबी पर ध्यान दें और अपनी फैमिली वालों के साथ समय बिताएं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा बच्चों, तो चलिए आप भी इन छुट्टियों का अच्छे से सदुपयोग करना और नई नई चीजें सीखना, जिस तरह दक्षिका और पीहू ने कहा, आप भी एंजॉय करना। थैंक यू बच्चों।
0: वेलकम।
3: तो सुना बच्चों आपने, दक्षिका और पीहू किस तरह छुट्टियां बिताने वाली है, आप भी शायद इसी तरह इन छुट्टियों का सदुपयोग करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब वक्त है एक कहानी का। आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है बुद्धिमान कछुआ और चालाक लोमड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर तालाब था जिसमें एक कछुआ रहता था। उसका नाम था स्पीडी। स्पीडी बहुत शांत, समझदार और सबका अच्छा दोस्त था। उस तालाब के पास एक घना जंगल था जहाँ एक चालाक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी हमेशा किसी न किसी को धोखा देने की सोचती रहती, तो उसने सोचा क्या ना कछुए को अपना भोजन बनाया जाए। एक दिन लोमड़ी तालाब के पास आई। उसने कछुए को देखा और बोली, स्पीडी तुम बहुत अकेले रहते हो, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? कछुए ने थोड़ा सोचा और सोचकर बोला, तुम अच्छी और सच्ची लग रही हो, तो क्यों नहीं हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। और इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। लेकिन लोमड़ी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने सोचा, अगर मैं इस कछुए को किसी तरह फंसा लूं तो मुझे अच्छा खाना मिल सकता है। एक दिन लोमड़ी ने कछुए से कहा, स्पीडी मेरे घर में एक बहुत बड़ी दावत है, चलो मेरे साथ। कछुआ थोड़ा सीधा था, उसने लोमड़ी पर विश्वास कर लिया और वो लोमड़ी के साथ चल दिया। रास्ते में लोमड़ी उसे एक गहरे गड्ढे के पास ले गई और कहा, बस यहां से आगे बढ़ते चलो। लेकिन कछुए को कुछ शक हुआ और उसने ध्यान से देखा और समझ गया कि यह तो एक जाल है जिसमें मुझे लोमड़ी फंसाना चाहती है। कछुए ने धीरे से कहा, पहले तुम जाओ, मैं धीरे धीरे आता हूँ। लोमड़ी जल्दी में आगे बढ़ी और जैसे ही वो गड्ढे के पास पहुंची, धम से उस जाल में खुद ही फंस गई। अब कछुआ शांत होकर बोला, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह खुद उसमें गिरता है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लोमड़ी ने माफी मांगी। कछुआ बहुत दयालु था, उसने लोमड़ी की मदद की और अन्य लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला। अब लोमड़ी बदल गई थी, अब वह किसी को धोखा नहीं देती थी। दोनों फिर अच्छे दोस्त बन गए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसी पर बिना सोचे भरोसा नहीं करना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए। और हाँ बच्चों, गलत काम का अंत हमेशा बुरा होता है, इसलिए

गलत काम से बचना चाहिए और जो गलत काम करता है उसे भी मना करना चाहिए। और हाँ, दया और माफी भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, आपसे बातें यूं ही करेंगे क्योंकि अभी वक्त हो चला है आपको गीत संगीत की दुनिया में ले जाने का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मुश्किल आसान हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ वक्त भी है आपसे विदा लेने का। इसी वादे के साथ फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मजेदार चर्चा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवारी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिश का चैनल है। संध्या के ठीक 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात पर अपने विचार रखने जा रहा हूं जो जितनी सरल लगती है उतनी ही गहरी भी है। मुस्कुराता वही है जिसे पता है समस्या रोने से हल नहीं होती। जीवन में हर इंसान के हिस्से में सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया हो। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन कठिनाइयों के सामने टूट जाता है और कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए उनका सामना कर लेता है। जब समस्या आती है जीवन में तो सबसे पहला भाव जो हमारे मन में आता है वो होता है निराशा, डर और कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन क्या रोने से किसी समस्या का समाधान हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। रोना हमें कुछ पल के लिए हल्का जरूर कर सकता है, लेकिन वो हमारी समस्या को खत्म नहीं करता। असल में जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि रोने से कुछ नहीं बदलेगा, वही अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। वो जानता है कि समस्या अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है, कुछ नया सिखाने का, खुद को मजबूत बनाने का और आगे बढ़ने का। मुस्कान कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं तो हम खुद पर ये विश्वास दिलाते हैं, मैं इस स्थिति में भी बाहर निकल सकता हूँ। ये आत्मविश्वास ही हमें आगे की ओर बढ़ाता है। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उन्होंने कभी भी कठिनाइयों का सामना करने से खुद को रोका नहीं। उन्होंने रोकर समय बर्बाद नहीं किया, बल्कि हर समस्या को एक चुनौती की तरह स्वीकार किया और उसका समाधान भी खोजा। दोस्तों, अगर हम छोटी बड़ी समस्या पर रोने लगेंगे तो हमारा जीवन दुखों का एक सिलसिला बन जाएगा, लेकिन अगर हम हर समस्या को मुस्कुराकर स्वीकार करेंगे तो वही जीवन हमें मजबूत, समझदार और सफल बनाएगा। मुस्कुराने का ये मतलब नहीं है कि हमें दर्द नहीं होता, इसका मतलब ये है कि हम अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, हम उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। जब आप अगली बार किसी समस्या का सामना करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या रोने से इस समस्या का समाधान निकल पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो आंसू छोड़िए और समाधान की ओर कदम बढ़ाइए। याद रखिए, जीवन एक परीक्षा की तरह है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई चुनौती सामने आती है, लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों के सामने मुस्कुराकर खड़ा रहता है वही अंत में विजेता बनता है। अंत में दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, मुस्कान को अपनी आदत बनाइए, क्योंकि ये ना केवल आपके जीवन को आसान बनाएगी बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी सकारात्मक ऊर्जा देगी। इसी के साथ दोस्तों, अब सुनते हैं एक गीत और फिर पढ़ते हैं हमारे आज के अगले विषय पर।

दोस्तों, हमारे देश में आए दिन सांपों के निकलने की घटनाएं देखने को मिलती हैं। अक्सर लोगों को कभी घर में तो कभी खेतों में जहरीले सांप डस लेते हैं। रात में खेतों में पानी लगाते के लिए जाने वाले किसान को सबसे ज्यादा खतरा नाग देवताओं का ही होता है। हालांकि अब चाहे खेत हों या जंगल, इन विषधरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रामबाण चीज बना दी है जो 100 मीटर दूर से ही सांप की मौजूदगी को पता लगा देगी। भारतीय वैज्ञानिकों ने दूर से ही सांप का पता लगाने वाली किसान मित्र छड़ी विकसित की है। ये छड़ी 100 मीटर के दायरे में ही मौजूद सांप ही नहीं, बल्कि किसी भी जहरीले जीव का पता बताने में माहिर है। सामान्य छड़ी की तरह दिखाई देने वाली इस छड़ी में एक बटन लगा हुआ है, जिसे दबाने के बाद ये एक्टिव

हो जाती है और सांपों के मौजूद होने की सूचना देती है। बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस छड़ी के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसका नाम कृषि मित्र छड़ी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में चल रहे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले उन्नत कृषि में शामिल हुए मंत्री चौहान ने किसान मित्र छड़ी की विशेषताएं भी बताई। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये किसान मित्र छड़ी है। कई बार किसान रात में खेतों में पानी लगाने जाते हैं तो ऐसी कई दुर्घटनाएं होती हैं कि सांप ने काट लिया। ये छड़ी ऐसी घटनाओं से बचा सकती है। किसान इस छड़ी को लेकर खेत में जाएं और फिर इसे जमीन पर रखने के बाद इसमें लगा बटन दबाना होता है। अगर सांप आसपास होगा तो ये बड़े जोर जोर से कंपन करने लगती है और किसान सावधान हो सकते हैं। बता दें कि किसान खेतों में इस छड़ी को लेकर जाएंगे और इसका बटन दबाएंगे। अगर सांप या कोई जहरीला जीव आसपास है तो छड़ी जोर जोर से कंपन करने लगेगी। इससे किसान की समझ में आ जाएगा कि आसपास खतरा है। ये छड़ी करीब 100 मीटर के दायरे में सांप की मौजूदगी को भांप लेती है और किसान को कंपन के माध्यम से इशारा देती है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जैसे ही ये छड़ी कांपती है तो किसान को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ सांप हो सकता है और इससे बचना है। बता दें कि भारत में हर साल 30 से 40 लाख सांपों के काटने की घटनाएं सामने आती हैं। इनमें से करीब 58,000 लोगों की मौत हो जाती है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। इनमें से ज्यादातर लोग किसान होते हैं जो रात में या दिन में खेतों में काम करने के लिए जाते हैं और वहां उन्हें सांप डस लेते हैं। भारत में करीब 350 किस्म के सांप देखने को मिलते हैं। हालांकि सांप की इन प्रजातियों में से सिर्फ 10% ही जहरीले हैं, लेकिन वे इतने खतरनाक हैं कि अगर काटने के कुछ मिनटों में यानी गोल्डन टाइम में मरीज को इलाज ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है। ऐसी स्थिति में ये छड़ी काफी फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, अब सुनते हैं हमारा अगला गीत और फिर बढ़ेंगे हमारे आज के अगले टॉपिक पर।

दोस्तों, आज के समय में मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल करने तक सीमित नहीं रह गया है। ये बैंकिंग, ओटीपी, यूपीआई और सोशल मीडिया जैसे कई ज़रूरी कामों से जुड़ा होता है। ऐसे में अगर आपका सिम बंद हो जाता है तो कोई ज़रूरी सेवाओं एक साथ रुक जाती हैं। यही वजह है कि सिम को एक्टिव रखना अब ज़रूरत बन चुका है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार अगर लंबे समय तक किसी सिम पर कोई रिचार्ज या एक्टिविटी नहीं होती है तो टेलीकॉम कंपनियां उसे धीरे धीरे से उसकी सेवाएं बंद करनी शुरू कर देती हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि बिना रिचार्ज के कितने दिन तक सिम एक्टिव रह सकता है। दोस्तों, आमतौर पर कोई सिम बिना रिचार्ज के करीब 90 दिनों तक एक्टिव रह सकता है। इस दौरान कंपनियां आपको कॉल या मैसेज के जरिए लगातार अलर्ट भेजती रहती हैं ताकि आप समय रहते रिचार्ज कर लें। लेकिन इस दौरान भी अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आगे का स्टेप शुरू होता है। आगे फिर सिम बंद होने की प्रक्रिया एकदम अचानक नहीं होती है। शुरुआत में आपकी आउटगोइंग कॉल और एसएमएस सेवाएं बंद कर दी जाती हैं। इसके बाद कुछ समय तक इनकमिंग कॉल और मैसेज चलते रहते हैं। अगर इन दौरान भी रिचार्ज नहीं किया गया तो इनकमिंग सेवाएं भी बंद हो जाती हैं और आपका नंबर पूरी तरह नेटवर्क से कट जाता है। दोस्तों, अगर सिम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जाता तो कंपनी उस नंबर को परमानेंटली डीएक्टिवेट कर देती है। इसके बाद वही नंबर किसी दूसरे यूज़र को दे दिया जाता है, यानी आपका नंबर हमेशा के लिए खो सकता है और आगे चलकर बैंकिंग और अन्य सेवाओं में बड़ी समस्या बन सकती है। सिम को चालू रखने के लिए बहुत बड़े कदम उठाने की ज़रूरत नहीं होती, बस समय समय पर छोटा रिचार्ज करते रहें और सिम का इस्तेमाल करते रहें। कंपनी के अलर्ट मैसेज को नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है, क्योंकि वही आपको पहले से चेतावनी देते हैं। सिम को एक्टिव रखना अब सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ज़रूरत है। अगर आप इसे नज़रअंदाज करते हैं तो बाद में ओटीपी, बैंकिंग या यूपीआई जैसे ज़रूरी काम अटक सकते हैं। इसलिए समय पर रिचार्ज करना अपने नंबर को सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका और सही तरीका भी है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के अगले गीत की ओर और फिर बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे।

रात के करीब 11 बजे पार्टी से लौटते हुए मोहित खुद कार चलाकर घर लौट रहा था। पार्टी में दोस्तों की जिद के आगे उसने थोड़ी शराब पी रखी थी। नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार, लगभग 90 की स्पीड से दौड़ रही कार के सामने एक बाइक आ गई। कार चला रहा मोहित अचानक ब्रेक नहीं लगा पाया। सामने बाइक थी, टक्कर हुई और सब कुछ सेकंड में खत्म। घबराहट में उसने गाड़ी मोड़ी और भाग गया। सुबह जब उसने खबर देखी हिट एंड रन में युवक की मौत, तब देर रात हो चुकी थी। अब सवाल था, क्या भाग जाना उसे बचा पाएगा या कानून उसे और गहरे संकट में डाल देगा। बात यह है कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं अब एक बड़ी सामाजिक और कानूनी चुनौती बन चुकी हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर दिन सैकड़ों लोग सड़क हादसे में जान गंवाते हैं। ऐसे में सड़क हादसे अब सिर्फ हादसा नहीं, कानूनी संकट बन गए हैं। 2024 से 26 के बीच लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 ने हिट एंड रन मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भागना भी अपराध है। इस लीगल स्टोरी में हम हिट एंड रन के सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। हिट एंड रन एक सीधा सा मतलब है किसी वाहन से दुर्घटना होना और उसके बाद बिना मदद किए या पुलिस को बिना सूचना दिए ड्राइवर का मौके से भाग जाना। BNS 2023

नए कानून के तहत दुर्घटना होती है तो उसके बाद रुकना और घायल को मदद देना जरूरी है। साथ ही पुलिस को तुरंत सूचना देना भी जरूरी है। नया कानून में हिट एंड रन को लेकर क्या कहा गया है, ये भी हम जानते हैं। भारत में न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 106 के तहत हिट एंड रन के मामलों में सख्त कानून लागू है। यदि कोई चालक लापरवाही से दुर्घटना करता है और पुलिस मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना भाग जाता है, तो उसे 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में सबसे पहले ये करें कि हर दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हो सकता है कभी आप मोहित की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठे हों। सड़क हादसा अब सिर्फ हादसा नहीं, कानूनी संकट भी बन गए हैं। तो तुरंत वाहन रोकें, घायलों को बाहर निकालें, घायल को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करें, पुलिस या एम्बुलेंस को कॉल करें, मौके से भागे नहीं। मौके से भागने पर मामूली दुर्घटना भी क्रिमिनल केस बन सकती है। हिट एंड रन के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों पर मुआवजा और सख्त कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया है। इस तरह के विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय दृष्टिकोण देखते हुए मामलों को निपटारा किया है। इससे जुड़े कई प्रसिद्ध मामले हैं। एस राजशेखरन बनाम भारत संघ 2012 से भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका PIL मामला, जो सड़क सुरक्षा, पैदल यात्रियों के अधिकारों और हिट एंड रन पीड़ितों के मुआवजे से संबंधित है। दोस्तों, हिट एंड रन कानून एक डर नहीं, जिम्मेदारी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कह सकते हैं कि हिट एंड रन के नए कानून का उद्देश्य डर जगाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास जगाना है। नए कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि ड्राइवर को जिम्मेदार बनाना है, जिससे पीड़ित को तुरंत मदद दिलाई जा सके। साथ ही सड़क सुरक्षा सुधारना, जिससे दिन ब दिन बढ़ने वाले सड़क हादसों की संख्या कम की जा सके। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम होता है समाप्त, और फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे युवाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है।
3: अरे सुन तो,
4: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
3: किसको?
4: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
3: अच्छा ये बात है?
4: हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
3: अब तो झट से बात हो जाती है।
4: ऐसा क्या?
3: हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
4: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
3: हाँ।
4: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
5: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर

0: आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
2: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
1: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए

0: ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे हिंदी में समाचार एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। संध्या के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी कि 6:10 पर शाम सुनिएगा फिल्म संगीत और 6:30 पर आप आनंद सुनिएगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार। तत्पश्चात 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। संध्या 7 सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम भारती, जिसमें चर्चा होगी कुष्मांड कुल सब्जियों की कीट नियंत्रण और भेंटवार्ता सुनिएगा कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाएँ मंगतुराम शर्मा जी से, और जानकारी मिलेगी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट और प्रबंधन, साथ में होगा बाजार मौसम भाव। 7:30 पर आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का और लोक संगीत का समय रहेगा 8:15 पर। समाचार संध्या सुनिएगा 8:45 पर और विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 9:15 से 11 तक। रात्रि 11 सुनेगा हिंदी में समाचार और 11:05 पर आज की सभा का समापन होगा।

कल सवेरे 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार, 6:05 से आप सुनेगा वंदनवार चिंतन, उसके बाद रामचरितमानस गान 6:35 पर, और सवेरे 6:45 पर आप सुनेगा संगीत सरिता। सवेरे ठीक 7 बजे आप आनंद उठाएंगे नमस्कार अलवर कार्यक्रम में, और 7:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुगम संगीत का समय रहेगा सवेरे 8:15 पर, और 8:30 पर आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

सवेरे ठीक 9 बजे सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और सवेरे 9:10 से आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का। संध्या सुनिएगा 5 बजे महिला जगत, जिसमें चर्चा होगी बच्चों को सिखाएं छुट्टियों का सदुपयोग, जानकारी मिलेगी अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं और गर्मियों में पक्षियों के लिए रखें पायदान विविधा होगी। 5:30 पर आप सुनेंगे युवाणी और 6:10 पर आप आनंद उठाएंगे फिल्म संगीत का। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे 6:45 पर और 7 बजे आप सुनेंगे ग्राम भारती।

शेषपक्ष कार्यक्रम और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के 6:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली प्रस्तुति किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ राजपूत फिल्म का ये गीत।

अभी आपने सुना किशोर कुमार को, फिल्म थी राजपूत में और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुनते हैं अगला गीत। यह गीत है कलाकार फिल्म से, आवाज़ फिर से किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और कल्याण जी आनंद जी ने दिया है।

फिल्म का नाम पिघला आसमान, लता मंगेशकर की आवाज़, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने, फिल्म का नाम पिघलता आसमान।

फिल्म संगीत संपन्न होता है एफएम बैंड 103.1 MHz पर। यह आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल सहित चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश भर में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के बारे में जागरूकता के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह कल से मनाया जाएगा। राज्य विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार की जाएगी और प्रदेश में अगले 3-4 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग ने इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर धरातल पर उतार रही है। वहीं किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री निवास पर ओड़ समाज संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा को समृद्ध बनाने में ओड़ समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर ओड़ समाज को रामदेवरा में धर्मशाला और जयपुर में छात्रावास के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आज वन और पर्यावरण विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी पौधरोपण अभियान की तैयारियां समय रहते पूरा करने और इसे जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए। देश भर में कल से अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से ये सप्ताह मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इसका उद्घाटन करेंगी और उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि सुरक्षा की शपथ दिलाई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस पर आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
1: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत देश भर में 38 लाख घरों को शामिल किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के स्टार्टअप गैलेक्सी आई द्वारा विकसित मिशन दृष्टि को अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक प्रमुख उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति जुनून का प्रमाण है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये सफलता

0: भारत को वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार की जाएगी। ये वाटिकाएं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, प्राचीन ज्योतिषीय ज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उदाहरण बनेगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. वासुदेव देवनानी की पहल पर बनने वाली इन वाटिकाओं का उद्घाटन 5 मई को होगा। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। श्री देवनानी ने बताया कि नक्षत्र वाटिका में 27 नक्षत्रों पर आधारित पौधों को विकसित किया जाएगा। इसके लिए विधानसभा के दक्षिण भाग में दोनों पार्किंग के बीच 5000 वर्ग मीटर अर्धचंद्राकार उद्यान विकसित किया गया है। वहीं हर्बल वाटिका में 38 तरह के औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से चल रहे 15 दिवसीय ग्राम रथ अभियान के तहत इन दिनों विभिन्न जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में रथ पहुंच रहे हैं। अभियान के माध्यम से लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। आज झुंझुनू के हेतमसर, नुवा, भोजासर, बहादुरबास गांवों में LED वैन के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार किया गया। अभियान के दौरान ग्रामीणों ने सुझाव पेटिका में अपने सुझाव और समस्याएं भी दर्ज कराई। वहीं पाली जिले के सुमेरपुर, सोजत और बाली में लोक कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक, ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कार्यशाला में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाएं 16वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुरूप हों और ग्रामीण समुदायों के लिए स्पष्ट दिख सकने योग्य परिणाम प्रदान करें। पंचायती राज मंत्रालय ने ये भी बताया कि कार्यशाला में राज्यों के प्रतिनिधि और पंचायत से जुड़े प्रमुख पक्ष शामिल होंगे। हनुमानगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिकित्सकों ने नई पहल करते हुए प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की है। डॉक्टर्स फॉर सोसाइटी संस्था के माध्यम से शुरू हुए इस अभियान के तहत आज जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में चिकित्सकों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, व्यापारी और साइकिल क्लब के सदस्यों ने भाग लिया। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और आंधी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इससे लोगों को तेज गर्मी से मामूली राहत मिली है। राजधानी जयपुर में आज सुबह मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन दोपहर में गर्मी का असर बढ़ गया। हनुमानगढ़ जिले में आज सुबह से ही धूल भरी आंधी का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। राज्य में अगले एक सप्ताह तक हीट वेव से राहत रहेगी। आंधी बारिश के असर से अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज होने का पूर्वानुमान है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ. राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 3-4 दिनों तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहने के आसार हैं।
1: अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। विशेष रूप से बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में फिर से तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इसके बाद भी यदि देखें तो 5 से 8 मई के दौरान भी शाम के समय मध्यम से तेज दर्जे के मेघ गर्जन, तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां खासकर राज्य के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं।
0: आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा

0: की थी। प्रेस की आजादी को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिन दुनिया भर में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण रखा गया है। ये अवसर प्रेस की स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांतों को मान्यता देने और मूल्यांकन करने का है। कई जगह इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। कई जगह पत्रकार सम्मान समारोह भी रखे गए हैं। पाली में इस अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई और वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। वक्ताओं ने वर्तमान समय में समाचारों की विश्वसनीयता, पत्रकारों की चुनौतियों जैसे विषयों पर चर्चा की। आज विश्व हास्य दिवस भी है। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से हास्य सत्र और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पाली में लाफ्टर प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने हंसने के फायदे बताए। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की गई। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से किया गया। इसके लिए 22,79,000 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था और देश भर में 552 शहरों में ये परीक्षा हुई। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से परीक्षा संपन्न कराने तथा सुरक्षा के मद्देनजर सभी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर को कप्तान और स्मृति मंधाना को उपकप्तान बनाया गया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यास्तिका भाटिया को भी टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में ये विश्व कप 12 जून से शुरू होगा। इसका फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव की मतगणना कल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। देश भर में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के बारे में जागरूकता के लिए अग्नि सुरक्षा सप्ताह कल से मनाया जाएगा। राज्य विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार की जाएगी और प्रदेश में अगले 3-4 दिन आंधी बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से सालुम्बर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख कमलेश कुमार झडोला ने तैयार किया है। सालुम्बर जिले के कुछ गांवों में पिछले दिनों वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों के मामले सामने आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर घर सर्वे किया गया। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज की टीम और राज्य स्तरीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, साथ ही ग्रामीण इलाकों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य अधिकारियों की टीम हालात पर नजर रखे हुए हैं और बीमारियों की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों और स्थानीय लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और आवश्यक दवाइयां बांट रही है। करीब 3,600 से अधिक टीमों ने 52,000 से ज्यादा घरों का सर्वेक्षण कर 275 संभावित रोगी चिन्हित किए हैं। इन्हें बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों में भेजा गया। वहीं 13,000 से अधिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। बुखार या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। जिले में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया है। 1 मई से स्वगणना की सुविधा शुरू हो गई है। इसके जरिए लोग घर बैठे ही मोबाइल या कंप्यूटर पर अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करवा सकते हैं। जिला कलेक्टर ने आम लोगों से डिजिटल जनगणना से जुड़ने और अपनी जानकारी खुद रिकॉर्ड करवाने की अपील की है। प्रशासन की ओर से सभी विभागों को जनगणना में भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
1: जिले में ग्राम रथ अभियान के जरिए इन दिनों लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिला कलेक्टर मोहम्मद जुनैद पीपी के निर्देशन में ग्राम रथ गांव-गांव पहुंचकर 13 विभागों की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इन रथों में एलईडी स्क्रीन पर योजनाएं बताई जा रही हैं। वहीं लोक कलाकार

की प्रस्तुतियां भी लोगों को आकर्षित कर रही है। इन ग्राम रथों में सुझाव पेटिका भी लगाई गई है, जिसके माध्यम से लोग अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जिले में 1 मई से 24 घंटे की अवधि के लिए वन्य जीवों की गणना का काम किया गया। ये गिनती जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वाटर होल पद्धति से की गई। इसके लिए 28 विशेष मचान तैयार किए गए, साथ ही 25 कैमरों की मदद से वन्य जीवों की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 275 जनजाति किसानों को निशुल्क सोलर पंप दिए गए हैं। इससे किसानों के लिए सिंचाई करना आसान हुआ है। जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए राज्य सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से इन पंपों का खर्च वहन किया गया। सोलर पंप लगने से किसानों को फसल उत्पादन में सहायता मिली है। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप है। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी

0: की गई। इसके लिए 28 विशेष मचान तैयार किए गए, साथ ही 25 कैमरों की मदद से वन्य जीवों की गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। जिले में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 275 जनजाति किसानों को निशुल्क सोलर पंप दिए गए हैं। इससे किसानों के लिए सिंचाई करना आसान हुआ है। जनजाति क्षेत्र के किसानों के लिए राज्य सरकार और जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से इन पंपों का खर्च वहन किया गया। सोलर पंप लगने से किसानों को फसल उत्पादन में सहायता मिली है। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप है। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। छात्र छात्राओं को लू से बचाने के लिए कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक ही लगाई जा रही हैं। जिले के सेमारी क्षेत्र की बड़ावली ग्राम पंचायत में पिछले दिनों जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई की। रात्रि चौपाल में जन समस्याओं के समाधान के साथ ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक किया गया। रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर ने भीषण गर्मी के मद्देनजर ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने लोगों से दिन के समय बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने को कहा, साथ ही लगातार ठंडा पानी पीने और ORS तथा अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी। कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने के लिए जिले में पिछले दिनों पोषण पखवाड़ा मनाया गया। सही पोषण देश रोशन थीम पर हुए इस पखवाड़े में पोषण की महत्ता के बारे में बताया गया। इस दौरान कुपोषण को जड़ से मिटाने का आह्वान किया गया। पखवाड़े के तहत मातृ और शिशु पोषण, गर्भावस्था में संतुलित आहार और एनीमिया की रोकथाम के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उपयोग पर जोर दिया गया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से कई गतिविधियां रखी गई। अक्षय तृतीया के मौके पर जिले में विवाह समारोह की धूम रही। संभावित बाल विवाह की रोकथाम के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। इसके साथ ही सालुम्बर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर उपेश सिंचा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। पश्चिमी बंगाल समेत 4 राज्यां और 1 केंद्र शासित प्रदेश माय विया विधानसभा चुनाव री मतगणना काले हिफाजत राख करड़ा बंदोबस्त। देश भर माय आगरा बारा माय खतरा री रोकथाम और निवारण सारू जाग जगावण रा बारा माय अग्नि सुरक्षा सप्ताह काले मनायो जायला। राज्य विधानसभा परिसर माय नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार करी जायला और प्रदेश माय आवता 3-4 दिन आंधी बिरखारो दौर चालता रेवणरी आस। समाचार रे साथे मैं शंभू सिंह और अबे समाचार विगतवार। पश्चिमी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरलम और पुद्दुचेरी विधानसभा चुनाव रा वोटां री गिनती काले सवारा 8 बजे शुरू वेला। चुनाव आयोग इनना लेर सगली तैयारियां पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल में वोटां री गिनती करड़ी हिफाजत रे बीच 77 मतगणना केंद्र माथे करी जायला। मतगणना केंद्र माथे हिफाजत रा 3 थर्रा इंतजाम करी जिया है, जिन में जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बल ने तैनात करी जिया है। मतगणना री ठोड़ा माथे केंद्रीय बल री कुल 200 कंपनियां तैनात करी जी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि सरकार प्रदेश में पीवण रा पानी और पाणत परियोजनावां ने तेजियों पूरी करने धरती माथे उतार रही है। वठे ही काश्तकारों ने दिन में बिजली दी जावे। आज मुख्यमंत्री रहवास माथे ओड समाज संवाद कार्यक्रम में बोलता वणा कहो कि राजस्थान में जल संरक्षण री परंपरा ने मजबूत बनावण में समाज रो महत्व योगदान है। श्री शर्मा ई मौके ओड समाज ने रामदेवरा माए धर्मशाला और जयपुर माए होस्टल सारू जमी देवन रो ऐलान करियो। मुख्यमंत्री आज ही वन और पर्यावरण महकमा री समीक्षा बैठक करी। वना आवता पौध रोपण अभियान री तैयारियां भगत सर पूरी करण और इन माए जन भागीदारी बधावण सारू निर्देशी दिया। देश भर माए कालेऊ अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनायो जायला। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सगला राज्यां, केंद्र शासित प्रदेशां और केंद्रीय मंत्रालयां और महकमारी मददों सप्ताह मनायो जायला। इनरो मकसद देश भर रा स्वास्थ्य केंद्र में आगू उत्पन्न खतरा री रोकथाम।

0: निवारण रा महत्व रा बारा माय जाग बधावणो है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुष्य सलीला श्रीवास्तव नई दिल्ली में इनरो उद्घाटन करेला और मारी अगुवाई में स्वास्थ्य केंद्र में अग्नि सुरक्षारी शपथ दिराई जायला। अंतर्राष्ट्रीय शोर दिवस माथे आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन भी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ई मैराथन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। ई मौके श्री सारंगी कहो के सूरज री रोशनी सगला सारू ऊर्जा रो सबू मोटो स्रोत है। वना कहो के ओ दिन सौर ऊर्जा ने काम माय लेवता बत्तियों बत्ती बिजली हासिल करण रा तरीका रा बारा माय जाग जगावन सारू करी जो है।
1: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों को।
0: श्री सारंगी कहो के प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत देश भर में 38 लाख घराने भेड़ा करी जिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु रा स्टार्टअप गैलेक्सी आई का न्यू विकसित मिशन दृष्टि ने अंतरिक्ष रा हल्का माय भारत री एक खास कामयाबी बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट माय श्री मोदी कहो के दुनिया रा पेरा ऑप्टोसौर उपग्रह और भारत माय बनिया सब मोटा निजू उपग्रह ने कामयाबी पूर्ण प्रक्षेपण नौजवाना रा नवाचार और राष्ट्र निर्माण रे प्रति जुनून रो प्रमाण है। वना गैलेक्सी आई रा संस्थापक और पूरी टीम ने बधाई दी। वठे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई सैटेलाइट रा कामयाब प्रक्षेपण माथे टीम ने बधाई दी। वना कहो के आ कामयाबी भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी रा हल्का माय अगाड़ी देश रा रूप माय स्थापित करण कानी महत्व साबित वेला। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान माथे सुन सको हो। इनके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और वहाँ जुड़िया फोटो और वीडियो देख सको हो। समाचार में आप रो एक और फिर स्वागत है। राज्य विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार करी जायला। ए वाटिका में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा प्राचीन ज्योतिष ज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा और पर्यावरण संरक्षण री दिशा में मिसाल बनेला। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव देवनानी री पहल माते बनन वाली आ वाटिकाओं रो उद्घाटन 5 मई ने वेला। ई मौके मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा और सिक्किम विधानसभा रा अध्यक्ष मौजूद रहेला। श्री देवनानी बतायो के नक्षत्र वाटिका माय 27 नक्षत्र माथे आधारित पौधा विकसित करया जायला। इन सारू विधानसभा रा दिखनाद हल्का माय दोन्यू पार्किंग रे बीचे 5000 वर्ग मीटर अर्धचंद्राकार उद्यान विकसित करियो जायला। वठी हर्बल वाटिका माय 38 तरह रा औषधीय पौधा लगाया जावे। प्रदेश माय राज्य सरकार कानियों चाल रिया 15 दिन रा ग्राम रथ अभियान रे तहत आदिना न्यारा न्यारा जिला रा गांवाई हल्का माय रथ पूग रिया है। अभियान री मार्फत लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार री जन कल्याणकारी योजनावां री जानकारी दी जावे। आज झुंझुनू रा हेतमसर नुआ भोजासर बहादुरवास गांव माय LED वैन री मार्फत सरकारी योजनावां रो प्रचार करी जो। अभियान रे दौरान गांव वाला सुझाव पेटिका माय आपरा सुझाव और समस्यावां दर्ज करी। वठे पाली जिला रा सुमेरपुर सोजत और बाली माय लोक कलाकारा नुक्कड़ नाटक ऑडियो वीडियो री मार्फत लोगों ने सरकारी योजनावां री जानकारी दी। पंचायत विकास योजनावां री तैयारियां माथे 2 दिन री राष्ट्रीय कार्यशाला कालेऊ नई दिल्ली माय शुरू वे रही है। कार्यशाला माय ओ तय करियो जावेला के साल 2026-27 सारू पंचायत विकास योजनावां 16वां वित्त आयोग री शर्तां रे मुजब होवे और गांवाई तबका सारू साफ दिखण जो नतीजा देवे। पंचायती राज मंत्रालय ओई बतायो के कार्यशाला माय राज्यां रा नुमाइंदा और पंचायतों जुड़िया खास पगस भेड़ा वेला। अरबे मौसम आथोणी विक्षोभ रा असरु प्रदेश रा कई हल्का माय वी बिरखा और आंधियों तापमान माय कमी।

0: दर्ज करी जी है। इनु लोगों ने करड़ी गर्मियों थोड़ो आराम मिलियो है। राजधानी जयपुर में आज सवारा मौसम खुशनुमा रियो। इन रेपा छे दोपहरा तेज गर्मी रो असर बद गयो। हनुमानगढ़ जिला में सवारा हुई धूल भरी आंधी रो दौर चाले। मौसम महकमा मुजब काले जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और अजमेर संभाग में तेज रफ्तार बायरो चालन री आस है। राज्य में आवता हफ्ता ताई हीट वेव आराम रहेला। आंधी बिरखारा असरों आवता हफ्ता ताई राज्य रा घनकरा हल्का में बत्ती रो तापमान 44 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने रा आसार है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो के आवता 3-4 दिन ताई आंधी बिरखा और तेज हवा रो दौर चालता रेवन रा आसार है।
1: अगले 24 घंटों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। विशेष रूप से बीकानेर संभाग, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग शेखावटी क्षेत्र के कुछ भागों में फिर से तेज मेघ गर्जन, आंधी और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इसके बाद भी यदि देखें तो 5 से 8 मई के दौरान भी शाम के समय मध्यम से तेज दर्जे के मेघ गर्जन, तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां खासकर राज्य के उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में जारी रहने की संभावना है। अगले एक सप्ताह के दौरान राज्य में कहीं भी हीट वेव की संभावना नहीं।
0: हनुमानगढ़ में पर्यावरण संरक्षण ने लेर चिकित्सका कानियों नवी पहल करता प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करी जी है। डॉक्टर्स फॉर सोसाइटी संस्थारी मार्फत सरुविया ई अभियान रे तहत आज जागरूकता समारोह आयोजन करीजियो। ई सभा में डॉक्टर रे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता, वकील, कारोबारी और साइकिल कलबरा सदस्य हिस्सो लियो। प्लास्टिक रा बुरा असर माथे बतल करता मौजूद लोगों ने पर्यावरण संरक्षण री शपथ दिराई जी। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र महासभा साल 1993 में हर साल 3 मई ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने रो ऐलान करियो हो। प्रेस री आजादी ने बढ़ावो देवन सारू ओ दिन दुनिया भर में मनायो जावे है। इस साल रो मुद्दो शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण रखीजियो है। ई मौके प्रेस री स्वतंत्रता रा मूल सिद्धांता ने मान्यता देवन और मूल्यांकन करनो है। ई मौके प्रदेश माए न्यारा न्यारा आयोजन वेरिया है। कई थोड़ा खबर नवीस सम्मान जलसाई भी आ पाली माए ई मौके संगोष्ठी भी और ठावा खबर नवीसा रो सम्मान करीजियो। बोलन वाला अबार रा वक्त माए समाचार रा भरोसा खबर नवीसारी चुनौतियां जस्या मुद्दा माते चर्चा करी। आज ही विश्व हास्य दिवसी है। ई मौके न्यारा न्यारा संगठना कानियों हास्य सत्र और होडा रो आयोजन करीजियो। ई मौके पाली माय लाफ्टर प्रयोग रा नुमाइश करीजी। ई मौके जानकारा हसन रा फायदाई बताया। देश भर रा मेडिकल कॉलेजा माय स्नातक चिकित्सा शिक्षा कोर्स भर्ती सारू राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज भी। आ परीक्षा दोपहरा 2 बजे सिंझिया 5 बजे ताई भी। ई परीक्षा रो आयोजन राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी NTA कानियो करियो जावे। ई सारू 22,79,000 पडेसर पंजीकरण करायो है और देश भर में 552 शहरा में आ परीक्षा भी। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू तरीकाओं परीक्षा पूरी करावण और हिफाजत ने देखता सगड़ा केंद्र माथे पुख्ता बंदोबस्त करी जा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI T20 महिला क्रिकेट विश्व कप सारू 15 सदस्यों वाली टीम रो ऐलान कर दियो है। हरमनप्रीत कौर ने कप्तान और स्मृति मंदाना ने उप कप्तान बनाई दिया है। नंदिनी शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज यस्तिका भाटिया ने टीम में भेड़ा कर दिया है। इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में वो विश्व कप 12 जून को शुरू वेला और इनरो फाइनल 5 जुलाई ने खेलो जाएला। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहा हो। पश्चिमी बंगाल समेत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विया विधानसभा चुनाव की मतगणना काल है। हिफाजत रा करड़ा बंदोबस्त। देश भर में आगरा बारा में खतरा री रोकथाम और निवारण सारू जाग जगवण रा बारा में अग्नि सुरक्षा सप्ताह काले मनायो जाएला। राज्य विधानसभा परिसर में नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका तैयार करी जाएला और प्रदेश में आवता 3-4 दिन आंधी बिरखारो दूर चालता रेवण री आस। साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो वियो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के ठीक 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम भारती।

कार्यक्रम ग्राम भारती सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई और बहनों को प्रवीणा बहन की ओर से घनी घनी राम राम। कैसे हो किसान भाइयों? उम्मीद करा कि आप अपने घर में और परिवार के साथ अच्छी तरह से रह रहे होंगे। तो किसान भाइयों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज अपनी जो पहली चर्चा है वो है कुष्मांड कुल की सब्जियों में कीट नियंत्रण। किसान भाइयों, कुष्मांड कुल की सब्जियों में जो प्रमुख सब्जियाँ आती है वो है लौकी, कद्दू, टिंडा, करेला, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि आते हैं। अब ये सब्जियां विटामिन ए, सी, कैल्शियम, आयरन के प्रमुख स्रोत मानी जाती है। लेकिन इस वर्ग की सब्जियों में प्रमुख कीट भी लगते हैं। किसान भाइयों, आपको अच्छी तरह पता है जो प्रमुख कीट लगता है वो है लाल मकड़ी, जिसे वरूथी भी कहते हैं। इसकी शिशु और वयस्क दोनों ही अवस्थाएं पौधों को हानि पहुँचाती है। ये मकड़ी पत्तियों की निचली सतह पर लगती है और उसका रस चूसकर उसको नुकसान पहुंचाती है। इससे पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं जो बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। अब अपने बनाए हुए रेशमी जालों से पत्तियों को वह ढक लेती है और हवा के चलने से जमीन से मिट्टी के कण जालों पर लगकर उसे और घना बना देती है। इससे पत्तियों में प्रकाश की क्रिया नहीं हो पाती, उससे प्रभावित होकर पत्तियां गिर जाती है, फूल और फल दोनों ही कम लगते हैं और उत्पादन में भी भारी कमी आती है। और किसान भाइयों, दूसरी जो कीट की बात करें वो है फल मक्खी। यह फल मक्खी प्रौढ़ और लट दोनों ही अवस्थाएं पौधों को नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, जो प्रौढ़ मक्खी है वो अपने अंड निक्षेपक की मदद से फलों में छेद कर गूदे में अंडे देती है और बाहर से इन छेदों को एक लसदार पदार्थ से वापस बंद कर देती है। अंडों से 3 से 5 दिन में लट बनकर फलों को अंदर ही अंदर खाती रहती है, जिससे फल सड़ने लगते हैं और गिर जाते हैं। तीसरी बात करें हम हाड़ा बीटल की, ये भी एक प्रमुख कीट है। और ये जो कीट है इसकी अवस्थाएँ यानी कि लट और भ्रंग दोनों ही नुकसान पहुँचाती है। इसकी लट और भ्रंग पत्तियों को ऊपरी सतह से खाती है और पत्तियों पर छेद कर देती है। अगला जो कीट है वो है लाल भ्रंग। किसान भाइयों, लट और भ्रंग दोनों ही अवस्थाएं पौधों को नुकसान पहुंचाती है। भ्रंग पौधों की पत्तियों के सिराओं के बीच के भाग को खाकर उसमें छोटे छोटे छेद कर देती है। इस कीट का प्रकोप बसंत ऋतु में अधिक होता है। इसकी सुंडियाँ जमीन के अंदर रहती है और पौधों के तने व जड़ों को खाती है। बात करें कुष्मांड कुल की सब्जियों में प्रमुख कीट प्रबंधन के बारे में, तो किसान भाइयों, गर्मियों में आप खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करें, फसल चक्र और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। इन सब्जियों की बुआई समय में पहले अक्टूबर में करें तो लाल भ्रंग का प्रकोप कम होता है। किसान भाइयों, फसल की जो प्रथम अवस्था है उसमें आप समय समय पर निराई गुड़ाई करने से जो लाल भ्रंग कीट है उसकी अवयस्क अवस्थाएँ और फल मक्खी के जो प्यूपा है उनका नियंत्रण होता है। आप अगर राख का बुरकाव करते हैं तो लाल भ्रंग का आक्रमण भी कम होता है। फल मक्खी और सफेद मक्खी की जो मॉनिटरिंग है उसके लिए क्रमशः आप मिथाइल यूगोनोल पॉस व चिपचिपी पॉस का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अप्रैल से जुलाई माह में वयस्क मक्खियों की रोकथाम के लिए आप जहरीले पानी मिले घोल बनाकर खेत में जगह जगह पर रख दें। इसके लिए आप 500 ग्राम गुड़ को 2 लीटर पानी में घोलकर उसमें मेलाथियन 50 cc 20 मिलीलीटर दवा मिलाएं और मिट्टी के प्यालों में 50 मिलीलीटर घोल प्रति प्याले में डालकर इस कीट को आकर्षित करके नष्ट कर दें। अब किसान भाइयों, फल मक्खी से ग्रसित फलों को आप इकट्ठा करके गड्ढे में दबा दें, जिससे इससे जीवन चक्र न बढ़ पाए। नीम बीज सत्व 10% का आप

0: जो छिड़काव है वो उस फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही कर दें। और किसान भाइयों, जो मकड़ी के नियंत्रण के लिए आप ओमाइट 57 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर अथवा डाइकोफोल 18.5 EC 2 मिलीलीटर दवा का छिड़काव आप प्रति लीटर पानी में मिलाकर अवश्य कर दें। इससे कीटों की संख्या को आर्थिक हानि स्तर तक पहुंचने के लिए पहले कीटनाशी प्रबंधन के सभी मौजूदा तरीकों और उपायों को आप सुसंगत और समन्वित रूप से अपनाकर जो नासी कीटों की रोकथाम है उसको कर दें। साथ ही कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से भी आप वातावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। तो ये थी किसान भाइयों कुष्मांड कुल की सब्जियों में कीट नियंत्रण पर चर्चा। अब आइए किसान भाइयों, आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता जिसका विषय है कृषि विभाग की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में देंगे जानकारी। और जो जानकारी दे रहे हैं वो है मंगतूराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को विश्राम भाई की घनी घनी राम राम साहब। किसान वाणी में हम आपके लिए लेकर आए कृषि विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं। इस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए मेहमान पधारे हैं आप मंगतूराम शर्मा, सहायक निदेशक कृषि विस्तार अलवर। मंगतूराम जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाइयों को राम राम।
1: हमारे किसान भाइयों को हम जानकारी दें, कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी इस समय चलाई जा रही इसके बारे में बताएं।
2: किसान भाइयों, कृषि विभाग द्वारा प्रमुख जो योजनाएं हैं वो एक तो पानी की बचत के संबंध में है, जिनको अपन राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें फार्म पौंड है, पाइपलाइन है, तारबंदी की जो योजना है वो आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए है। साथ ही हम राजस्थान कृषि तकनीकी मिशन जो है, कृषि यंत्र हैं, उन पे भी कृषि विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है। साथ ही यदि बच्चियां छात्राएं हैं जो कृषि संकाय में पढ़ती हैं तो उनके लिए भी हमारा जो विभाग है उनको एक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान की जाती है। साथ ही हम किसानों को समय समय पर रबी और खरीफ दोनों जो फसलें हैं उन दोनों फसलों के तहत में हम मिनी किट्स का वितरण भी करवाते हैं, प्रदर्शन भी हम लगवाते हैं
1: जी। तो मंगतूराम जी, हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें, कृषि यंत्रों पर किस तरह से हमारे किसान भाई हैं जो अनुदान ले सकते हैं और वो कौन कौन से कृषि यंत्र हैं?
2: किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो किसान के पास में ट्रैक्टर के RC होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और ट्रैक्टर के RC होने के आधार पर ही उसको कृषि यंत्रों का लाभ दिया जाता है और उनको अनुदान दे होता है। किसान भाइयों, जागरूकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि ज्ञान है और हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उससे हमें जागरूकता आती है तो अब हमारे पास में कृषि यंत्रों की खूब सारी पत्रावलियां हमारे पास आने लग गई। हमारे पास में जितना टारगेट होता है उससे भी ज़्यादा हमें पत्रावलियाँ आ रही हैं। हम बात करें हम इसमें तो कृषि यंत्रों में जैसे रोटावेटर की बात करें तो रोटावेटर में लघु सीमांत SC ST और महिला के लिए 50% या अधिकतम 47,600 रुपये का अनुदान दिए होता है
1: जी।
2: इसी तरह जो से अन्य कृषक है, अन्य कृषकों की परिभाषा मैंने पहले भी, मैं स्टूडियो में आया हूँ जब मैंने बताया था कि जिसके 8 बीघा से अधिक भूमि होती है उसको अन्य कृषक के नाम से जाना जाता है और उसको 40% या अधिकतम 38,100 रुपये का अनुदान दिया जाता है
1: जी।
2: तो मैंने अभी कृषि यंत्र के विषय में रोटावेटर के बारे में बताया, अब मैं सीड ड्रिल पर चर्चा करता हूं। तो सीड ड्रिल पर लघु सीमांत SC ST महिला के लिए लागत का 50% या अधिकतम 18,000 रुपये का अनुदान दे होता है
1: जी।
2: इसी तरह से हम आगे बात करें लेजर लैंड लेवलर पर, तो इसमें भी जो अनुदान है वो लघु सीमांत SC ST महिला के लिए लागत का 50% या अधिकतम इसमें 2,00,000 रुपये का अनुदान दे है, क्योंकि ये महंगा भी आता है वैसे लेजर लैंड लेवर जो होता है लेवलर, तो इसमें 2,00,000 रुपये का अनुदान होता है और अन्य कृषकों के लिए 40% या अधिकतम 1,60,000 रुपये का अनुदान इसमें दिया जाता है। इसी तरह से मल्टी क्रॉप थ्रेशर पर लघु सीमांत SC ST महिला के लिए लागत का 50% या अधिकतम 1,00,000 रुपये का अनुदान दे है
1: जी। तो देखो शर्मा जी, आप जानकारी दे रहे थे हमारे किसान भाइयों को कृषि यंत्रों पर दे अनुदान के बारे में। इसमें आपने थ्रेसर के बारे में बताया, लेजर लेवलर के बारे में बताया, सीड ड्रिल मशीन के बारे में बताया, इसके अलावा और कौन कौन से कृषि यंत्र हैं जिन पर कृषि विभाग है जो अनुदान देता है?

0: किसान भाइयों, अभी रोटावेटर, सीड ड्रिल, लेजर लैंड लेवलर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, इनके विषय में बताया। यही इसके अलावा भी जैसे डिस्क हैरो है, डिस्क प्लो है, सीड कम फर्टिलाइजर है, इन पर भी सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। इसमें भी लघु सीमांत एससी एसटी महिला के लिए लागत का 50% का अनुदान दिया है और अन्य कृषकों को लागत का 40% का अनुदान दिया जाता है
1: जी।
0: इसमें आगे भी जैसे चैप कटर हस्तचालित अपन मशीन लेते हैं उसमें भी 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अच्छा, एक इसमें एक योजना और थी, अभी भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए थी
1: जी।
0: जो हमने भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए अलग अलग यंत्र दिए थे, जैसे फावड़ा है, खुरपी है और स्प्रे मशीन है, तो उसके लिए 5,000 रुपये का हमने अनुदान जो भूमिहीन कृषक है उनके लिए दिए गए थे।
1: तो देखिए मंगतूराम जी, ये तो हुए थे कृषि यंत्रों के बारे में सभी किसान भाइयों को जानकारी दी, लेकिन इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हम लेते हैं खेत तलाई या बोले फार्म पोंड है, ये योजना क्या है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें।
0: किसान भाइयों, आज की मुख्य आवश्यकता पानी को देखते हुए और फार्म पोंड की आवश्यकता हो गई। इस पर हमारे सरकार के साथ साथ ही हमारे जो जिला कलेक्टर महोदया है उनका भी विशेष इस पर फोकस है, फार्म पॉन्ड पर, क्योंकि पानी दिन पे दिन कम होता जा रहा है, जल स्तर नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको देखते हुए फार्म पॉन्ड की हमें बनवाने की बहुत आवश्यकता है। अब इसमें फार्म पॉन्ड में क्या है कि हमें पानी इकट्ठा करना होता है
1: जी।
0: जो बरसात का पानी होता है वो बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है
1: जी।
0: कई लोग तो मैंने देखा है फील्ड में, मैं जाता हूँ तो कई लोग तो क्या है कि अपनी बोरिंग वगैरह चला देते हैं और फिर भी पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और जब फसल को उसकी आवश्यकता होती है तो उसमें उसका उपयोग कर लेते हैं। फार्म पॉन्ड इसमें क्या है कि किसान की जो पात्रता है उसके विषय में हम चर्चा करें तो किसान के पास में 0.3 हेक्टर, 0.3 हेक्टर का मतलब होता है 1.25 बीघा के करीब उसके पास में जमीन होनी चाहिए, हम बीघा की बात करें, क्योंकि हेक्टर जो होता है वो 4 बीघा का माना जाता है
1: जी।
0: एक हेक्टर को कृषि में जो बोला जाता है वो 4 बीघा को 1 हेक्टर का कहा जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसान के पास में 0.3 हेक्टर का स्वामित्व हो
1: जी।
0: यदि सह खातेदारी की स्थिति में भी है तो भी उसको 0.3 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होती है और वो फार्म पॉन्ड बनवा सकता है। वर्तमान में हमारा पोर्टल राज किसान सुविधा ऐप है ना, राज किसान साथी पोर्टल के नाम से जाना जाता है
1: जी।
0: इस पे अभी हम आवेदन हमारा खुलेगा और उस पे आवेदन हो जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं कि कृषक गोष्ठियाँ वगैरह हो रही हैं, उन कृषक गोष्ठियों के माध्यम से हम एप्लीकेशन तैयार करवा रहे हैं
1: जी।
0: साथ ही क्या है कि इसमें फार्म पॉन्ड जो है वो 20x20x3, मतलब 20 मीटर चौड़ा, 20 मीटर लंबाई और 3 मीटर गहराई, अर्थात 1200 घन मीटर बन गया ये। इस तरह का फार्म पॉन्ड हम तैयार करते हैं। अच्छा, फार्म पॉन्ड दो प्रकार का होता है किसान भाइयों, एक तो होता है कच्चा फार्म पॉन्ड होता है और एक होता है पक्का फार्म पॉन्ड। तो कच्चे फार्म पॉन्ड में तो जो अनुदान हमें मिलता है, जो किसानों को हम अनुदान देते हैं वो 73,500 रुपये के लगभग देते हैं, अर्थात जो राशि 1,05,000 सरकार द्वारा निर्धारित की गई है उसका 70% हम अनुदान कृषक को देते हैं
1: जी।
0: ये तो हो गया लघु सीमांत एससी एसटी के लिए, और जो सामान्य कृषक हैं उनको 60% और अधिकतम राशि 63,000, जो भी कम हो वो अनुदान हम देते हैं। दूसरा होता है हमारा प्लास्टिक लाइनिंग, इसका पक्का फार्म पॉन्ड भी बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड है, उसमें प्लास्टिक की एक नीचे जो मोटी पन्नी होती है उस वो हम बिछा देते हैं, देसी भाषा में हम बात करें। इसमें क्या है 90% तक का अनुदान हम देते हैं। पाइप लाइन पर जो अनुदान दिया जाता है, सबसे पहले तो इसमें कृषक के नाम पर कृषि योग्य भूमि का स्वामित्व होना चाहिए, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। दूसरा, इसमें जल स्रोत, मतलब अपने कुआ है, कुएं पर विद्युत है, डीजल ट्रैक्टर चालित कोई भी पंप सेट वगैरह है वो होना चाहिए। हमें क्या है कि जैसे हमारे पास में 8 बीघा धरती है, तो 8 बीघा धरती पर हमें जो अनुदान मिलेगा वो 15,000 रुपये का अनुदान मिलेगा, और इसमें हम जो देते हैं वो 300 मीटर तक पाइपलाइन के लिए अनुदान देते हैं। ISI मार्क का पाइप होना चाहिए हमारे पास में। तो आप तारबंदी के विषय में जानना चाहते हैं तो एक जगह में भी हमको जो जमीन है, जो न्यूनतम

0: कृषि योग्य भूमि जो होनी चाहिए वो 2 बीघे की आवश्यकता है हमें, 2 बीघा धरती होनी चाहिए हमारे हिस्से में। जैसे नेशनल हिस्सा आ जाता है 2 बीघा, तो अकेला कराना चाहते हो तो अकेले में भी आप करवा सकते हो, और कम्बाइंड है और कम्बाइंड में भी आपके पास में 2 बीघा धरती है तब भी उसमें आप फायदा उठा सकते हो। इसमें 400 मीटर तक का आपको अनुदान दे होता है। 400 मीटर में यदि आपके पास में 8 बीघा से कम भूमि है तो आपको 48,000 रुपये दिए जाएंगे, और 8 से अधिक है तो आपको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। मैंने अभी बताया था तारबंदी के विषय में कि इसमें 2 बीघा धरती पहले क्या था, इसमें 6 बीघा धरती का प्रावधान था, लेकिन आप लोगों की वेदना को सरकार ने सुना, हम लोगों ने भी प्रयास किया कि भाई अब जो भूमि की जोत है वो छोटी होती जा रही है। भाई पहले 4 भाई थे, फिर 4 में से फिर 2 ही रह गए, चाहे यूं मान लेते हैं, तब भी अपनी जमीन तो कमी हो रही ना, पहले 4 भाइयों के हिस्से में आती थी, अब 2, इस तरह से क्रम चाहे अपने वो कम चलता गया लेकिन जमीन तो उतनी है, तो जमीन कम होती गई, कहने का मतलब ये है। तो 2 बीघा धरती होना अनिवार्य है, 2 बीघा धरती हो तो 2 बीघा धरती के आधार पर, और यदि आपके पास में 8 बीघा से कम धरती है तो आपको 48,000 रुपये मिलेंगे, और 8 से अधिक है तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो इकाई लागत जो मानी गई है सरकार द्वारा वो 80,000 रुपये मानती है, ठीक है ना। तो उस 80,000 रुपये को मानते हुए और आपको अनुदान 48,000 रुपये का, मतलब 60%, कहने का मतलब सरकार 60% देगी 400 रनिंग मीटर पर।
1: बिल्कुल,
0: हम पौध संरक्षण यंत्रों पर भी अनुदान देते हैं, इसमें भी एक अपना राज किसान साथी पोर्टल है ना, पर जाना होता है और उस पर हम एप्लीकेशन दर्ज कराते हैं।
1: जैविक इकाई के बारे में,
0: हाँ, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, क्योंकि हमें वापिस जैविक उर्वरक की ओर जाना होगा। कृत्रिम खेती है, जैविक खेती है, तो इसमें क्या है कि जैविक गोवर्धन इकाई में इसमें 10,000 रुपये का हम अनुदान देते हैं। इसमें एक इकाई बनाते हैं हम, 20 फीट लंबाई, ठीक है ना, और 2.5 से 3 फीट उसकी चौड़ाई रखते हैं, और 1.5 से 2 फीट उसकी गहराई रखते हैं, और इसमें हम जैसे गोबर की खाद वगैरह डाल देते हैं, और जो हमारी वर्मी जो होते हैं है ना, केंचुए जिनको अपन है ना, केंचुए डाल देते हैं, और वो और छाया और करनी पड़ती है अपन को, छाया ऊपर अपन अस्थायी रूप से ही कर दें, ये नहीं है कि टीन वगैरह बनाए। टीन वगैरह बनाएंगे जब तो एक अच्छी योजना, 50,000 रुपये मिलते हैं उसमें, तो इसमें 10,000 ही मिलते हैं गोवर्धन जैविक उर्वरक में, और वो 50,000 वाली उसमें क्या है, स्थाई अपन को स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है छाया के लिए, और इसमें अपन वैसे ही छाया, नॉर्मल छाया, जैसे अपन झोपड़ी ओपड़ी नहीं बनाते गाँव में, इस तरह की छाया हम कर सकते हैं। और ये हम अपना जो राज किसान साथी पोर्टल है ना, उस पर अब खुल जाएगा थोड़े दिनों में, आप कराइए, हमारे पास टारगेट आते हैं और उन टारगेटों को हम अचीव भी करते हैं।
1: तो शर्मा जी देखिए, अब हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें, जैसा कि गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में किसान भाई ज़्यादातर अपनी ज़मीन है उसमें गहरी जोत भी लगा रहे हैं, और ऐसे समय में हमारे किसान भाई मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो किस तरह से बनवाएं, या फिर मिट्टी की जाँच वो किस तरह से करवा सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: किसान भाइयों, आज देखने में आ रहा है कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा अधिक पैदावार लेने में लगा हुआ है कि अधिक पैदावार कैसे हो, लेकिन उस अधिक पैदावार के पीछे उनका एक ही मकसद रहता है कि हमारे जो रासायनिक खाद हैं, दवाइयां हैं, इनका उपयोग हम अधिक से अधिक करके और हम अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है किसान भाइयों, यदि हम आज देख रहे हैं कि रासायनिक खादों का जितना उपयोग हम कर रहे हैं उससे शरीर में उतनी ही ज़्यादा बीमारियाँ बन रही हैं। आज के समय में हमारे ज़िले में 3 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं चल रही हैं
1: जी।
0: एक तो बड़ौदा मेम में है, एक अपने जिला लेवल पे यहाँ है, अपना पहले सदर थाना बोलते थे, आजकल महिला थाना है, उसके पास है, श्रीमान संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार जिला परिषद अलवर का कार्यालय है
1: जी,
0: वहीं उसी फील्ड में है मृदा परीक्षण प्रयोगशाला। एक अपनी है राजगढ़ में। किसान भाइयों, अब खेत खाली भी हैं, हमारे कृषि पर्यवेक्षक भी आपकी इस में मदद करेंगे, हमने इनको लक्ष्य भी दिए हुए हैं, टारगेट दिए हुए हैं कृषि पर्यवेक्षकों को, तो इनसे आप संपर्क करके और खेत में से मिट्टी ला करके और उसकी जांच आप करवा सकते हो, और इस मिट्टी की जो जांच की जो फीस है वो कुछ भी नहीं है, मात्र 5 रुपये इसकी फीस लगती है।

0: की हम यदि जांच कराएं तो उस मिट्टी की जांच में भी हमें यूरिया कितना देना है, डीएपी कितना देना है, अलग अलग तरह के जो आज हम अंधाधुंध जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें हमको बहुत कुछ मदद मिलेगी
1: जी।
0: साथ ही हमारा जो मकसद है वो यह है कि खेती में कम से कम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो। यदि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग करोगे और उसमें आवश्यकता अनुसार ही आप उसका खाद का प्रयोग करोगे तो हमारी जो खेत की मिट्टी है वो भी खराब नहीं होगी और हम लोग भी उन बीमारियों से बच जाएंगे
1: जी। तो मंगतुराम जी, देखिए इसके अलावा हमारे किसान भाइयों को जैसा कि भूमि सुधार कार्यक्रम चल रहा है, ये आपके विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें जिप्सम पर हमारे किसान भाई हैं वो अनुदान लेना चाहते हैं तो किस तरह से ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दें।
0: किसान भाइयों, मिट्टी की दो स्थितियां हो जाती हैं, एक तो या तो अम्लीय और दूसरा क्षारीय। लेकिन आज जो मिट्टी की स्थिति है वो क्षारीय स्थिति की ओर ज्यादा जा रही है। तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो जिप्सम के विषय में कर रहे हैं और खेत की जो क्वालिटी है, अच्छा खेत की क्वालिटी के साथ में ही जैसे हमारा सरसों वगैरह हम लेते हैं ना, अपने जो अलवर जिले की मुख्य जो फसल है वो सरसों है और सरसों हम लेते हैं तो उसमें जो ऑयल की जो मात्रा है उसका भी और एक अपना जो दाना है वो भी चमकदार बनता है, जिप्सम का हम प्रयोग करते हैं
1: तो। जी तो मुक्तुराम जी, देखिए अब हमारे किसान भाइयों को आप जानकारी दें, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना ये क्या है, किस तरह से हमारे किसान भाई इसको अपना सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: किसान भाइयों, रबी और खरीफ दोनों में हम किसान भाइयों को एक योजना चला रखी है, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। इसके तहत हमारे पास में बीज आता है और उसमें हम किसानों को 50% मतलब 50% सब्सिडी पर हम उनको उपलब्ध कराते हैं। अभी हमने गेहूं का भी बीज उपलब्ध कराया था और चने का भी बीज मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में हमने कराया था। इसमें भी हम अधिकतर क्या करते हैं कि कमेटी बनी हुई है सरपंच की, है ना, हमारे कृषि पर्यवेक्षक, एक ग्राम विकास अधिकारी जो वहाँ का होता है, उन कमेटियों के द्वारा हम उनका चयन करते हैं और चयन करने के बाद में हम मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में हम उनको बीज उपलब्ध किसानों को करवाते हैं
1: जी। शर्मा जी, चलते चलते हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें हम किसान भाई कब कब प्रीमियम जमा कराएं और कहां मिले, इसके बारे में बताएं।
0: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कई बार हम देखते हैं कि ओले गिर जाते हैं, जल भराव हो जाता है, बादल फट जाते हैं, प्राकृतिक आग लग जाती है, इस तरह से, और एक योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है, खरीफ मौसम में तो 2% और रबी मौसम में 1.5% और वाणिज्यिक वे उद्यान की फसल, उद्यान की फसल जैसे प्याज वगैरह होता है, इनमें हम 5% कृषक प्रीमियम राशि जमा कराते हैं और उसके आधार पर जहाँ नुकसान होता है उनका हम एक तरह से, हमारा कृषि पर्यवेक्षक वगैरह जाता है और वो जा करके, और एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रतिनिधि होता है और सर्वे करते हैं, सर्वे के आधार पर फिर हम उनको बेनिफिट दिलवाते हैं
1: जी। तो देखिए शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी किसान भाइयों का उनकी फोन के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर, आप सभी किसान भाइयों के लिए भी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम साहब।

0: आए निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो किसान भाइयों, अभी आपने सुने भेंट वार्ता, उम्मीद करते हैं आप अवश्य इसका लाभ उठाएंगे। आप देर ना करते हुए हमारे किसान भाइयों को ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत। आइए सुनते हैं, उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक संदेश।

तो किसान भाइयों, अभी आपने सुना प्यारा सा लोकगीत, तो उम्मीद करते हैं आपको अवश्य पसंद आया होगा। अब देते हैं जानकारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट व्याधि प्रबंधन। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात कर रहे थे, उनके प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम के बारे में बात करते हैं। जैसे छाछिया रोग है, इससे बेलों की बढ़वार रुक जाती है, पत्तियां सूखना प्रारंभ हो जाती है। अब इस रोग की रोकथाम के लिए आप कैरोथेन LC1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाकर छिड़काव करें और आवश्यकता पड़ने पर 15-15 दिन के अंतराल में फिर से आप दोहराते रहें। इसी तरह से तुलसीता है, इस रोग की रोकथाम के लिए भी आप डायथेन Z78 या मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 10 दिन के अंदर से छिड़काव करना चाहिए। और साथ ही झुलसा रोग के लिए भी आपको इसी तरह थायराम 2 ग्राम प्रति किलो बीज या एग्रोसान GN 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। इस तरह से ये तो थे प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम के बारे में। आज कुष्मांड कुल की सब्जियों के बारे में हमने बात करी किसान भाइयों। अब जाते जाते आपको देते हैं मौसम की जानकारी। आज अधिकतम 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जाने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये तो आज हमारा ग्राम भारती कार्यक्रम। अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त। घनी घनी राम राम।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। संध्या के ठीक 7:30 हुए हैं। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, पहली पेशकश में सुनते हैं मुकेश को अनाड़ी फिल्म में। शंकर जयकिशन का संगीत है और गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

अभी आपने सुना जुर्म फिल्म में कुमार शानू और साधना शर्मा को, राजेश रोशन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे इंदेवर ने। जिसके दिल में मोहब्बत की रोशनी जगमगाती है, उसी की राहों में हर शहर मुस्कुराती है। नफ़रत की आंधियां पल पल में थम जाती हैं जब इश्क की सदा दिल से उतर कर गुनगुनाती हैं। आइए इसी एहसास को शब्दों में पुरोता हुआ एक खूबसूरत नगमा सुनते हैं। है दुनिया उसी की, ज़माना उसी का।

अभी आपने सुना ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया है वो गीत। फिल्म का नाम था कश्मीर की कली, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। आइए सुनते हैं अगला गीत।

जिंदगी वादा रहा सनम, ये गीत सुना अभी आपने खिलाड़ी फिल्म से अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में। श्रोताओं, जिंदगी के सफ़र में कुछ रिश्ते यूं ही बन जाते हैं, बिना किसी वजह के दिल में घर कर जाते हैं। जो दर्द में साथ दे वही खुशी में मुस्कुरा दे, वही तो दोस्ती के असली मायने बन जाते हैं। जहां अपनापन हो, भरोसा हो और सच्चा साथ हो, वही जिंदगी मुस्कुराती है और वही दोस्ती अपना नाम पाती है। श्रोताओं, इतनी जज्बातों को समेटे हुए पेशे खिदमत है एक प्यारा सा नगमा, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी।

जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। खुद गर्ज फिल्म में अभी आपने सुना नितिन मुकेश और मोहम्मद अजीज़ को। इंदिवर के बोल थे और धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

नज़रों में कशिश हो, अदा में शरारत हो, तो मोहब्बत भी मुस्कुराकर अपना असर दिखाती है। कभी एक नज़र ही दिल चुरा लेती है, तो कभी कजरा ही कहानी बन जाती है।

दिल में मिलने की लगन हो और राहों में इंतज़ार सजा हो, तो हर कदम इबादत बन जाता है। और जब साधन से मिलने की आस जगे तो हर धड़कन में एक मीठी सी रुनझुन बन जाती है। आइए सुनते हैं केक फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है हनी सिंह ने और संगीत दिया है जस्मीन सादिल्स ने।

अभी आपने सुना आशा भोसले की आवाज़ में खूबसूरत फिल्म का गीत, जिसकी धुन तैयार की थी आर डी बर्मन ने। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत समाप्त होता है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। रात्रि के 8:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे लोक संगीत, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये संदेश।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: श्रोताओं, लोक संगीत में आज सुनते हैं सीमा मिश्रा को और पहली प्रस्तुति मोर बोले रे।

अभी आपने सुना मोर बोलो रे, कलाकार थे सीमा मिश्रा। लोक संगीत में अभी और भी गीत सुनेंगे, लेकिन पहले सुने ये।

अभी आपने सुना लोक संगीत में पौधी नाम हरा सीमा मिश्रा को, आइए सुनते हैं चौमासो, आवाज़ सीमा मिश्रा की।

श्रोताओं, सीमा मिश्र के गाए इसी गीत के साथ लोक संगीत संपन्न होता है। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं समाचार संध्या, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल

0: कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम की 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रेंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2014

0: 2019 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
1: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
2: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
3: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत, हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
4: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्सी आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिस चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने यह संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत

0: आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो हॉर्मुज जल्द भूमध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. All set for counting of votes tomorrow for West Bengal, Assam, Keralam, Tamil Nadu and Puducherry assembly elections. Robust security arrangements in place for smooth counting. Indian space startup Galaxy launches Mission Drishti, world's first Optosar satellite aboard SpaceX's Falcon 9 rocket. Vice President and Prime Minister hail the feat. UAE resumes normal flight operations to the multiple destinations in India after brief suspension amid West Asia conflict. IMD issues orange alert for heavy rainfall along with thunderstorms and gusty winds over several parts of North India tomorrow. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat host Sunrisers Hyderabad by 7 wickets. Gujarat Titans facing

राम और श्याम फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। शकील पतायुनी ने इस गीत को लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी। यह है वीर दुर्गादास फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

0: लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में वीर दुर्गादास फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। भरत व्यास की ये रचना थी और एसएन त्रिपाठी की तर्ज। विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।
1: बतौर बाल कलाकार उन्होंने रंगमंच की दुनिया में रखा था अपना पहला कदम।
2: कभी किसी जगह पे बच्चे का रोल हुआ तो सागर साहब मुझे ले जाते थे उस नाटक में रोल करने के लिए।
1: जिंदगी की राहें उन्हें ले आई फिल्म निर्देशन की दुनिया में। सन 1977 दूसरा आदमी।
3: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
1: 1981 बसेरा।
4: जहाँ पे सवेरा हो बसेरा वही है।
1: 1984 दुनिया।
3: तू चांद नगर की शहजादी मैं इस धरती का बंजारा।
1: 1993 फिल्म साहिबा।
3: कैसे जियूंगा मैं।
1: रंगमंच और सिनेमा के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार।
4: नजरों से कह दो प्यार।
1: उजाले उनकी यादों के 10 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: काजल है
0: आपके लिए कार्यक्रम में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बहुरानी फिल्म का ये गीत।

बहुरानी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। इसे साहिल लुधियानवी ने लिखा था और सी रामचंद्र ने इस गीत की धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: ग्रामीण ट्रस्ट दिल्ली से आए।
1: संगीतकार रवि,
0: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
2: आप खाए थाली में, कोधे प्याली में।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी का यहाँ।

वो अभिनेत्री जिसने कई दशक तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, जिसने एक काली अंधेरी रात में चमकते चांद को देखकर ये बात कही थी।

का असली नाम था रशीद फातिमा। पैदा हुई 1 जून 1929 को कोलकाता में। नरगिस दत्त की मां थी जद्दनबाई, जो उस जमाने की बहुत ही मशहूर शास्त्रीय गायिका थी। इसके अलावा वो नर्तकी, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के तौर पर बहुत ही मशहूर थी। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में संगीत देने वाली पहली महिला संगीतकार थी जद्दनबाई। हमेशा वो ये चाहती थी कि उनकी बेटी फातिमा रशीद अभिनय की दुनिया में जाए, लेकिन नरगिस का ऐसा कोई इरादा नहीं था। आपको बताते हैं कि सन 1935 में, जब फातिमा रशीद सिर्फ 6 बरस की थी, जद्दनबाई ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। फिल्म थी तलाश-ए-हक। बतौर बाल कलाकार नरगिस के अभिनय की पारी शुरू

जैसे कि हमने आपको बताया, नरगिस का अभिनय का कोई इरादा नहीं था, वो तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि बेटी बनेगी तो केवल अभिनेत्री। एक दिन जद्दन बाई ने उन्हें स्क्रीन टेस्ट के लिए भेजा जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान के पास। चूंकि नरगिस का मन नहीं था एक्टिंग करने का, इसलिए उन्होंने बड़े बेमन से स्क्रीन टेस्ट दिया, बस यूं ही अपने डायलॉग्स बोल दिए, ये सोचकर यूं ही बोल दिए कि महबूब खान उन्हें फेल कर देंगे और वो डॉक्टर बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगी। लेकिन उनका ये अंदाजा गलत निकला। महबूब खान ने अपनी फिल्म तकदीर के लिए नरगिस को नायिका चुन लिया। ये फिल्म सन 1943 में रिलीज हुई। इसके बाद सन 1945 में महबूब खान ने फिल्म हुमायूं में काम करने का मौका दिया नरगिस को। इसके 4 बरस बाद नरगिस का करियर चमक उठा। सन 1949 नरगिस की 2 फिल्में आईं। एक थी राज कपूर की फिल्म बरसात।

जैसा कि हमने कहा, सन 1949 में नरगिस का करियर चमक उठा। बरसात के अलावा इस साल आई दूसरी महत्वपूर्ण फिल्म थी अंदाज।

अंदाज में राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ नरगिस का प्रेम त्रिकोण था। नरगिस अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचने में कामयाब रही।

जिंदगी की राहों में कामयाबी और नाकामी जैसे बारी बारी से आती रहती हैं। सन 1949 में चमका नरगिस का तारा सन 1950 के बाद अचानक धूमिल पड़ने लग गया। एक के बाद एक उनकी कई फिल्में नाकाम होती रहीं। इन फिल्मों में खास थीं शीशा, बेवफा, आशियाना, अंबर, अनहोनी, शिकस्त, पापी और धुन। सन 1955 का जैसे नरगिस के करियर को इंतजार था, राज कपूर के साथ उनकी फिल्म आई श्री 420।

1420 बेहद कामयाब रही। राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बहुत पसंद की गई और उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में फिल्में एक साथ की। यहाँ आपको बता दें कि राज कपूर और नरगिस ने सबसे पहले सन 1948 में फिल्म वर्षा में काम किया था। इसके बाद बरसात, अंदाज, जान पहचान, प्यार और फिर आई आवारा।

आवारा के बाद राज कपूर और नरगिस की जो फिल्में आई उनके नाम भी आपको बता दें, अनहोनी, आशियाना और उसके बाद आ।

विवाह के बाद धुन, पापी और जागते रहो राज कपूर और नरगिस की फिल्में हैं। इसके अलावा एक और फिल्म जो राज कपूर ने प्रोड्यूस नहीं की, सन 1956 में आई चोरी चोरी, राज कपूर और नरगिस के अभिनय वाली आखिरी फिल्म।

0: प्यारा प्यारा।
1: राज कपूर की फिल्म जागते रहो में नरगिस ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई और इस फिल्म के आखिर में लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना नरगिस पर फिल्माया गया।

0: नरगिस की अभिनय यात्रा में हम आ पहुंचे थे सन 1956 तक। अब चलते हैं आगे, साल 1958। महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया।
1: भर भर भागे सबसे आगे, कोई पकड़ ना पाए।

महबूब खान और नरगिस का नाता पुराना रहा है और आज नरगिस की अभिनय यात्रा में हमने आपको बताया है कि किस तरह से बहुत कम उम्र में महबूब खान ने नरगिस से अपनी फिल्मों में काम करवाया था। जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मदर इंडिया की तैयारी महबूब खान ने की तो जाहिर है नायिका नरगिस ही होनी थी, लेकिन नरगिस के जीवन में ये फिल्म अभिनय के अलावा दूसरे कारण से बड़ी महत्वपूर्ण बनी। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग बिलीमोरा में चल रही थी। दृश्य था आग से नरगिस को बचाने का। नरगिस आग में घिर गई थी। उनके बेटे की भूमिका निभा रहे सुनील दत्त ने आग में कूदकर नरगिस की जान बचाई। वो सुनील दत्त से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें

0: दिलचस्प बात यह है कि बलराज दत्त जब रेडियो में बतौर अनाउंसर काम करते थे तो उन्होंने अपने जमाने की नामी अभिनेत्री नरगिस का इंटरव्यू किया था। नरगिस को इंटरव्यू करने का इस नौजवान का अंदाज बड़ा पसंद आया था। बलराज दत्त फिल्मों में आए सुनील दत्त के नाम से। सुनील दत्त और नरगिस एक साथ पर्दे पर ज्यादा नजर नहीं आए। सन 1964 में आई फिल्म यादें जरूर ऐसी फिल्म है जिसमें दोनों ने ऑन स्क्रीन अपनी मौजूदगी दिखाई। शादी के बाद सुनील दत्त और नरगिस के जीवन में तीन बच्चों की किलकारियां गूंजी, संजय दत्त, नम्रता और प्रिया दत्त। सुनील दत्त और नरगिस के जीवन का एक दिलचस्प किस्सा। फिल्म हमराज की शूटिंग चल रही थी। सुनील दत्त को इस फिल्म के कुछ दृश्यों में 110 बरस के बूढ़े का किरदार निभाना था। पंडरी सुकर ने उनका मेकअप कर लिया था और वो एक बूढ़े बाबा के भेष में सेट पर मौजूद थे। नरगिस सुनील दत्त से मिलने आई, सबसे पूछती रही दत्त साहब कहां हैं। वहीं मौजूद एक बूढ़े बाबा ने कहा, वो तो सेट पर आए ही नहीं है। नरगिस हार मानकर वहां से जाने लगी। इस बीच तकरीबन 2 घंटे बीत गए। मेकअप मैन पंडरी दादा ने धीरे से नरगिस को बताया कि जिस बूढ़े बाबा से आपने दत्त साहब के बारे में पूछा, असल में वही दत्त साहब हैं। इतने शानदार मेकअप को देखकर नरगिस दंग रह गईं। उन्होंने मेकअप मैन पंडरी दादा को अपनी कीमती घड़ी भेंट कर दी। सुनील दत्त और नरगिस का ऐसा था दिलचस्प जीवन। नरगिस भारतीय सिनेमा की ऐसी पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समाज सेवा के लिए उन्हें राज्यसभा में सदस्य के रूप में चुना गया था। फिल्म मदर इंडिया में बेमिसाल अदाकारी के लिए नरगिस को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार। शादी के बाद नरगिस ने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। वो परिवार और समाज सेवा में लग गईं। लेकिन अनवर हुसैन और अख्तर हुसैन जो नरगिस के भाई थे, उनके जोर देने पर नरगिस ने सत्येन बोस की फिल्म रात और दिन साइन की। सन 1967 में आई रात और दिन। इस फिल्म के लिए नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
1: अब तो

सन 1958 कार्लोवी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नरगिस को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार। 3 मई 1981 पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस के हिस्से की सांसें खत्म कर दी। एक अभिनेत्री इस दुनिया से

पैंक्रियाटिक कैंसर ने नरगिस को जब उनके चाहने वालों और उनके परिवार से छीना। नरगिस महज 51 साल की थी। सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाली बात यह है कि वो अपने लाडले बेटे को रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आते नहीं देख पाई। संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी

नरगिस दत्त के देहांत के बाद रिलीज हुई और संजय दत्त को इसका हमेशा से अफसोस रहेगा। सन 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई। ये फाउंडेशन कैंसर पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए आज तक काम कर रहा है। नरगिस एक जागरूक नागरिक, एक बेमिसाल अभिनेत्री, एक शानदार इंसान। अभिनेत्री नरगिस को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें थी अभिनेत्री नरगिस की, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। लोग भले कहते हों कि प्यार महकती खुशबू है, प्यार है एक खिलता हुआ बाग, पर ये साहब मानते हैं कि प्यार है एक जलती हुई आग, और प्यार की आग में सब जल जाता है, खत्म हो जाता है, खाक हो जाता है। तो सुनिए प्यार की ये धधकती हुई कहानी इन साहब की जबानी।

तड़पे तड़पे मेरी जवानी, प्यार

है भरू पागलों की तरह, जाने फिर क्यों फिर क्यों, जाने फिर क्यों रुलाती है दुनिया मुझे, प्यार की आग में तन बदन जल गया, प्यार की आग में तन बदन

0: प्यार की आग में तन बदन जल गया, तन बदन जल गया, तन बदन गया।
1: कुछ लोग दीवाने होते हैं प्यार में, पर कुछ लोगों का पैशन होता है फैशन। फैशन वो आग है जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। कैसा है जमाना, हर शख्स फैशन का दीवाना। तो चलिए सुना जाए फैशन का तराना।
2: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,

कभी मिल सका है क्या आग और पानी? अब जरा सोचिए, जब मिल जाए एक ठेठ हिंदुस्तानी और एक फैशन की दीवानी, तो बनती है कैसी कहानी। एक तरफ संस्कारों का राजा, दूसरी तरफ सजावट की रानी, दोनों को ही है सुनानी अपनी अपनी कहानी।

0: हमारी।
1: चाय गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
0: भूस भर दिया मेरी चाहत में।
1: हम अभी हाजिर हुए

प्यार की दुनिया में होते हैं कांटे ही कांटे, कभी कभी तो चांटे ही चांटे। प्यार का रास्ता नहीं है आसान, कभी मुश्किलें तो कभी घमासान। चाहत की दुनिया में सोच समझ कर घुस, ये दुनिया भर देती है चाहत में भुस। सारे सपने हो जाते हैं फुस, प्यार का महल भरभरा कर हो जाता है ठुस।

रोटी कपड़ा और मकान मिल जाएं तो हो जिंदगी आसान, घर मिलता नहीं सब लोगों को। ये सारा है बड़ा उलझा हुआ चक्कर, बड़े शहरों में प्यार करने वालों को नहीं मिलता किराए का घर। ऐसे में कोई क्या करे पहल, कैसे बने हमारे सपनों का महल।

या फर्श पे छत। प्यार की राह नहीं है आसान, पर इस पर चलते हैं हिम्मत वाले। आसानी से नहीं हारते ये चाहत वाले। हो कैसी भी राहें प्यार करने वाले, हार क्यों माने, वो तो गाएंगे ऐसे ऐसे गाने। आप माने या ना माने, प्यार अपना रास्ता बनाना जाने।

0: मारना क्यों।
1: छाया गीत में आज थे मन्ना डे के कुछ मजाहिया नगमे, फिल्मों के नाम।
2: प्यार की आग में तन बदन जल गया,
1: फिल्म जिद्दी।
3: अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये है जापानी,
1: फिल्म अधिकार।
3: जोड़ी हमारी जमेगा कैसे जानी, जोड़ी हमारी।
1: फिल्म औलाद।
3: भूस भर दिया मेरी चाहत में,
1: फिल्म अमानत।
3: रहने को घर दो,
1: फिल्म बीवी और मकान।
3: प्यार किया तो मरना क्यों, जब प्यार किया तो मरना क्यों।
1: और फिल्म राज। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियाँ फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे

0: महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में।
1: राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बनाए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।